0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से। श्रोताओं, इस समय सुबह के 5:55 हुए हैं। लीजिए सुनिए एग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, आइए आज हम कुछ बातें करें करी पत्ती की खेती के संदर्भ में। करी पत्ती के नाम से तो आप सभी वाकिफ होंगे, हमारे द्वीपों में अधिकांश घरों में करी पत्ती का इस्तेमाल किया जाता है। द्वीपों के बाजार में भी करी पत्ती की अच्छी मांग रहती है। जहाँ तक हमारे द्वीपों की जलवायु एवं मिट्टी का सवाल है, तो यहाँ पर करी पत्ती की खेती बहुत आसानी से हो सकती है और अच्छी उपज प्राप्त की जा सकती है। करी पत्ती लगाने के लिए किसान भाइयों, पहले नर्सरी में पौधा तैयार करना होता है और इसके बाद इसका रोपण मुख्य खेत में किया जाता है। पौधा तैयार करने के लिए नर्सरी क्यारी जमीन से 6 इंच ऊंची उठी होनी चाहिए। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जल निकास की समुचित व्यवस्था हो सके, क्योंकि पानी जमा होने से बीजों के सड़न का खतरा बढ़ जाता है और बीजों का अंकुरण प्रतिशत भी बहुत कम हो जाता है। नर्सरी की क्यारी 1 मीटर चौड़ी होनी चाहिए और लंबाई अपनी सुविधानुसार हम रख सकते हैं। अच्छी सड़ी गोबर की खाद मिलाकर अच्छी तरह से खुदाई करके नर्सरी की क्यारियां बनानी चाहिए। इसके बाद करी पत्ती के पुराने पौधों से पके फलों को लेकर 3 से 4 दिन के अंदर ही नर्सरी क्यारी में उनकी बुवाई करनी चाहिए। जब बीजों की बुवाई क्यारी में करते हैं तो लाइन से लाइन व बीज से बीज की दूरी 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। किसान भाइयों, करी पत्ती के बीज बुवाई के लगभग 20 से 25 दिनों में अंकुरित हो जाते हैं। बुवाई के 1 वर्ष बाद पौधा रोपाई के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद रोपाई आप कर सकते हैं। वैसे अगर किसान भाइयों आप चाहें तो बिना पौधा तैयार किए सीधे बीजों की बुवाई भी खेत में कर सकते हैं, परंतु इस तरह से जब हम बुवाई करते हैं तो उसमें रूट रॉट नामक बीमारी के होने की आशंका बढ़ जाती है। किसान भाइयों, जब मुख्य खेत में हम करी पत्ती के पौधों की रोपाई करते हैं तो उसके लिए 45 घन सेंटीमीटर आकार के गड्ढे बनाने चाहिए। इन गड्ढों में लाइन से लाइन की दूरी 120 सेंटीमीटर तथा गड्ढे से गड्ढे की दूरी 90 सेंटीमीटर रखनी चाहिए तथा इसमें आधी मिट्टी व आधी गोबर की सड़ी खाद मिलाकर भर देना चाहिए। इन्हीं गड्ढों में करी पत्ती के पौधों की रोपाई करनी चाहिए। रोपाई के बाद अगर बहुत दिनों तक बारिश नहीं होती है तो 3 से 4 दिन के अंतर पर पानी देते रहें और खरपतवारों से मल्चिंग कर दें ताकि नमी अधिक समय तक सुरक्षित रहे। वैसे तो करी पत्ती को उर्वरकों की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु जब पत्ती की तुड़ाई करें उस समय 20 किलोग्राम गोबर की खाद तथा 50 से 60 ग्राम यूरिया प्रति पौधा दे दें। उर्वरक आप पौधे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर चारों तरफ रिंग बनाकर मिला दें। जहां तक कीड़े एवं बीमारियों का सवाल है, जब करी पत्ती के पौधे में नई पत्तियां निकलती हैं तो एफिड का आक्रमण होता है। इसकी रोकथाम के लिए रोग और कीटनाशी की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें या फिर मोनोक्रोटोफस या निवाक्रॉन कीटनाशी का इस्तेमाल करें। कभी कभी पत्ती में लीफ स्पॉट नामक बीमारी देखी गई है जिससे पत्ती की गुणवत्ता खराब हो जाती है। इसकी रोकथाम के लिए बेवेस्टिन की 1 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव किया जा सकता है। किसान भाइयों, इस बात पर विशेष ध्यान दें कि करी पत्ती तोड़ने के बाद ही दवा का छिड़काव करें। छिड़काव करने के 10 दिन के अंदर पत्तियों की तुड़ाई बिल्कुल ना करें। इस प्रकार किसान भाइयों, अगर आप बताई गई बातों को ध्यान में रखकर करी पत्ती की खेती करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको अच्छा उत्पादन प्राप्त।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच मुक्त व्यापार समझौते सहित वाणिज्य और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत जारी है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और प्रमुख उद्योग तथा खेल जगत की हस्तियों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की यात्रा पूरी करने के बाद न्यूजीलैंड पहुंचे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। भारतीय समुदाय ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की दो दिवसीय यात्रा के स्वागत में ऑकलैंड के प्रसिद्ध स्काई टॉवर को भारतीय तिरंगे के रंगों से रोशन किया गया है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये न्यूजीलैंड की 40 साल बाद पहली यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवई ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों को लाभ होगा।
1: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। स्वदेशी स्टील द फिगरेट आईएनएस महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। समारोह से पहले

0: रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना भारत की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसीलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। ये सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। भाजपा ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन अहमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खेलों में फीफा विश्व कप में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वें मिनट में किया। आज तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। विम्बल्डन टेनिस में आज महिला सिंगल्स फाइनल में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। दोनों खिलाड़ी पहली बार विम्बल्डन फाइनल में पहुंची हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सुभद्रा रामचंद्रन। Prime Minister Narendra Modi is holding delegation-level talks with his New Zealand counterpart, Christopher Luxon, in Auckland. Both leaders will be reviewing the entire gamut of the bilateral relationship, which has seen significant progress in the last 2 years, especially in the areas of trade and commerce and defence. In his opening remarks, Prime Minister Modi said that his visit to New Zealand marks a historic milestone in bilateral relations and will give fresh momentum to ties between the two countries. He said the two countries have now taken a significant step by establishing a strategic partnership which will guide future cooperation. Highlighting the shared democratic values and maritime ties between the two nations, Prime Minister Modi said India and New Zealand can play an important role in strengthening peace, stability and security in the Indo-Pacific region.
2: मित्रता भरे शब्दों के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कल रात्रि को आपका एयरपोर्ट पे आना ये अपने आप में बहुत बड़ा जेस्चर है और मेरी तरफ से मैं विशेष रूप से आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आपके मंत्री से पूरा समय मेरे साथ रहे रात को। मेरे लिए खुशी की बात है कि 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और आपने एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। न्यूजीलैंड के लोगों के बीच आकर उनका भारत के प्रति जो स्नेह है ये देखकर कोई भी व्यक्ति बहुत ही भावुक हो जाता है और मेरे मन को वो छूने वाला है और इसके लिए भी मैं बहुत आपका आभारी हूँ। ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है। आप जब भारत आए थे और एफटीए के शुरुआत हुई और इतने कम समय में पूरा न्यूजीलैंड एक साथ होकर के एफटीए

आइए अब सुनते हैं आज जाने वाले चलियानों के बारे में। एमवी जॉली बॉय आज सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्टेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर जाएगा। जलियान कल 12 तारीख को सुबह 7 बजे रंगत से छूटकर इन्हीं स्थानों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी रंगत शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा। जलियान आज ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप तथा 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी स्टेट आइलैंड आज दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप जाएगा और आज ही दोपहर 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप तथा 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी बाराटांग शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से जाएगा। वापसी आज ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी कमोटा स्वराज द्वीप की यात्रा पर आज शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा। वापसी कल 12 तारीख को सुबह 5:30 पर स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। श्रोता आप सुनिए कल जाने वाले जलियान। एमवी स्टेट आइलैंड कल 12 तारीख को सुबह 6 बजे श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत के लिए प्रस्थान करेगा। जलियान कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से छूट

कर इन्हें स्थानों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एम वी रंगत कल 12 तारीख को सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप जाएगा। वापसी कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एम वी बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल 12 तारीख को दोपहर सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा। वापसी कल ही सुबह 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एम वी नॉर्थ पैसेज कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप जाएगा। जलयान कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप तथा 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एम वी हडबे स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा। जलयान कल ही दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप तथा 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एम वी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल 12 तारीख को दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा। वापसी कल ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। ये था जलयानों का यात्रा कार्यक्रम।

0: 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप तथा 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल 12 तारीख को दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा। वापसी कल शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। ये था जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 6:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए इंद्रधनुष कार्यक्रम।
1: इंद्रधनुष

इंद्रधनुष कार्यक्रम के इस सफर में आज मैं हूं आपके साथ सुनीता। दोस्तों, लोगों का प्यार और इंसानियत इंसानी जीवन की सबसे खूबसूरत नींव है। प्रेम सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ जुड़ाव और अपनापन जताने का सबसे प्यारा जरिया है। दूसरों को खुश देखकर जो खुशी मिलती है वही सच्चे प्रेम और इंसानियत की असली पहचान है। दोस्तों, घर वो नहीं जहाँ सिर्फ लोग रहते हैं, घर वो है जहाँ लोगों का प्यार महकता है।

दोस्तों, लोगों से सच्चा दिल लगाना, उनके साथ रिश्ते निभाना, ये दोस्ती की गहराई को बयां करती है। पर मोहब्बत में अक्सर दिल टूट जाता है, पर जाने क्यों लोग फिर भी मोहब्बत किया करते हैं।

दोस्तों, लोगों की हर बात को दिल से ना लगाया करो। राज की बात भी हर किसी को बताया ना करो। कोई कुछ भी कहे, कहने दो। तोड़ेंगे जब हर कोई हिम्मत को तुम्हारे। ना मानना हार, बस जुटे रहना हिम्मत से तुम। यही कोशिश जिंदगी में रंग तुम्हारे लाएगी।

0: दीजिए इजाजत, होगी फिर मुलाकात एक नए विषय के साथ एक नए अंदाज में। नमस्कार।
1: इंद्रधनुष।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इंद्रधनुष, जिसे प्रस्तुत कर रही थी सुनीता। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। 6:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए रामचरितमानस गान की 206वीं कड़ी।

विभीषण ने श्री राम की पवित्र भक्ति मांगी और वो उन्हें प्राप्त हो गई। श्री राम की वानर सेना के सामने समस्या थी, समुद्र पार कैसे किया जाए। विभीषण का कहना है कि यद्यपि श्री रघुनाथ का एक ही वाण करोड़ों समुद्रों का जल सोख सकता है, तथापि नीति कहती है कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। वो ऐसा उपाय बताएंगे जिससे रीछ और वानरों की अपरिमित सेना बिना किसी कठिनाई के सागर पार चली जाएगी।

सुरेश वाडकर की आवाज़ में अभी आप रामचरितमानस कान की 206वीं कड़ी सुन रहे थे। संगीत संयोजन थे सतीश भाटिया। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वतन के गीत।

श्रोताओं, आज सुबह 7:30 पर लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर सुनिएगा। विषय रहेगा युवाओं का स्वास्थ्य, बेहतर भविष्य की पहली शर्त। विशेषज्ञ होंगे स्वास्थ्य विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर अभिजीत रॉय। श्रोता 2325558 पर कॉल करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तो समय याद रखिए, आज सुबह 7:30 पर कार्यक्रम होगा हेलो डॉक्टर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन के गीत के तहत कुछ देशभक्ति गीत। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। 6:50 हुए हैं। अब सुनिए मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार जनसेवाओं तथा मछुआरों के लिए कोई चेतावनी नहीं है। कल सुबह तक के मौसम के बारे में बताया जाता है कि द्वीपों के अधिकांश स्थानों पर वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। सुबह 7:15 पर सुनिए कार्यक्रम देश रागनी और ठीक उसी समय विविध भारती मुंबई से आप सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। 7:30 पर सुनिएगा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। विषय रहेगा युवाओं का स्वास्थ्य, बेहतर भविष्य की पहली शर्त। विशेषज्ञ होंगे स्वास्थ्य विभाग के उप निदेशक डॉक्टर अभिजीत रॉय। श्रोता 2325558 पर कॉल करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 8:30 पर फनकार होंगे मन्ना डे। तराने सुहाने कार्यक्रम का आप आनंद ले पाएंगे सुबह 9:00। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में एस गोविंद राजन का कर्नाटक शैली में गायन प्रसारित किया जाएगा। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम कशिश का समय रहेगा सुबह 10:00। दिन में 11:00 आप सुन पाएंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। गीत अतीत कार्यक्रम सुनिएगा दिन में 11:30 पर। दोपहर 12:00 होगा तेलुगु कार्यक्रम, जिसमें आप सुनेंगे विश्व जनसंख्या दिवस पर बी विजय शेखर रेड्डी की वार्ता। तत्पश्चात कुछ फिल्मी गीत सुनवाए जाएंगे। मलयालम कार्यक्रम होगा दोपहर 12:30 पर। दोपहर 1:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में फनकारा होंगी नूरजहां। आपके नाम फिल्मी पैगाम, फिल्मी गीतों पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 1:30 पर। 2:30 पर मौसम की जानकारी के बाद प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होगी, जबकि FM 100.9 MHz चैनल पर स्थानीय कार्यक्रम जारी रहेंगे, जिसमें आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नॉनस्टॉप म्यूजिक और 3:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हमारी दूसरी सभा की शुरुआत होगी शाम 4:00 निकोबारी कार्यक्रम के साथ, जिसमें आप सुनेंगे लोकप्रिय गीत। 4:30 पर प्रसारित किया जाएगा प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की नवीं कड़ी। कार्यक्रमों का विवरण बताया जाएगा 4:40 पर। फिल्म संगीत के कार्यक्रम बहारों की शाम का आप आनंद ले पाएंगे शाम 4:45 पर। तमिल में शाम 5:00 आप सुन पाएंगे साहित्यिक कार्यक्रम। 5:30 पर बांग्ला कार्यक्रम में युगल फिल्मी गीतों का आप आनंद ले पाएंगे। किसान वाणी कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे श्रीमती श्री स्मृति मिश्रा की वार्ता शाम 6:00। विषय होगा विश्व जनसंख्या दिवस। शाम 6:30 पर बुजुर्ग नागरिकों के लिए कार्यक्रम बीती यादें के तहत आप सुनेंगे डॉक्टर चंदा श्रीवास्तव से ली गई भेंट वार्ता। विषय रहेगा मेरे जीवन की सुनहरी यादें। 6:45 पर आप सुनेंगे सुदेश प्रकाश शुक्ला की लिखी झलकी अटक गई। प्रादेशिक समाचार का समय रहेगा शाम 7:05 पर। 7:15 पर सुनिएगा मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं। शाम 7:20 पर आप सुन पाएंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। युवाणी में शाम 7:30 पर होगा कार्यक्रम ऐसा भी होता है। चित्रपट संगीत कार्यक्रम का समय रहेगा रात्रि 8:00। रोजगार समाचार व गौरवगान का समय रहेगा रात्रि 8:30। इन कार्यक्रमों के अलावा रात्रि 9:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम संस्कृति भारती और रात्रि 10:00 सुनिएगा संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में डॉक्टर आर माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन, जबकि रात्रि 10:00 विविध भारती मुंबई से आप सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। श्रोताओं, अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा सुन रहे थे।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। अब संस्कृत में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आज सवेरे स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में 0.6 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। सवेरे 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 85% तथा न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल श्री विजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा 31 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्योदय 5:02 पर हुआ और सूर्यास्त का समय रहेगा 5:48। ये थी मौसम की जानकारी। अब सुनिए एयर इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार उड़ान संबंधी जानकारी। विमान संख्या 2937 दिल्ली से श्री विजयपुरम पहुंचेगा दिन में 11 बजे। विमान संख्या 2936 श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए वापसी उड़ान भरेगा आज दिन में 11:40 पर। ये थी एयर इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार उड़ान संबंधी जानकारी। और अब एक आवश्यक सूचना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 हेतु नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देश का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को दिया जाता है। नामांकन एवं अनुशंसा केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.government.gov.in पर भेजी जा सकती है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। इसी के साथ जन सूचनाएं समाप्त हुई।

0: कई तरीके हैं परिवार नियोजन करने के, तो फिर इनका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? अब जनता को भाषण दो तो बस तालियां बजा देती है।
1: अब आप तो काम की बात सुनिए, परिवार नियोजन को अपनाइए, अपने बच्चों में अंतर लाइए, परिवार को सीमित रखिए, क्योंकि हमारा आज का फैसला आपके बच्चों का भविष्य बदल सकता है।
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। भारतीय नौसेना आज विशाखापत्तनम में अपने पूर्वी बेड़े के 17A परियोजना के अंतर्गत निर्मित छठे स्वदेशी स्टील फ्रिगेट महेंद्रगिरी को शामिल करेगी। पूरे विश्व के साथ द्वीप समूह में भी आज विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है। कचाल द्वीप में अगले 6 दिनों के भीतर LPG आपूर्ति शीघ्र बहाल होगी और MV स्वराज द्वीप आज सुबह 10 बजे वाइजैक के लिए रवाना होगा।

0: आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार इस अंतराल के बाद।
1: भाइयों और बहनों, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आपने नसबंदी कराई है, क्या आपने IUD लगवाई है, क्या आप कॉन्डोम का इस्तेमाल करते हैं, क्या आप गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग करते हैं और ऐसे ही

सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। भारतीय नौसेना आज विशाखापत्तनम में अपने पूर्वी बेड़े में 17A परियोजना के अंतर्गत निर्मित छठे स्वदेशी स्टील फ्रिगेट महेंद्रगिरी को शामिल करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नौसेना में युद्धपोत को औपचारिक रूप से शामिल करने के समारोह की अध्यक्षता करेंगे। भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन इकाई द्वारा तैयार की गई रूपरेखा के आधार पर मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित युद्धपोत महेंद्रगिरी देश के अग्रणी स्वदेशी स्टील्थ युद्धपोतों में से एक है। ये युद्धपोत उन्नत स्टील्थ तकनीक, रडार से बचने और उच्च स्तर की स्वचालन प्रणाली से युक्त है। युक्त ये युद्धपोत नौसैनिक युद्ध के सभी आयामों में समुद्री अभियानों की पूरी श्रृंखला को अंजाम देने के लिए डिजाइन किया गया है। इस पोत के निर्माण में सूक्ष्म, लघु और मध्यम सहित बड़ी संख्या में भारतीय उद्योग शामिल हैं, जिससे देश के रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूती मिली है और महत्वपूर्ण रोजगार सृजित हुए हैं। पूरे विश्व के सात द्वीप समूह में भी आज विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है। इस साल विश्व जनसंख्या दिवस का नारा है, जब बच्चों में हो सही अंतराल, परिवार बने स्वस्थ और खुशहाल। इसका उद्देश्य माँ और बच्चे की सेहत और बच्चों के जन्म के बीच सही समय और अंतर रखने के महत्व पर जोर देना है। इस अवसर पर केंद्र शासित स्वास्थ्य मिशन और स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की ओर से जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन किए गए हैं। इसमें पंचायती राज संस्थान के सदस्य, पैरामेडिकल स्टाफ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा वर्कर लोगों को परिवार नियोजन सेवाओं के बारे में जागरूक करेंगे। इस आयोजन के तहत आम लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए आज सुबह 10 बजे गुप्तापाड़ा के सामुदायिक सभागार में परिवार विकास मेला आयोजित किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, सूचना प्रचार और पर्यटन निदेशालय के सहयोग से मॉनसून फेस्टिवल 2026 के तहत चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन करेगा। ये प्रतियोगिता सभी के लिए खुली है, जो जूनियर और सीनियर वर्ग में आयोजित होगी। प्रतियोगिता 14 जुलाई को सुबह 9:30 बजे साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस हब डॉलीगंज में पर्यावरण बचाओ हमारी पृथ्वी बचाओ थीम पर रखी गई है। चुनी गई पेंटिंग्स को मॉनसून फेस्टिवल 2026 के दौरान प्रदर्शित और विजेताओं को फेस्टिवल के समापन समारोह में सम्मानित किया जाएगा। इच्छुक प्रतिभागी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पी सेंथिल कुमार से पंजीकरण करा सकते हैं। प्रतिभागियों को पेंटिंग का सामान साथ लाने को कहा गया है, जबकि ड्राइंग शीट विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने छात्रों, कलाकारों और आम जनता को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से कल स्वरांजलि नामक 2 दिवसीय संगीत संध्या का आयोजन किया गया। गर्ल्स स्कूल के सभागार में आयोजित इस समारोह का उद्घाटन कला एवं संस्कृति निदेशक प्रियंका कुमारी ने मुख्य अतिथि के तौर पर किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि मॉनसून फेस्टिवल के हिस्से के रूप में मनाए जाने वाले इस समारोह का उद्देश्य आम जनता और

पर्यटकों को अच्छा मनोरंजन देना, साथ ही द्वीपों के उभरते कलाकारों को संगीत और नृत्य के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच देना है। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। ये समारोह आज भी जारी रहेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है एलपीजी आपूर्ति और जहाज। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज़ हेडलाइंस एफएम रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। परिवहन और आपूर्ति व्यवस्था में चल रही कठिनाई और नियमित जहाज सेवा उपलब्ध न होने के कारण प्रशासन ने कचाल द्वीप के निवासियों को सूचित किया है कि इस द्वीप पर घरेलू एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति अस्थायी रूप से प्रभावित हुई है। प्रशासन द्वारा एलपीजी आपूर्ति शीघ्र बहाल करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इस संबंध में कचाल द्वीप तक भरे हुए एलपीजी सिलेंडरों की व्यवस्था की जा रही है। तत्काल व्यवस्था के तौर पर भारतीय नौसेना का एक जहाज अगले 6 दिनों के भीतर श्री विजयपुरम से भरे हुए घरेलू एलपीजी सिलेंडर पहुंचाएगा, जिससे एलपीजी सप्लाई को फिर से शुरू करने और निवासियों की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। प्रशासन ने कचाल द्वीप के निवासियों से इस अवधि के दौरान सहयोग की अपील की है। एमवी स्वराज द्वीप जहाज आज सुबह 10 बजे वाइजैक के लिए रवाना होगा। यात्रियों को जहाज पर चढ़ाने का कार्य सुबह 9 बजे तक किया जाएगा। जहाज हेडो जेटी से छूटेगा। मत्स्य पालन विभाग ने कल मत्स्य पालन प्रशिक्षण केंद्र में राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया। इस कार्यक्रम में द्वीपों पर मछली उत्पादन बढ़ाने, खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने, रोजगार पैदा करने और टिकाऊ जलीय कृषि को बढ़ावा देने में मत्स्य किसानों के अमूल्य योगदान पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मत्स्य पालन निदेशक जगताप कल्याणी राजेंद्र ने किया। इस मौके पर दक्षिण अंडमान के मत्स्य किसान, क्षेत्रीय मत्स्य अधिकारी, सागर मित्र और मत्स्य पालन विभाग के अधिकारी मौजूद थे। सभा को संबोधित करते हुए मत्स्य पालन निदेशक ने वैज्ञानिक जलीय कृषि पद्धतियों को अपनाने में द्वीप समूह के मत्स्य किसानों के समर्पण, दृढ़ता और उद्यमशीलता की भावना की सराहना की। इस दौरान 18 मत्स्य किसानों को भारतीय प्रमुख कॉर्प मछली के बीज प्रदान किए गए, साथ ही केज कल्चर और झींगा पालन से जुड़े उद्यमियों में तटीय जलीय कृषि पंजीकरण प्रमाण पत्र वितरित किया गया। कृषि विभाग की ओर से कल दक्षिण अंडमान और मध्य उत्तर अंडमान के 2 पायलट जिलों में फर्टिलाइजर सेल फ्रेमवर्क का पायलट रोल आउट शुरू किया गया। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वीप समूह में सब्सिडी वाले उर्वरकों के पारदर्शी, कुशल और किसान अनुकूल वितरण को सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया गया है। FFS एक मोबाइल एप्लीकेशन को पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम और इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम के साथ जोड़ता है। इससे किसान रिजर्व स्टॉक के पहले से उर्वरक बुक कर सकते हैं, QR कोड टोकन जनरेट कर सकते हैं और तय सब डिपो में आसानी से उर्वरक खरीद सकते हैं। लॉन्च से पहले विभाग ने पूरे द्वीप समूह में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इनमें किसानों, पंचायती राज संस्थान के सदस्यों, स्वयं सहायता समूह, PACS, FPO, किसान मित्रों, उर्वरक विक्रेताओं और विस्तार कर्मियों ने भाग लिया। विभाग ने किसानों से FFS प्लेटफॉर्म का उपयोग करने और नई डिजिटल प्रणाली का लाभ उठाने की अपील की है। श्री विजयपुरम नगर पालिका परिषद ने आम जनता को सूचित किया है कि प्रेम नगर वार्ड नंबर 7 में शमशान घाट के पास समुद्र तट की सफाई के लिए एक एक्सकेवेटर का इस्तेमाल किया जाएगा। सफाई का काम समुद्र में ज्वार भाटा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए होगा। इस संबंध में आसपास के इलाकों के सभी निवासियों को निर्देश दिया गया है कि वे इस दौरान किसी भी नुकसान से बचने के लिए स्वयं और अपने सामानों की सुरक्षा करें। इसके अलावा मछली पकड़ने वाले नावों के सभी मालिकों से भी अपनी नावों को समुद्र से कम 20 मीटर की दूरी पर ले जाने को कहा गया है। अंडमान निकोबार प्रशासन ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए मुख्य भूमि के संस्थानों और कॉलेजों में विभिन्न पाठ्यक्रमों के नामांकन की

लिए आवेदन करने वाले पात्र उम्मीदवारों के अनंतिम मेरिट सूची जारी कर दी है, जो कॉमन कॉलेज एडमिशन पोर्टल पर उपलब्ध है। इस संबंध में दावे व आपत्तियां 16 जुलाई तक शाम 5 बजे सचिवालय स्थित उच्च शिक्षा निदेशालय के सहायक सचिव के पास जमा किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय नौसेना आज विशाखापत्तनम में अपने पूर्वी बेड़े में 17A परियोजना के अंतर्गत निर्मित छठे स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी को शामिल करेगी। पूरे विश्व के साथ द्वीप समूह में भी आज

पत्तनम में अपने पूर्वी बेड़े में 17A परियोजना के अंतर्गत निर्मित छठे स्वदेशी स्टील फिगरेट महेंद्रगिरी को शामिल करेगी। पूरे विश्व के साथ द्वीप समूह में भी आज विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है। कशाल द्वीप में अगले 6 दिनों के भीतर LPG आपूर्ति शीघ्र बहाल होगी और MV स्वराज द्वीप आज सुबह 10 बजे वाइजैक के लिए रवाना होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: भाइयों और बहनों, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आपने नसबंदी कराई है, क्या आपने IUD लगवाई है, क्या आप कॉन्डोम का इस्तेमाल करते हैं, क्या आप गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग करते हैं, और ऐसे ही कई तरीके हैं परिवार नियोजन करने के, तो फिर इनका इस्तेमाल क्यों नहीं करते। अब जनता को भाषण दो तो बस तालियां बजा देती है।
1: अब आप तो काम की बात सुनिए, परिवार नियोजन को अपनाइए, अपने बच्चों में अंतर लाइए, परिवार को सीमित रखिए, क्योंकि हमारा आज का फैसला आपके बच्चों का भविष्य बदल सकता है।
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है, लीजिए सुनिए हमारा अगला कार्यक्रम।

देश रागिनी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को सोनिया का नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के देश रागनी कार्यक्रम में, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे देशभक्ति से ओतप्रोत गीत जो आपके मन में भी जोश जगा दे। श्रोताओं, देशभक्ति केवल सीमा पर लड़ना नहीं बल्कि अपने हर कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना भी है। जो अपने देश से प्रेम करता है वही सच्चे अर्थों में राष्ट्र का सम्मान

श्रोताओं, जब हर नागरिक अपने दायित्व निभाता है तभी राष्ट्र मजबूत बनता है और देश के लिए किया गया हर छोटा प्रयास राष्ट्र निर्माण की एक बड़ी नींव बनता है।

वतन से प्रेम करने वालों की पहचान उनके शब्दों से नहीं, उनके कर्मों से होती है। राष्ट्र पहले, स्वार्थ बाद में, यही एक सच्चे नागरिक की पहचान है।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, इस समय सुबह के 7:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर।
1: हेलो डॉक्टर,

0: हेलो डॉक्टर।
1: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी श्री विजयपुरम के इस लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आपका हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, हर वर्ष 11 जुलाई को यानी आज ही के दिन विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और ये संदेश है कि स्वस्थ, शिक्षित और जागरूक नागरिक ही किसी भी देश के सतत विकास की वास्तविक नींव होते हैं। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा विषय है युवाओं का स्वास्थ्य, बेहतर भविष्य की पहली शर्त। श्रोताओं, युवा आज हैं तो भविष्य भी उनका है, लेकिन ये भविष्य तभी उज्जवल होगा जब वे सर्वांगीण रूप से स्वस्थ होंगे। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद, तनाव से बचाव और समय समय पर जांच जैसी अच्छी आदतें न केवल व्यक्ति को स्वस्थ बनाती हैं बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन्हीं सभी पहलुओं पर चर्चा करने के लिए और आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं स्वास्थ्य विभाग के उप निदेशक डॉक्टर अभिजीत रॉय। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: हाँ जी, धन्यवाद
1: जी। श्रोताओं, विश्व जनसंख्या दिवस के इस विशेष अवसर पर आज का हमारा विषय है युवाओं का स्वास्थ्य, बेहतर भविष्य की पहली शर्त। इस विषय से संबंधित आपके मन में जो भी प्रश्न है आप कॉल करके पूछ सकते हैं। हमारे नंबर हैं 232558, एसटीडी कोड है 03192। नंबर एक बार फिर से बता रहे हैं दोस्तों, नोट कीजिएगा 232558, एसटीडी कोड है 03192। तो जल्दी से फ़ोन उठाइए और जुड़ जाइए हमारे इस लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर से। डॉक्टर साहब, पुनः आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है।
2: हाँ जी
1: जी। तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आज के युवाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या जो है स्वास्थ्य की है, वो कौन सी है?
2: देखिए, सबसे पहले क्या हो है कि हमारे जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 है, उसके आधार पे सरकार ने बहुत सारा मापदंड तय किए थे कि हमारा स्वास्थ्य कैसे होना चाहिए, देश का लोगों का स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, महिलाओं का क्या अधिकार होना चाहिए, महिलाओं का स्वास्थ्य कैसे होना चाहिए। और जो हमारे जो युवा है, जो यंग पीढ़ी है, जिसे हम हमारे मेडिकल साइंस में 15 से ले कर 49 तक, मतलब 15 to 49 ईयर्स तक मानेंगे, और इनके जो स्वास्थ्य का एक विविध पहलू है। इसलिए विविध पहलू इसलिए है क्योंकि हम जो 15 साल के बच्चे, 15 से 19 साल या फिर 11 से 19 साल जिसको बोलते हैं, उसके बोलते हैं एडोलसेंट पीरियड, जहाँ ना बच्चे रहते ना एडल्ट रहते, तो इस कॉल्ड एज ऑन द होराइजन ऑफ एडल्टहुड रहते हैं, तो उनकी अलग समस्या होती है। अब उससे बड़े जो बच्चे जो कॉलेज जाते हैं या जो नौकरी

0: या जो परिवार में हैं, पारिवारिक जीवन अपनाते हैं, उनकी समस्या अलग होती है। तो सरकार ने इसको देखते हुए 1996 में सरकार ने एक स्टेप ली, उसे कहते हैं रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, जिसके अंडर में इन सारे लोगों को, इन एज ग्रुप के जो लड़के हैं लड़कियों को, इनको जोड़ा गया, इनके स्वास्थ्य संबंधी कुछ कुछ कार्यक्रम बनाए गए, कुछ पॉलिसीज बनाए गए। और उसके सक्सेस के बाद 2001 में या 2 में फिर उन्होंने RCH2 का लॉन्च किया था, RCH2। और इसमें क्या है, उन्होंने जो प्रोग्राम्स है उनके एम्बिट बढ़ा दिए हैं। तो अगर आप, मैं प्रोग्राम और या पब्लिक हेल्थ की तरफ से बात करूँ, तो पहला तो ये जाती है कि सबसे बड़ा स्वास्थ्य होती है कि कन्फ्यूज़न रिगार्डिंग सेल्फ। तो उसमें क्या होता है कि लोग आधा ज़्यादा खाते हैं, कम खाते हैं, एक तरह से बोल सकते हैं न्यूट्रिशन में, जिसको हम बोलते हैं कि माल न्यूट्रिशन। माल का मतलब ये नहीं होता कि आप कमज़ोर हो, माल न्यूट्रिशन का अर्थ होता है कि आप कुछ चीज़ ज़्यादा खाते हो या फिर सब कुछ ज़्यादा खाते हो, ओवरऑल भी हो सकता है, अंडरऑल भी हो सकते हैं, स्पेसिफिक डिफिशेंसीज भी हो सकती है आपकी। हम बच्चों में तो डिफिशेंसी की बात करते हैं कि एडल्ट्स में कभी बात नहीं करते हम, जो बहुत बड़ा एक मुद्दा है। खैर जो लड़की बच्चा है उनके लिए हम आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स और सभी के लिए डीवॉर्मिंग एक तरह का पार्ट ऑफ द न्यूट्रिशन हम कराते हैं। इसके अलावा जो आपका सबसे बड़ा इश्यूज होता है आज के डेट पर, साइकोलॉजिकल इश्यूज़। अब अगर बोलें कि जेंजी, जिसको एक बहुत बड़ा एक दुनिया में एक कारनामा चल रहा है जेंजी नाम से, तो यहाँ पर आपका एक होता है कि डिसोसिएशन फ्रॉम फैमिली, डिसोसिएशन फ्रॉम सोसाइटी, वो एक दिखाई दे रही है। साइकोलॉजिकल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। पहले हमारा एक देखेंगे कि एक जॉइंट फैमिली हुआ करती थी तो बच्चे पल जाते थे। आज के बच्चों को पालना पड़ता है और डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं गड़बड़ कर लेते हैं,
1: अकेले रह जाते हैं।
0: सिंगल चाइल्ड वाली प्रॉब्लम हो रही है, तो इससे क्या होता है, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो जाता है। स्ट्रेस ज़्यादा हुआ तो एडिक्शंस पे जा सकते हैं, सुसाइडल टेंडेंसी होता है, सडन डिप्रेशंस में आ सकते हैं। और माँ बाप दोनों जॉब में होता है तो बच्चों का जो वो परवरिश होना चाहिए होता नहीं है, तो ये एक साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होती है। तीसरी जो होती है, पर्सनालिटी डिस्टर्बेंस दिखाई गई है। पर्सनल डिस्टर्बेंस में क्या होता है कि आप मोर ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया में जो आता है उसी चीज़ को आप मान के चलते हो, तो उससे क्या हो रहा है कि आपका जो रियलिटी ऑफ लाइफ से कहीं ना कहीं आप डिसोसिएशन होते जा रहे हो, ये एक इश्यूज़ हो रही है। तीसरी जो एक होड़ लगी है बॉडी बिल्डिंग की, मैं थोड़ा सा आपके जो चैप्टर्स एंड बुक से थोड़ा अलग जा रहा हूँ, जो दिख रहा है वहाँ पे, तो बॉडी बिल्डिंग में क्या हो रहा है कि लोग 15 साल जैसे होता 16 साल हो जाते हैं जैसे बॉडी बिल्डिंग के लिए पहुँच गए। आजकल तो 40 साल के जवान और 50 साल के भी जवान भी पहुँच जाते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए।
1: जी तो, इस बीच एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, बात हम चर्चा को आज जारी रखेंगे, एक कॉलर से बात कर लेते हैं। हेलो,
2: नमस्ते बहन जी।
1: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
2: मैं डॉक्टर सितारे, बिहार के वैशाली जिला से।
1: जी, अपना प्रश्न रखिए।
2: युवाओं का सही स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहता हूँ। युवाओं का स्वास्थ्य एकदम बिगड़ा चला जा रहा है, इस पर कृपया प्रकाश डालिए।
0: डॉक्टर साहब, एक ऐसा प्रश्न है, बहुत ज़्यादा बड़ा वेग है, मैं उसको स्पेसिफाई करना चाहूँगा, छोटा सा पॉइंट वाइज करना चाहूँगा, बोलने के लिए इसमें बहुत देर तक बोली जा सकती है। सबसे बड़ी बात होती है कि हमारे, मैं जो डिस्कशन को बढ़ाए रहता था, आपका फ़ोन आया, तो हमने बोला कि सबसे बड़ा इश्यूज़ है न्यूट्रिशन का। हम न्यूट्रिशन बच्चों में तो देखते हैं, जो युवा एंड एडल्ट्स में जो न्यूट्रिशन, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। हमें बैलेंस डाइट चाहिए, बैलेंस डाइट में भी उसमें आपको सारे जो कंपोनेंट्स होती है आपकी पोषण की, पोषक तत्व जो होती है, सब होना चाहिए उसमें। अभी हम क्या करते हैं कि सब बच्चे कॉलेज जाते हैं तो कैंटीन में बर्गर खा लिए या वन पॉट मील जिसको बोलते हैं, घर से कुछ एक दाल और सब्जी, एक दाल और एक राइस लेके चले गए, कुछ सब्जी और राइस लेके चले गए, तो ये खाने का जो पहले जो एक मील होता था, मील प्लान, वो कहीं ना कहीं परिवार में नहीं होती है। अब देखोगे कि अब सभी ऑनलाइन मंगा के खा लेते हैं ऑफिस के अंदर, इवन घर के अंदर वही चल रहा है हमारा, तो न्यूट्रिशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही होता है। हम लोग क्या करते हैं कि एडल्ट में ओबेसिटी की बात करते हैं और बच्चों में कुपोषण की वजह से जो अंडरवेट है उसकी बात करते हैं। मैं इसको चार तरीके से डिवाइड करना चाहूँगा न्यूट्रिशन को। पहला तो न्यूट्रिशन है आपका कि कुपोषण, या कि कम खाना, या फिर बहुत ज़्यादा पतले होना। बहुत ज़्यादा पतले होने से प्रॉब्लम क्या होता है कि आपको रिप्रोडक्टिव लाइफ जो होती है, प्रजनन क्रिया, जो आपकी जो प्रजनन का जो इश्यूज होता है, वो प्रॉब्लम होगा। ओवरवेट होंगे, ज़्यादा वजन होगी तो भी आपको तकलीफ होगा ये चीज़। तीसरी एक जो चीज़ दिखाई देती है जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक डिफिशियंसी, जैसे आयोडीन डिफिशियंसी हो गया, आयरन डिफिशियंसी,

0: जिसके डेफिशिएंसी जिसके वजह से आपको जो एनीमिया होती है आपको उससे लो ब्लड बच्चे पैदा होते हैं, ये सर स्पेसिफिक डेफिशिएंसी चलती है। तीसरा होता है इम्बैलेंस, जो कोई नहीं बात करता इस बारे में। इम्बैलेंस की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हम जैसे शराब पीते फॉर एग्जांपल, तो आपके शराब पीने से शराब को हजम करने के लिए शरीर के अंदर जितने विटामिन है बहुत सारे उस विटामिन का भी यूज़ हो जाता है, कि शराब के साथ ज़्यादा खाना तो कोई खाता नहीं है, तो अल्टीमेटली ये इम्बैलेंस हो जाता है। आप एक चीज़ ज़्यादा खाते दूसरी चीज़ कम खाते हो तो शरीर में वो लगता नहीं है, उल्टा बॉडी में फैट जमा होना या फिर दूसरा कोई तकलीफ दिखाई देना, तो इसको बोलते हैं इम्बैलेंस। तो चारों जो कुपोषण के जो चारों जो पार्ट है उस चीज़ को आपको मान के चलना है। दूसरा इश्यूज मैंने बताया था साइकोलॉजिकल इश्यूज, साइकोलॉजिकल इजी सुसाइड टेंडेंसी जा रहा है। तीसरा जो होता है उनका पर्सनलिटी डेवलपमेंट प्रॉब्लम हो रहा है, वो अपने आप के अंदर फाइट कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया का असर हो या फिर सिंगल फैमिली में क्या बोलते न्यूक्लियर फैमिली की वजह से हो रहे हो, ये सारा मेजर्स प्रॉब्लम हमारे पास जो है आज के डेट पे चल रहे हैं।
1: जी जी, उम्मीद करते हैं आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। जी डॉक्टर साहब, हम बातें कर रहे थे युवाओं के स्वास्थ्य के जो चुनौतियाँ हैं उनके बारे में। जी
0: अच्छा, तो मैं बोलता पर्सनल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे हम लोग। जो पर्सनल डेवलपमेंट में क्या होता है कि जैसे पर्सनल डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि आप अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छे आपके बाल अच्छे हो, शरीर अच्छा हो, चमड़े अच्छे हो, जो स्किन केयर होता है, पर्सनल हाइजीन होता है। पर्सनल डेवलपमेंट का सबसे बड़ा चीज़ होती है कि डिसीजन मेकिंग। कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं कि अपने बड़ों को देख के, अपने जो पीयर ग्रुप को देख के घर के अंदर घर के बाहर, या फिर अपने जो बड़े भाई बहन उनको देख के हम उस चीज़ को सीखते हैं कि डिसीज़न कैसे लेना पड़ता है, किस सिचुएशन में कैसे हम लोग को बिहेव करना है, वो चीज़ नहीं हो रहे हैं। तो बच्चे डिसीज़न लेकिन मेकिंग नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे भी बच्चे हमारे पास आते हैं जो बोलते हैं कि कल 10th के एग्ज़ाम देंगे, आज आते रात को के बोलते हैं सर मैं मैथ्स लूँ या बायोलॉजी लूँ। हम बोला बेटा एग्ज़ाम दे दे, इसके बाद बात करेंगे हम लोग। तो लास्ट में उनका जो स्ट्रेस होती है उसकी वजह से होता है एग्ज़ाम भी ख़राब हो सकते हैं, दिमाग के अंदर दूसरे को टेंशन घुमा देते हैं, ये हो जाती है। मैं आपको बात बोला था कि देखिए हम लोग हमारे टाइम पे जो पुराने ज़माना था उस समय हम पल गए हैं, आज बच्चों को पालना पड़ता है, वो बहुत बड़ा इश्यूज़ हो गया है, एक तरह का हो गया। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन भी घट रहे हैं, लोग ज़्यादा बच्चा नहीं चाह रहे कि एक के पीछे बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है, आपको टाइम है भी नहीं किसी के पास। तो ये एक जो कंपाउंडिंग इश्यूज चल रहे सोसाइटी में, इसको डील करना है। उसको डील करने का तरीके है कि सबसे अच्छा चीज़ होगा कि अगर आप ज्वाइंट फैमिली रह सकते हो, तो जो शायद पॉसिबल ना हो आज के टाइम पे।
1: जी जी बिल्कुल,
0: ज्वाइंट फैमिली करोगे तो ये बहुत सारा आपका जो वर्कफोर्स डिवीज़न जो होगा, काम का जो बंटवारा होगा, आप अगर कहीं चले भी गए तो आपके पीछे देखभाल के लिए लोग हैं, अपने घर वाले हैं, गुड बैड अगली, तो ये एक रहेगा, तो वो चीज़ आपको देखना है। तीसरा जो है कि हमें अब क्या कर रहे हैं कि खेलने के लिए बाहर कम आ रहे बच्चे, तो कहा जाता है कि WHO कहता है कि जो 2 साल के बच्चे हैं उनको ही बाहर खेलना आप शुरू कर दिए, उनसे स्टार्ट करा दिए खेलना, खिलवाना उनसे बाहर कुछ भी, चाहे दौड़े भागे कुछ करे कीचड़ में रहे। अब हमारे इसमें कहावत एक चीज़ होती है, इसको बोलते हैं हाइजीन हाइपोथेसिस। हाइजीन हाइपोथेसिस एक्चुअली अस्थमा के लिए तैयार की गई थी, बट इसको हम जनरलाइज करना चाहूँगा। हाइजीन हाइपोथेसिस का एक सबसे बड़ा अहम मुद्दा ये है कि यहाँ पर आपको कि अगर आप थोड़े थोड़े मात्रा में इन्फेक्शन को अंदर ले, एलर्जेंस को अंदर ले, तो आपके बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होगा, ना ही कि बीमारी। अब सब कुछ अगर सब एकदम साफ़ सुथरा चाहिए, नीट एंड क्लीन चाहिए, आपको बॉटल ड्रिंकिंग वाटर पीना है जहाँ पे जीरो बैक्टीरिया हो और आपको एकदम साफ़ सुथरा खाना खाना है, तो क्या होगा, बदन में खाना तो खाओगे, पानी भी पी लोगे, प्याज भी बुझ जाएगा, लेकिन आपको तो इम्यूनिटी नहीं आएगा। कि थोड़ा सा मात्रा में अगर कोई बैक्टीरिया वायरस ऐसा कुछ शरीर में जाता है तो वो कभी आपको बीमार नहीं करते, आपके शरीर में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है जिसका रेसिस्टेंस पावर बढ़ाता है। और यही चीज़ है हमको युवा को ज़रूरत पड़ेगा। आज बीमार बहुत पड़ रहे हैं, कारण ये कि हाइजीन हाइपोथेसिस हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। किचन में कितने बच्चे खेलते हैं? बहुत ही कम खेलते हैं
1: आजकल, तो ज़्यादातर बच्चे मोबाइल तक सीमित रह गए हैं।
0: बिल्कुल, तो ये एक हेल्थ का एक लॉन्ग टर्म इश्यूज़ होगा जिसमें एलर्जीज़ बढ़ेंगे आपको फ्यूचर में, और एलर्जीज़ को करने के लिए आपको जो एंटी एलर्जिक बॉडी में फैक्टर होना चाहिए वो फैक्टर आपके पास नहीं है, क्योंकि आपको भी एक्सपोज हुई नहीं उससे।
1: जी
0: तो ये सारी चीज़ें हमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम दिलाती है। जहाँ पर एडोलेसेंट प्रेगनेंसी का सवाल है वो देश में काफ़ी कम हो चुका है, अंडमान में तो काफ़ी कम है, खासकर पॉक्सो जो एक्ट आई है ना उसके आधार पर काफ़ी कम हो गए, ट्रैवल्स में भी कम हो गए हैं, तो उसकी बहुत बड़ी समस्या हमारे पास नहीं है। एल्कोहलिज्म का समस्या नहीं है हमारे पास, अभी एडोलेसेंट की बात कर रहे हैं हम, एडल्ट में हैं, एडिक्शंस की तरफ ज़्यादा नहीं है बच्चे आजकल, कम हो रहे थोड़ा सा, लेकिन जो आंकड़ा बताते हैं एडल्ट्स में बहुत ज्यादा है।
1: जी एक सर, एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, बातें करते हैं। हेलो,
2: ऑन द लाइन।

0: आप जिस व्यक्ति से,
1: लगता है किसी कारणवश कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है।
2: हाँ जी
1: जी, तो हम बातें कर रहे थे उनके स्वास्थ्य के बारे में और जानना चाहेंगे कि जो अनियमित दिनचर्या जो आजकल बन गई है और बदलती जो जीवन शैली है, वो युवाओं को किस हद तक प्रभावित कर रही है।
2: मैं इसमें आपको सहमत हूँ कि बहुत ज़्यादा, मतलब मैं कहना चाहूँगा बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है, लेकिन मेरा वर्षन थोड़ा अलग होगा। अनियमित का मतलब होती है कि आप एक दिनचर्या बना लीजिए, मुझे 6 बजे उठना है और इतने बजे स्कूल जाना है, इतने बजे वापस आना है, ये खाना खाना है, इधर स्पोर्ट्स जाना है, मेरे टाइम पे पढ़ाई होगा, मुझे इतने टाइम पे ऑफिस जाना है, इस टाइम पे आना है, इसके बाद फैमिली में ये काम करना है मुझे। दिस इज़ कॉल्ड एज योर डिसिप्लिन लाइफ जिसे कहते हैं। लेकिन मेरी परिभाषा के हिसाब से मैं सबसे आगाह करना चाहूँगा कि आप स्ट्रिक्ट, जो एकदम स्टिक टू द कोर जिसे कहते हैं, उतना वो लाइफ दिनचर्या आप यूज़ ना करो। आपका जिम का इंस्ट्रक्टर ने बताया कि 4 बजे उठना है, 5 बजे तक जिम में पहुंच जाना है आपको, और आप लेट राइजर हो तो आप बॉडी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, और यही कारण है आपका हार्ट में प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, कंसंट्रेशन का ना होना, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है ना, आप इसकी वजह से कर रहे हो। बॉडी रिदम को फॉलो करो, पहली बात ये चीज़ याद रखना है कि आप अगर अर्ली रिजाइन, आपको 6 बजे से पहले नींद नहीं खुलती, आप 4 बजे क्यों उठोगे?
1: आपके शरीर के अनुसार, शरीर के अनुसार ढलिए
2: पहले। कोशिश कीजिए कि धीरे धीरे ओवर पीरियड ऑफ टाइम, 6 मंथ, 1 साल के अंदर आप धीरे चेंज कर पाओ तो चेंज करो स्लोली, बट विगरस नहीं हो। अगर ऐसे लोग अगर बॉडी बिल्डिंग करना चाहे तो शाम को चले जाए, रात को चले जाए, देयर इज नो हार्म। आपको ऐसा नहीं कि सुबह उठ के करना है, सुबह में इफेक्ट अच्छा होता है, अलग बात है, बट नहीं करना है। तो ये चीज़ आपका दिनचर्या का एक बात करूँगा। दूसरा दिनचर्या का जैसे होता है कि आपका स्पेसिफिक फूड ग्रुप्स जो खा रहे हो आप, उस पर ध्यान दो दिनचर्या पे, कि आपको मिनिमम 2-3 मील्स होना चाहिए। 3 मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर जिसको बोलते हैं, तो उसमें हम कहते हैं कि ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग साइज ब्रेकफास्ट, मिनिस्ट्रियल लंच एंड डिनर लाइक ए बेगर, तो जगह आपको लाइफ ठीक रहेगी। न्यू कंसेप्ट 2 मील प्रिंसिपल्स पे आ रहे हैं अभी, और बहुत उम्दा प्रिंसिपल है। आप सुबह एक बार बहुत पेट भर के खा लीजिए, जो उठने के 2.5 घंटे के अंदर, उसके बाद कुछ ना खाए, सिर्फ पानी के अलावा कुछ ना ले, या शाम को सन सेट से पहले अपना फुल मील फिर ले ले, फिर रात को कुछ ना खाए, चाय तक भी नहीं पीना है। इससे क्या होगा कि आप बॉडी, आपको रिदम होगा, लीवर को रेस्ट मिलेगा, पेट को रेस्ट मिलेगा, माइंड को रेस्ट मिलेगा, सर्कुलेशन बराबर होगा, आपका प्रेशर शुगर काफ़ी कंट्रोल में आ जाएगा, कर पाओगे तो।
1: जी जी, बातचीत को यहीं पर थोड़ा सा विराम देना चाहेंगे। कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो
3: हेलो
1: हाँ जी,
3: नमस्कार जी।
1: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
3: धर्मवीर, गांधीनगर दिल्ली से बात कर रहा हूँ।
1: जी धर्म जी, अपना प्रश्न बताइएगा।
3: डॉक्टर नमस्कार।
2: नमस्कार धर्म जी, बताइए।
3: डॉक्टर साहब, ये जो हमारे यंग आज के टाइम के जो बच्चे हैं, ये सामने आने की जो पर्सनालिटी है, मसल है, जैसे बच्चे जिम जाते हैं वो भी अपने को वैसा ही बनाना चाहते हैं।
2: हाँ जी।
3: कुछ ये या तो गलत संगत में पड़ जाते हैं, नशे में पड़ जाते हैं।
2: हाँ जी।
3: तो जो बच्चा अपने तरीके से, अगर अच्छा यंग बच्चा किसको कहेंगे, जो ये फिजिकल फिट हो और या मसल वाला बच्चा फिट हो उसको यंग कहेंगे, अच्छा पर्सनालिटी हो उसको, जैसे उनकी मसल बन जाती है।
2: हाँ जी।
3: तो बच्चे आजकल दूसरों को देख के ही ज्यादा, नशा भी दूसरों को देख के ही करते हैं, और एक्सरसाइज के लिए उनके लिए नहीं हो पाता तो वो फिट कैसे रहे, उनकी डाइट। और ये जो जिम वाले बच्चे हैं आजकल, जो गलत तरीके से जो पाउडर वगैरह खाते हैं।
2: हाँ जी।
3: ये भी तो ठीक नहीं है, ये भी तो आप देखते हैं कि
2: सही बात है।
3: तो बच्चों को ठीक डाइट, ठीक एक्सरसाइज, जो देसी एक्सरसाइज है वही करनी चाहिए, साइकिलिंग ज्यादा करनी चाहिए, साइकिल में जाते हैं तो उसकी मसल बहुत
2: बिल्कुल बिल्कुल सही बोले।
3: और रस्सा कूदना चाहिए। तीसरा एक स्विमिंग, तीन ये डाइट एक्सरसाइज है जिससे कंप्लेंट हमारी एक्सरसाइज हो जाती है। हमने देखा है जो बच्चा अच्छी स्विमिंग करता है तो उसका लुक, गेटअप दूर से देखेंगे तो बिल्कुल फिट फाट होता है, जिम वाले बच्चे से भी बहुत अच्छा होता है।
1: जी जी धर्मवीर जी, प्रश्न रखिए।
3: सवाल मेरा ये भी है कि गुटखा वगैरह नशा से ये डॉक्टर साहब ये खाते हैं, ये भी गलत चीज है, तो इसके लिए आपकी राय में ये जानना चाहूंगा, ये जिम पाउडर है जो बच्चे सुन रहे हैं, नहीं भी सुन रहे हैं, उनके पेरेंट्स सुन रहे हैं, तो उनको ये कहना चाहिए, बताना चाहिए आपको भी कि ये पाउडर जो है।

0: ये जो एक्सरसाइज के बाद लेते हैं वो गलत चीज़ है।
1: धर्म जी, आप मेरे मुंह का बात छीन लिए। मैं डिस्कशन पे हमारे जो परामर्श हो रहा है इसके इसमें आगे मैं वहीं पे जिम बॉर्डर पे आ रहा था, तब इतने आपने कॉल कर दिया है, धन्यवाद। सबसे पहले बात है कि युवाओं में जो सबसे पहले मैंने बोला कि जो बॉडी बिल्डिंग की होड़ लगी उसे बंद किया जाए। 8 पैक 6 पैक सबकी नहीं बनती है, नहीं बनती है, क्योंकि वो बनने के लिए क्या होता है कि आपका बॉडी वैसे ही होना चाहिए, पहला बात है। अगर आपका बॉडी सूट करता है धीरे धीरे आप उसको बढ़ा सकते हो। दूसरी बात यह है कि मैंने बोला कि सडनली विगरस एक्सरसाइज कर दिए कि 1 महीने के अंदर मुझे अचीव करना है, आपका शरीर परमिशन नहीं दे रही, आप अचीव करना चाहते हो कि मुझे इतने मसल्स मास हो, मेरे इतने सारे पेट में आपके जो एप्स हो इतने हो, वो ये सारा चीज़ वो नहीं होता, इसलिए चीज़ों को धीरे धीरे शुरू करें। 15 साल के नीचे बच्चों को जिम नहीं जाना है, और जिम में भी पहले क्या मैट एक्सरसाइज शुरू करें, कार्डियो, फिर धीरे कार्डियो पर आए, धीरे धीरे फिर आगे बढ़ाए कि चीज़ें। नेक्स्ट होती है कि ये जो
0: डॉक्टर
1: वे
0: साहब, सॉरी मैं
1: प्रोटीन,
0: माफी मांगना चाहूंगा, एक सवाल बीच में जोड़ रहा हूँ फिर मैं फोन काट दूंगा। जो बच्चे ज्यादा मोटे हो जाते हैं, शरीर ज्यादा थुलथुला हो जाता है, तो उन बच्चों को, यंग बच्चों को, ये जो यंग है हमारे 20-25-30 साल के, तो उनको थोड़ा पतले होने के लिए भी टिप दीजिएगा।
1: हाँ
0: बहुत
1: जी,
0: बहुत
1: हाँ जी,
0: धन्यवाद, मैं
1: बिल्कुल,
0: फोन रखता हूँ,
1: थैंक यू।
0: सुनता हूँ।
1: तो आपने जो वे प्रोटीन की बात की, जो जिम प्रोटीन की बात की है, उसको कभी भी आप कभी भी ना ले, कहीं पे भी ले, कितने भी ट्रस्टवर्दी कंपनी ना हो, कभी ना ले। उससे अच्छा आपका देसी में सत्तू हो जाता है, देसी में जो आपके मल्ट मिक्स ग्रेन का जो आटा हो जाती है, आपके जो चने हो जाते हैं, इसके आप और कुछ कुछ चीज़ें हैं। पनीर को मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ कि पनीर मतलब इसको जो है आपका दूध को तोड़ के बनाया जाता है, जो चीज़ टूटता है वो चीज़ शरीर के लिए अच्छा नहीं है उतना लॉन्ग टर्म में। तो इसकी वजह से मैं बोलता हूँ कि ये सारे प्रोटीन्स आप ले सकते हो, चाहे आप नॉन वेज में अंडे भी ले सकते हो, आप चाहे मटन्स भी ले सकते हो, आपके हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसको एक सीमित दायरे तक आपको लेना है। और दूसरी बात आपने पूछा है कि जो दिनचर्या में जैसे साइकिलिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, और स्किपिंग, रोप स्किपिंग जो आप करते हैं वो कर सकते हैं, कुछ नहीं है तो हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो योगा प्रोटोकॉल है उसको आप डेली कर लें, या फिर बच्चों को जो स्कूल में पीटी सिखाते हैं वो पीटी को कर लें, उतना ही काफ़ी है। मसल्स बिल्ड करना तो एक तरह का बोल से नेचुरल होना ही ठीक रहेगा, नेचुरल नेचुरल अगर है तो उसको धीरे धीरे हम उसको स्टिप करा सकते हैं। जहाँ तक पतले होने का सवाल आप बोल रहे हैं, पतले सवाल में आपको एक बता दूँ कि यहाँ पे डाइट प्लान सबसे पहला होना चाहिए। डाइट प्लान मतलब नहीं कि फास्टिंग करो, आप पूरा फास्टिंग करके फिर पतले हो जाओगे तो उससे क्या होगा, बॉडी में कॉर्टिजोल लेवल बढ़ेगा, फ्यूचर में जाकर आपको और मोटा कर देगा, वो चीज़ आपके शरीर को उतना अच्छा सुडोल नहीं बनाएगा। डाइट प्लान में ऐसा कीजिए कि आपको जितनी ज़रूरत है कैलोरी उतनी ही लीजिए, प्रोटीन जितना ज़रूरत है उतना ही लीजिए, और उसके बाद अपने आपको एक ब्रिस्क वॉकिंग जिसे कहते हैं, 10,000 स्टेप बोल के लोग बच्चे आजकल बहुत करते हैं, अब ऐसे जवान भी करते हैं, तो 10,000 स्टेप बोल के ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आपको 4 to 5 किलोमीटर चलने हैं, और ब्रिस्क वॉकिंग जहाँ पर रुकना नहीं है, आपको स्लो नहीं होना है, मोबाइल पर ध्यान नहीं देना है, किसी बात नहीं करनी है, और उसके बाद फिर मंचिंग नहीं करना, मतलब वॉकिंग के बाद खाना नहीं खाना है आपको, आधे घंटे बाद पानी पानी पी सकते हो, सिप सिप करके आप ये कर सकते हो। जहाँ तक फास्टिंग का सवाल है, मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे हमारे सनातन धर्म में आपका एकादशी का फास्टिंग होती है, वो एक बेस्ट फास्टिंग होती है, उस फास्टिंग को आप कर सकते हो। मुस्लिम्स में जो 1 महीना का जो रोज़ा का फास्टिंग रहती है, दैट वॉज सबसे बेस्ट फास्टिंग होती है, उसमें बहुत सारी नियमावली होती है, उस नियमावली को मानते हुए अगर आप करोगे तो आपका बॉडी ऑटोमेटिक आपका जो है सुडोल हो जाएगा, आपको बॉडी ऑटोमेटिक रिपेयर कर लेगा खुद को, ये चीज़ आपको ध्यान देना है।
2: जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। एक और कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं तो बातें करते हैं। हेलो
3: हेलो, नमस्कार
2: जी। नमस्कार, आपका नाम? मैं
3: राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
2: जी राकेश जी, बताइए अपना प्रश्न।
3: मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि आजकल की हुआ है, तो उनको स्वास्थ्य के लिए खान पान का क्या प्रावधान होना चाहिए, कि आजकल कुछ उठ डाल जो खाते हैं युवा को खाने पीने के बारे में पूछना चाहता हूँ।
1: राकेश जी देखिए, खान पान तो खुद के टेस्ट और खुद के जो रहन सहन और आप आसपास के मिलने वाले सामान पे डिपेंड करेगा। कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा, जैसे सब कहते हैं समोसा मत खाओ, पकौड़ी मत खाओ, कचौड़ी मत खाओ, मैं कहूँगा उसको रिड्यूस करें, आप मत खाना नहीं होगा, आप मन नहीं मार सकते हो, मन मारोगे तो आपको तकलीफ़ होगा, तो हो सकता है कि आप हर दिन समोसा ना खा के हफ्ते में एक बार एक दिन खा लिए तो चलता है, अगर वो भी नहीं खा पाओगे धीरे तो और भी अच्छी बात है। फास्ट फूड्स को से पहले दूर रखिएगा। और दूसरी बात क्या होता है कि जो आप खाना खा रहे हो, कि वन पॉट मील ना खाकर आप थोड़ा सा एक प्लान्ड मील बनाइए। प्लान्ड मील का मतलब होता है जहाँ पे आपका प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट भी हो, विटामिन्स भी हो, यानी कि साग सब्जी, घी, दाल, ठीक है, सोयाबीन हो गया, इस टाइप के मील प्लान बनाइए। जैसे हम लोग अगर

0: ऐसा मैं फोनेटिक टाइप से करूँ या फिर आपको इन्फॉर्मेशन कर, जैसे गुजराती थाली हो गया, आपको मारवाड़ी थाली हो गया, दिस इज द बैलेंस्ड थाली माना जाता है इस चीज़ में, तो वो चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तीसरा बात क्या होता है कि ये जो जब चीज़ों को खिलाते हो बच्चे को, ये ध्यान रखना है कि कुछ कुछ एंटी फूड प्रिंसिपल्स हम बोलते हैं, वो चीज़ को संभाल के। हम क्या करते हैं कि थोड़ा मोटे बच्चे या थोड़ा सा किसी को डायबिटीज़ शुगर, उनको बोलते हैं बहुत सलाद खाओ, तो वो क्या करते हैं खाने के साथ ज़्यादा सलाद खा लेते हैं। अगर खाने के साथ अगर ज़्यादा सलाद खा लोगे तो बदन में कमजोरी आएगी, मिनरल की डिफिशेंसी हो जाएगी, आयरन डिफिशेंसी हो जाएगा। तो फाइबर्स या सैलड जो है 35 से 50 ग्राम ही अपने खाने में रखिएगा। उसके बाद आपको अगर खाना है, फ्रूट्स खाना है, आपको सैलड खाना है, तो 2 घंटे बाद आप जितना चाहे खा लो आप, लेकिन नॉर्मल मील आप रखिएगा खाने में। ये चीज़ या ध्यान रखिए सारे पेशेंट्स के लिए, जो डायबिटीज़ है, जो हाइपरटेंशन है, वो ध्यान दे चीज़ों को कि खाने के साथ सैलड्स कम करने हैं आपको। तो आमतौर पर लोग बोलते हैं सैलड्स बहुत खाओ, खाना कम खाओगे तो अच्छा रहेगा, उससे आपको लॉन्ग टर्म में वीकनेस आ जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। मैंने इससे पहले बोला है कि खाने के लिए आप पैटर्न इस्तेमाल कर सकते हो किंग साइज़ ब्रेकफास्ट, मिनिस्ट्रियल लंच और डिनर लेके बेगर, ये प्रिंसिपल्स को आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर दो प्रिंसिपल मील प्रिंसिपल आप कर सकते हो, सुबह एक बहुत खा लिए, शाम को खा लिए, बीच में कुछ ना खाए सिर्फ पानी के अलावा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। दूसरा है कि बच्चे को एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, एक्टिविटीज़, और एक्टिविटीज़ के बाद जो भूख लगती है वो भूख आपको शरीर को अच्छा मतलब एनर्जी देगा, सब कुछ देगा। आपको भूख लगी नहीं, आप मंचिंग कर रहे हो, तो आपको शरीर में जाके जमा होगा, आपको तकलीफ देगा वो चीज़, ये ध्यान रखिएगा।
1: जी जी, उम्मीद करते हैं राकेश जी आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा, और आपने इतनी दूर से हमें कॉल किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो बात रही संतुलित आहार की, इसके साथ साथ क्या पर्याप्त नींद भी युवाओं के स्वास्थ्य के लिए महत्व रखता है?
0: हाँ, नींद का एक बात करूँ कि जैसे आप 8 घंटा, बच्चों के लिए 8 घंटा बहुत ज़रूरी होता है, एडल्ट्स के लिए होता है वो 6 to 7 hours, बस 6 to 8 hours इज ओके, 6 घंटे से नीचे नींद कम नहीं करना। और ऐसा नींद जो होगा वो आपको कंटिन्यूस होना है, भी चुटकुट के नींद नहीं चाहिए कि 8 घंटा सो लिया, कभी 2 घंटा दिन में, रात को 4 घंटा, ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग जो 4 घंटा ही सो के उठ के मतलब कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में, उनके लिए थोड़ा टाइम के लिए तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाके उनको नुकसान देगा, हार्ट अटैक वगैरह का चांसेस बढ़ जाएगा। तो नींद ज़रूरत होता है, जो गर्भवती माँ है उसको दोपहर को भी 1-2 घंटा नींद देने से अच्छा रहता है अगर ले पाए तो, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और नींद का एक तरीका होता है कि आपको डीप नींद आना चाहिए, आप आए और फिर सो गए, आराम से फ्रेश होके उठे। अगर आपको लगता है कि रात को हलूसिनेट कर रहे हो, आप रात को बार उठ रहे हो, नींद ठीक से नहीं आ रही है, तो इस बेटर कि आप एक डॉक्टर को दिखाइए क्या आपको कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि वही चीज़ आपको शरीर को और अंदर से खोखला कर देगा नींद अगर नहीं होता है तो डीप नींद होना बहुत ज़रूरी है आपको।
1: जी जी, अब जानना चाहेंगे विश्व जनसंख्या दिवस की इस थीम की, जो युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना के संदर्भ में, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: यही है कि आप जो स्वास्थ्य पे ध्यान दें, एक ही स्वास्थ्य पे ध्यान दें। मैं फिर से बताऊंगा, जिम में आप प्लीज़ ध्यान से जाइए। आपका अगर जिम में अगर बोलते हैं कि टारगेट देते हैं 1 महीने के अंदर आपको बॉडी बनाना है, तो वो चीज़ें फॉलो ना करें, स्लो जाइए, एक्सरसाइज कंटिन्यूस रखिए। एक्सरसाइज से अच्छा होगा कि आप स्पोर्ट्स में जाइए, कोई भी स्पोर्ट्स से, और अपना फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाइए। तो इससे क्या होगा कि आपका बुढ़ापा में जाके जो मसल्स लॉस होता है वो कम हो जाएगा, क्योंकि कहा जाता है कि 30 साल के बाद बदन का 1% बॉडी मास जो होता है आपका मसल्स लॉस होता है। तो जाते जाते जैसे बूढ़ा होता रहेंगे बॉडी लूज होते जाता है, आपको तकलीफ बढ़ती है। तो इसी वजह से मसल्स को आप कभी भी ध्यान देखिएगा कि मसल्स को बढ़ाना नहीं है, मसल्स को मेंटेन करना है। और खान पान में देखिएगा आर्टिफिशियल जो भी फूड है, खासकर ये जो जिम वाली जो पाउडर्स एक कॉलर ने बताया था, इस चीज़ को एकदम अवॉइड कीजिए। घरेलू नुस्खा अपनाइए, जिम करते भी हो तो आपको बहुत सारा फ्यूचर प्रॉब्लम से बचाएंगे इस चीज़ को।
1: जी, और श्रोताओं, ये था आज का हेलो डॉक्टर कार्यक्रम। हमें विश्वास है कि आज के इस कार्यक्रम से आपको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की उपयोगी जानकारी मिली होगी। याद रखिए, स्वस्थ युवा ही एक सशक्त परिवार, सशक्त समाज और सशक्त राष्ट्र की नींव होते हैं। इसी संदेश के साथ आपसे विदा लेते हैं, और साथ ही डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर हमारे श्रोताओं का मार्गदर्शन किया। डॉक्टर अभिजीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद जी।

0: हेलो डॉक्टर, कार्यक्रम के इस अंक में आज का हमारा विषय था युवाओं का स्वास्थ्य, बेहतर भविष्य की पहली शर्त। विशेषज्ञ थे स्वास्थ्य विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर अभिजीत रॉय। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनिया, तकनीकी सहयोग रहा अनिमेश रॉय और हिमांजलि ओझा का, और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी मीना प्रकाश। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है, सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरी आज नौसेना में शामिल होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की, मजबूत तटीय सुरक्षा उपायों के निर्देश दिए। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में, आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा हमवतन लिंडा नोस्कोवा के साथ खेलेंगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन एवं डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑकलैंड स्थित गवर्नमेंट हाउस में औपचारिक स्वागत किया गया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ रिसीव किया। औपचारिक स्वागत के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान रक्षा, पशुपालन, डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ, जिससे भारत न्यूजीलैंड साझेदारी को नई गति मिली। इसके बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड बिजनेस एंगेजमेंट कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रिकॉर्ड कर समय में मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने पर खुशी जताई और विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2 गुना हो जाएगा। उन्होंने न्यूजीलैंड के उद्योग जगत को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि भारत केवल एक बड़ा बाजार ही नहीं बल्कि वैश्विक विकास का एक सशक्त लॉन्च पैड भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
3: वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
5: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है।
3: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री

0: भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
1: लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
0: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई देगी। उन्होंने कहा कि सामरिक साझेदारी से व्यापार सहित कई क्षेत्रों में सहयोग का दायरा और बढ़ेगा।
2: Marking the first visit by an Indian Prime Minister to New Zealand in 40 years. This visit is also a significant milestone in the New Zealand-India relationship. When I visited last year, you welcomed me and my delegation with great warmth and tremendous generosity.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और उद्योग तथा खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे। स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का प्रमुख संरक्षक है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है।
3: हमारे व्यापार का 90% से अधिक हिस्सा समुद्री मार्ग से ही होता है। हमारे विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक जोन है, हमारे आईलैंड टेरिटरीज है और यह जो रीजन है वह आज पहले से कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स और अधिक चैलेंजिंग होता जा रहा है और इस रीजन में एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स की प्रेजेंस और एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है। इसमें आप प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने वर्तमान बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए पत्तन सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया।
2: इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, सीमा प्रबंधन सचिव, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय सचिव, मत्स्य पालन विभाग के सचिव, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। BOPS का गठन मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 की धारा 13 के प्रावधानों के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में किया जा रहा है। ब्यूरो का नेतृत्व एक महानिदेशक करेंगे और यह पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अधीन काम करेगा। श्री शाह ने मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के साथ मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों और मछली उतारने के केंद्रों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज एक दिन के बिहार दौरे पर गया जी जाएंगे। इस

0: वे बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हाल के तनाव के बावजूद अमेरिका और ईरान वार्ता जारी रखने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने वार्ता जारी रखने का अनुरोध किया है और अमेरिका इस पर सहमत हो गया है। अमेरिका ने ईरान से होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमले रोकने की मांग की है। इन हमलों के कारण तनाव बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। वेनेजुएला में पिछले महीने आए दो शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या 4000 से अधिक हो गई है। वेनेजुएला संसद प्रमुख जॉर्ज रोड्रिगेज के अनुसार अब तक 4118 लोगों की मौत हो चुकी है और 16740 लोग घायल हुए हैं, वहीं हजारों लोग अब भी लापता हैं। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत लोगों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के काम में लगे आशीष अग्रवाल से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
1: प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया हमने कपड़े के बैग से, वैसे ही प्लास्टिक की बॉटल्स को रिप्लेस कर दिया मेटल की बॉटल से, टिश्यू पेपर को रिप्लेस कर दिया रुमाल वगैरह से। इन अनरीड मेल्स 2000 रहेंगे, 5000 रहेंगे, 10000 रहेंगे, 100 रहेंगे, कितना बड़ा मेल है उसमें अटैचमेंट है कि नहीं है, तो सिर्फ इनबॉक्स को अगर हम लोग क्लियर रखते हैं उससे बहुत सारे एमिशंस बच सकते हैं।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये चर्चा आज सवेरे 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड पर प्रसारित होगी। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
3: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। लॉस एंजलिस में आज क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वें मिनट में किया। इससे पहले फ्रांस ने पहले क्वार्टर फाइनल में मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 बजे शुरू होगा। वहीं चौथे क्वार्टर फाइनल में कल मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। उधर विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा का सामना लिंडा नेस्कोवा से होगा। चेक गणराज की दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सेनर का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव से होगा। सेनर ने सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को और ज़वरेव ने ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इस बीच लंदन के लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में कल के 21 रन पर 1 विकेट के स्कोर से आगे खेलेगा। कल का खेल समाप्त होने के समय माया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर थी। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 285 रन बनाए थे। स्मृति मानधाना ने 83 रन, कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने अर्धशतक बनाए।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद कनक। पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण से संबंधित खबर आज अखबारों के पहले पन्ने पर है। हिंदुस्तान ने सरकार का बयान दिया है, E20 से माइलेज थोड़ा घटेगा मगर इंजन सुरक्षित। जनसत्ता लिखता है, पेट्रोलियम मंत्रालय ने दी जानकारी, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से 5% कम हो जाएगी औसत। पत्र ने संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा हुआ कि अंततः सरकार की ओर से ये स्पष्ट किया गया कि E20 ईंधन से गाड़ियों का माइलेज भले ही कम होता हो लेकिन ये ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ पर्यावरण के लिए उपयोगी होने के साथ ही किसानों के लिए लाभकारी भी है। अल्कोहल युक्त दवाओं पर नए नियम लागू होने पर नवभारत टाइम्स ने नहीं मिलेगी छूट से लिखा है, अल्कोहल 12% से अधिक तो डॉक्टर की पर्ची से ही दवा, सरकार ने कहा हो रहा था गलत इस्तेमाल। सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान बदतमीजी करने पर याचिकाकर्ता को कक्ष से बाहर निकाले जाने की खबर दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान में है। दिल्ली में भूजल में तय सीमा से अधिक यूरेनियम, NGT सख्त, अमर उजाला की खबर है। वंदे मातरम जन गण मन को लेकर नई गाइडलाइन पर पंजाब केसरी लिखता है, सभी राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और पहले वंदे मातरम तथा उसके बाद जन गणमन गाया जाएगा। फीफा विश्व कप की खबर देते हुए जनसत्ता ने लिखा है, गोल्डन बूट की दौड़ में अब एम्बाप्पे आए मेस्सी के बराबर। अमर उजाला ने अमरनाथ यात्रा पर लिखा है,

0: मुक्ति में दखल से जल्दी अंतर्ध्यान हुए बाबा बर्फानी। दैनिक भास्कर ने अपने खास आलेख में लिखा है, अतीत आज से बेहतर ये सच नहीं, बीते कल की चाहत में आज गुम न होने दें, यादों से ऊर्जा लें, भविष्य की चुनौतियों से लड़ सकेंगे।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक तथा रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टील फ्रिगेट महेंद्र गिरी आज नौसेना में शामिल होगा। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा। आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा अपने ही देश की लिंडा नुस्कोवा से खेलेंगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Linda Noskova in women's singles final today. For details of these stories and more, log on to our website www.newsoneir.gov.in. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, अब पेशे खिदमत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के फनकार हैं मन्ना डे।

श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज के फनकार हैं मन्ना डे। आइए अब उन्हीं की आवाज में सुनते हैं मधुकर राजस्थानी की लिखी ये रचना।

श्रोताओं, कार्यक्रम सुगम संगीत में आज के फनकार थे मन्ना डे। इसी के साथ कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से। इस समय सुबह के 9 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने सुहाने। कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं श्रोताओं, फिल्म दोस्ताना से। युगल आवाज़ें हैं किशोर कुमार व आशा भोसले की। आनंद बख्शी के बोल संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में फिल्म कस्मे वादे का ये शीर्षक गीत। गुलशन बावरा के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है आरती परमन ने।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा एक छोटी सी अंतराल के बाद।
1: नमस्ते कविता, अच्छा लगा कि आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सर्विकल कैंसर की जांच के लिए आईं।
2: अरे दीदी, मेरी बेटी ने मुझे प्रोत्साहित किया।
1: आपकी बेटी तो बहुत समझदार है। बेटा, तुम कितने साल की हो?
2: मैं 14 साल की हूँ।
1: अब आपको अपनी बेटी को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगवाने लाना होगा।
2: क्या कैंसर के लिए भी टीका होता है?
1: हाँ, ये एक ऐसा कैंसर है जिससे HPV की वैक्सीन के जरिए बचाव किया जा सकता है।
2: धन्यवाद दीदी।
1: जरूर, अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल यूविन पर रजिस्टर करना मत भूलना।
3: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.uvin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: हेलो, मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं आपका दोस्त बनकर आपके शरीर में घुसकर आपको बीमार कर सकता हूँ। मुझे उनसे दोस्ती करना बहुत पसंद है जो जाने अनजाने एक से ज्यादा साथियों के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करते हैं। ये किसी भी तरह के सेक्स में कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं करते। मैं तो उन पर भी नजर बनाकर रखता हूँ जो अपने रेगुलर पार्टनर के साथ भी कॉन्डम नहीं लगाते, और जो नशे की हालत में दोस्तों के साथ एक ही सुई व सिरिंज का इस्तेमाल कर लेते हैं। इन छोटी छोटी लापरवाहियों से मुझे उनके पास आने का मौका मिल जाता है। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया क्या?
0: आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने सुहाने, और अब कार्यक्रम का अगला गाना लीजिए सुनिए फिल्म अब्दुल्लाह से, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने, संगीत से संवारा आर.जी. बर्मन ने, आवाज है मोहम्मद रफी की।

आइए श्रोताओं, अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं लता मंगेशकर व किशोर कुमार के युगल स्वरों में फिल्म आंधी का गीत, जिसे लिखा गुलजार ने, संगीत से सजाया राहुल देव बर्मन ने।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना?

0: श्रोताओं, इसी के साथ ही आज के तराने सुहाने कार्यक्रम का समय अब यहीं पर समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं। अगला कार्यक्रम एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से।
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोताओं, प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम, जिसके तहत आज हम आपको सुनवा रहे हैं एस गोविंद राजन का कर्नाटक शैली में गायन। इनके साथ वायलिन पर शकील आर भास्करन, मृदंगम पर वी रामाभद्रन और घटम पर KM विद्यानाथन ने संगति की है। तो आइए सुनते हैं पहले एस गोविंद राजन का गाया राग जया मनोहारी, जो आधी ताल में निबद्ध है।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से। श्रोताओं, इस समय सुबह के 10 बजे हैं। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कशिश। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है श्रोताओं ऑल इज वेल फिल्म से। आवाज़ है अंकित तिवारी की, मयूरपुरी के बोल संगीत है हेमेश रेशमिया का।

श्रोताओं, अभिषेक नेलवाल व साथियों की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे बांके की क्रेजी बारात फिल्म का ये गीत। आइए अब सुनते हैं वेलकम बैक फिल्म का ये गीत।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद, बने रहिएगा हमारे साथ।
1: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Own it for rupees 10.99 lakh with a battery EMI of just rupees 3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric.
0: आइए श्रोताओं, अब कार्यक्रम कशिश को जारी रखते हुए आपको सुनवा रहे हैं फिल्म भाग जॉनी का ये गीत, जिसे गाया है सुनील कामत ने। अमिताभ वर्मा के बोल संगीत है मिथुन का।

मीट ब्रोस अनजान व खुशबू गिरवाल के युगल स्वरों में आइए अब सुनते हैं फिल्म कैलेंडर गर्ल्स का ये गीत। कुमार के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है मीट ब्रोस अनजान ने।

प्रेम रतन धन पायो। आइए श्रोताओं, सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत जिसे गाया है शान व साथियों ने। इरशाद कामिल के बोल, संगीत है हेमेश रेशमिया का।

मोहित चौहान का गाया हुआ इरशाद कामिल का लिखा तथा ए आर रहमान के धुनों से सजा, आइए श्रोताओं सुनते हैं फिल्म तमाशा का ये गीत।

श्रोताओं, अल्ताफ सईद की आवाज़ में अब आपको सुनवा रहे हैं इश्क ने क्रेजी किया रे, इस फिल्म का ये गीत।

अरिजीत सिंह की आवाज़ में अभी आपने सनम रे फिल्म का ये गीत सुना। इसी के साथ ही अब फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कशिश अब यहीं समाप्त होता है।

श्रोताओं, अब से कुछ ही देर बाद यानी दिन के 11 बजे आप सुनेंगे फिल्म गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

ये आकाशवाणी काशी विजयपुरम केंद्र है। इस समय दिन के 11 बजे हैं। अब पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं आशा भोसले और उदित नारायण की आवाजों में फिल्म खिलाड़ी के इस गाने के साथ।

बब्बी लहरी के संगीत निर्देशन में तैयार अभी आप इंदिवर की रचना सुन रहे थे। आंखें फिल्म का ये गीत था और इस गाने को गाया था कुमार सानू और साधना सरगम ने। और अब कार्यक्रम के का अगला गीत मिलन फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं गायक अभिजीत।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत अतीत। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं आशा भोसले के गाए इस फिल्म के गाने के साथ, कोरा आंचल। फिल्म का ये गीत है, शहदाब का गीत, रोशनलाल खत्री का संगीत है।

0: मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने पालकी फिल्म का ये गीत सुना। शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था। और अब अगला गीत आक्रमण फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ में।
1: छोटी उम्र में लंबे सफर में यूं हम सफर से

तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या, तुझे देखा।

मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में अभी आपने छोटी सी मुलाकात फिल्म का ये गीत सुना। हसरत जयपुरी की बोल थी, शंकर जयकिशन का संगीत था। और अब अगला गीत भाई भाई, इस फिल्म से गीता रॉय की आवाज़ों में।

सुमन कल्याणपुर और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में आइए सुनते हैं बीन का जादू फिल्म का ये गीत और ये है कार्यक्रम का अंतिम नगमा। एस एन त्रिपाठी के बोल हैं, बी डी मिश्रा का संगीत है।

0: अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 മീറ്റർ അഥവാ 684 കിലോഹെർട്സിൽ ഇത് ആകാശവാണി ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 1 बजने को हैं। अब समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया कीजिए बस थोड़ा सा इंतज़ार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने ऑकलैंड में बताया कि आगामी चार वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है।
1: दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय ये दर्शाता है कि हम अपने रिश्तों के सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत कर रहे हैं, विशेष रूप से रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर।
0: इससे पहले दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
2: लोकतांत्रिक मूल्यों में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
0: प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में भी श्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उन्होंने उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को मजबूत करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि INS महेंद्रगिरी में 75% से अधिक स्वदेशी घटकों का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि ये युद्ध

0: पुत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है और इससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी।
1: INS महेंद्रगिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टारपीडो लॉन्चर है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें INS महेंद्रगिरी को महेंद्रगिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। श्री शाह ने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जयप्रकाश नारायण ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सिक्किम एक बार फिर देश का सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरा है। प्रति व्यक्ति आय के नवीनतम विश्लेषण के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 6,46,000 रुपए से अधिक रही। ये राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। इससे पहले कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अंतिम क्वार्टर फाइनल में कल सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इससे पहले स्पेन और फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में 5 दिन भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi arrives at Spark Arena in Auckland to address the Indian community. Around 10,000 people have already gathered at the venue. Members of the Indian diaspora from across New Zealand have come together for this special event. Prime Minister Modi and his New Zealand counterpart, Christopher Luxon, have decided to elevate the bilateral relationship to a strategic partnership. Secretary East Rudhrendra Tandon shared this in Auckland while addressing the special briefing on the Prime Minister's visit to New Zealand. He added that the Prime Minister endorsed the India-New Zealand Strategic Partnership Roadmap to 2030 as a framework to guide joint action over the next 4 years. He added that this decision aims to take bilateral relations to a new level, strengthen existing cooperation mechanisms, and explore new avenues for deepening cooperation both bilaterally and multilaterally. Defence Minister Rajnath Singh has said that India is building a strong, self-reliant and future-ready defence force by strengthening both conventional defence capabilities and advanced technologies. Mr. Rajnath Singh was addressing the commissioning ceremony of the INS Mahendragiri, the 6th Project 17A Indigenous Stealth Frigate, into the Eastern Fleet at Vishakhapatnam today.
3: It has a long-range surface-to-air missile combination with a multifunction radar that can detect and destroy any threat coming from the sky from a distance. And it has an indigenous rocket launcher, torpedo launchers, an integrated anti-submarine defense system, an electronic warfare suit, and a close-in weapon system too. These all things make INS Mahendragiri as invincible and strong as the Mahendragiri mountain.
1: Mahendragiri parvat ke saman hi abhed aur majboot banati hai.
2: Union Home Minister Amit Shah has appealed to the younger generation to connect with libraries, highlighting their significant role in shaping an individual's personality. Inaugurating the Jayaprakash Narayan Public Library in New Delhi today, Mr. Shah said that Lok Nayak Jayaprakash Narayan was a great freedom fighter, thinker and national leader who made remarkable contributions to the country. Highlighting the role of libraries in nation building, the Home Minister said they are a powerful medium for spreading country's culture and knowledge among the masses along with modern education. Union Road Transport Minister Nitin Gadkari chaired the third BRICS Transport Minister.

मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

सुगम संगीत के कार्यक्रम के तहत आज की फनकारा थी नूरजहां। अभी आपने इनकी गाई चंद गजलें सुनी। इसी के साथ ही कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 1:30 हुए हैं। अब श्रोताओं, आपकी खिदमत में पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम।

कार्यक्रम में हम सुनवाते हैं आपके द्वारा भेजे गए फरमाइशी फिल्मी गीत। हमें आपकी फरमाइशी गाने इस नंबर पर मैसेज कीजिए। नंबर है 9474234000 9474234000 पर, और सुनते रहें अपने मनपसंद गाने। श्रोताओं, जब भी हमें अपने गानों की फरमाइश भेजें तो उसमें फिल्म का नाम, गाने की बोल और अपने नाम के साथ, पते के साथ हमें भेजें। नंबर 9474234000 पर। नंबर एक बार पुनः बता दूं, 9474234000 पर। और अब श्रोताओं, पहली फरमाइश हमें आई है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गुडानी, अर्चना ताई गुडानी, हिमरामन शिंदे जी और प्रणय सिंधी प्रतिभा गुडानी जी का, जो सुनना चाहती हैं क्रिमिनल फिल्म का गीत कुमार सानू की आवाज़ में। इस गाने को लिखा इंदिवर ने, MM करीम का संगीत है। आइए इन श्रोताओं की पसंद पर आप सभी को सुनवा रहे हैं ये गीत।

मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता सुनना चाहते हैं विरासत फिल्म का गीत, जिसे गाया कुमार सानू और जसबिंदर नरूला ने। जावेद अख्तर के बोल हैं, अनु मलिक का संगीत है।

अगला गीत आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में, बेटा बेटी फिल्म के इस गीत में। शैलेंद्र के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत है और फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं समायरा आज़िम गुड़िया तेलंगाना भोंगीर से।

जय किशन का संगीत है। और इस फिल्म का ये गीत सुनना चाहते हैं दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहमद, बेबी चाहत और सादिया।

और अब कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं पारस मनी फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ों में। फारूक कैसर के बोल हैं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत है और इस गाने की फरमाइश हमें आई है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से PS नहावकर का, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर और मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान ताइडे और आशीष मुहेरकर।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के गाए फिल्म पारस मनी के इस गाने के साथ ही आपके नाम फिल्मी पैगाम ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 2 बजने को हैं। अब समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया कीजिए बस थोड़ा सा इंतज़ार।

0: With a 3-0 lead, while India will be aiming to register a consolation victory before the teams move on to the ODI series. In the FIFA World Cup, Norway will take on England, while defending champions Argentina face Switzerland tonight in the quarterfinals to determine the remaining semi-finalists. Spain and France have already booked their places in the last four. Spain secured a thrilling 2-1 victory over Belgium to advance, while France progressed with a comfortable 2-0 win over Morocco. The winners of tonight's quarterfinals will complete the semi-final lineup of the FIFA World Cup 2026. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and New Zealand elevates ties to strategic partnership set to double bilateral trade to 35,000 crore rupees by 2030. Prime Minister Narendra Modi says Indian community across New Zealand is a vital part of the shared journey among two nations, addresses Indian diaspora in Auckland. Defence Minister Rajnath Singh commissions indigenous stealth frigate INS Mahendragiri, says India building a strong, self-reliant and future-ready defence force. BRICS Ministerial Declaration 2026 adopted to strengthen technological and innovation-driven cooperation in transport sector. Typhoon Bavi forces flight cancellations and school closures in Japan and Taiwan. India to face England in fifth and final T20 international in Southampton, England this evening. And in FIFA World Cup, Norway to take on England in Argentina to face Switzerland in quarterfinals tonight. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया, कहा न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्रगिरि का जलावतरण किया, कहा भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 को अपनाया गया। बावी तूफान के कारण जापान और ताइवान में उड़ानें रद्द और स्कूल बंद। भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में खेला जाएगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। ऑकलैंड में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि आगामी चार वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है।
2: दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय ये दर्शाता है कि हम अपने रिश्तों के सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत कर रहे हैं, विशेष रूप से रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर।
1: इससे पहले दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े पांच महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा।
3: आज हमने इंडो पैसिफिक में मैरिटाइम कोऑपरेशन के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमति बनाई है। बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज, लॉजिस्टिक सपोर्ट और हाइड्रोग्राफी में सहयोग।

0: से हमारा आपसी तालमेल बढ़ेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने के लिए भी सहमत हुए हैं।
0: वैश्विक मंच पर भी भारत और न्यूजीलैंड भरोसेमंद साझेदार और करीबी मित्र है। हमारा मानना है कि वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए यूएन सहित अन्य वैश्विक संस्थानों में रिफॉर्म आवश्यक है। आतंकवाद के विषय पर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाने के लिए आज हमने ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का गठन किया है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश खेल संबंधों की 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
0: 100 साल पहले मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में हॉकी टीम ने यहां आकर जो इतिहास रचा था वह हमारी खेल साझेदारी को आज भी प्रेरित कर रहा है। इस उपलक्ष्य पर हम दोनों देशों में कई स्पोर्ट्स इवेंट्स आयोजित कर रहे हैं। क्रिकेट के साथ साथ अन्य खेलों में भी सहयोग बढ़ाने के लिए हमने स्पोर्ट्स ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाया।

0: बच्चन के नेतृत्व में हॉकी टीम ने यहां आकर जो इतिहास रचा था वह हमारी खेल साझेदारी को आज भी प्रेरित कर रहा है। इस उपलक्ष्य पर हम दोनों देशों में कई स्पोर्ट्स इवेंट्स आयोजित कर रहे हैं। क्रिकेट के साथ साथ अन्य खेलों में भी सहयोग बढ़ाने के लिए हमने स्पोर्ट्स ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों का महत्वपूर्ण आधार है। ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के संबंध साझा विरासत, स्थायी मित्रता, समान लोकतांत्रिक मूल्यों और उज्ज्वल भविष्य के साझा संकल्प पर आधारित हैं।
0: हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है और अब भी सीख रहे हैं। न्यूजीलैंड दुनिया का वो देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया था। भारत भी आज विमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र के साथ महिलाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि ऑकलैंड से वेलिंगटन और क्राइस्ट चर्च से क्वींसटाउन तक भारतीय समुदाय ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
0: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम है। यहाँ रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
1: इस अवसर पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते से न्यूजीलैंड के निर्यातकों को भारत के विशाल बाजार तक पहुंच मिलेगी और न्यूजीलैंड में भारतीय कारोबार के लिए नए अवसर खुलेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17 एकाई युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को सुदृढ़ करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। श्री सिंह ने कहा कि INS महेंद्र गिरी में 75% से अधिक स्वदेशी घटकों का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है। इससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी।
2: INS महेंद्र गिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टारपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें INS महेंद्र गिरी को महेंद्र गिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 अपनाई गई है। बैठक में ब्राजील, चीन, मिश्र, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात के परिवहन मंत्रियों ने अपने विचार साझा किए। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत दो दिन की ये बैठक आज से नागपुर में शुरू हुई। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

0: श्री शाह ने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जयप्रकाश नारायण ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
1: किशोरों ने और युवाओं ने अपने रुचि के विषय छान लेने चाहिए और सुने सुनाए ज्ञान की बगैर हमारे रुचि के विषय में जिन्होंने पूरा जीवन खपा दिया है, जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया है, ऐसे लोगों ने जो अपने अनुभव, अपने विचार, अपना चिंतन और चिंतन की व्यवहारिता जो पुस्तकों में अंकित की है उसको पढ़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा मौका है दिल्ली के युवाओं के लिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट 32,000 पुस्तक और 1 करोड़ ई बुक का एक्सेस है।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हैदराबाद को प्रमुख हाई स्पीड रेल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोर हैदराबाद को पुणे, चेन्नई और बेंगलुरु से जोड़ेगा। हैदराबाद में श्री वैष्णव ने कहा कि हाई स्पीड रेल नेटवर्क से यात्रा में लगने वाले समय में कमी आएगी और दक्षिण भारत में रेल संपर्क मजबूत होगा। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। विश्व जनसंख्या दिवस पर उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व है। उन्होंने कहा कि अभियान का नारा जब बच्चों में हो सही अंतराल, परिवार बने स्वस्थ और खुशहाल, गुणवत्तापूर्ण परिवार नियोजन सेवाओं तथा जागरूक प्रजनन संबंधी निर्णयों के महत्व को दर्शाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जापान के दक्षिणी द्वीपों में आज तूफान बावी के टकराने की खबर है। इस दौरान द्वीपों में तेज हवाएं चली और मूसलाधार बारिश हुई। लगभग 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ तूफान बावी के कल तड़के चीन के झेजियांग प्रांत में टकराने का अनुमान है। इस तूफान के कारण जापान के ओकिनावा प्रांत में 200 से अधिक उड़ानें रद्द की गई। ताइवान में स्कूल और सरकारी कार्यालय भी बंद रहे। इस बीच चीन ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉ. नरेश ने बताया कि अल नीनो के कारण देश में मॉनसून की बारिश सामान्य से कम हुई है।
2: आज के लिए हमारा असम मेघालय के लिए रेड अलर्ट भी है, वहाँ हम 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं। ईस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, सिक्किम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो रेनफॉल एक्टिविटी है आने वाले 4 से 5 दिन कंटिन्यू रहेगी और नॉर्थ पंजाब, नॉर्थ हरियाणा में आज हैवी रेनफॉल हो सकती है। अगर आप NCR दिल्ली की बात करें, बाय इवनिंग और लेट इवनिंग हल्का फुल्का रेनफॉल हो सकता है।
0: सिक्किम एक बार फिर देश का सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरा है। प्रति व्यक्ति आय के नवीनतम विश्लेषण के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 6,46,000 रुपए से अधिक रही। ये राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना है। देश की कुल आबादी में सिक्किम की हिस्सेदारी केवल 0.05% है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: सिक्किम एक बार फिर भारत का सबसे समृद्ध राज्य प्रति व्यक्ति आय के आधार पर घोषित हुआ है। बिजनेस स्टैंडर्ड की कल प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सिक्किम के एक औसत निवासी की आय बिहार के एक औसत निवासी की तुलना में लगभग 10 गुना ज्यादा है। पिछले 10 वर्षों से शीर्ष 4 स्थानों पर सिक्किम, गोवा, दिल्ली और चंडीगढ़, जबकि सबसे निचले स्थानों पर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर लगातार बने हुए है। मानुषोत्तम शर्मा के साथ मोइनाक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम 7 बजे साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। माइया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इससे पहले कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 83, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 58 और दीप्ति शर्मा ने 57 रन बनाए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अंतिम क्वार्टर फाइनल में कल सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने

होंगे। इससे पहले स्पेन और फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया। कहा, न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का जलावतरण किया। कहा, भारत एक मजबूत आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र 2026 को अपनाया गया। और भारत तथा इंग्लैंड के बीच पांचवा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है और अब चलते चलते आपको बता दें मौसम का हाल। मौसम कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार द्वीपों के एक आध स्थानों में वर्षा हुई। कल सवेरे तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि द्वीपों के अधिकतर क्षेत्रों में वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है कि समुद्र में हवाओं की गति लगभग 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चलेंगी। ऐसे में समुद्र अशांत रहेगा। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे समुद्र में न जाएं। ये था मौसम का हाल। श्रोताओं, अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम के 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 MHz FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

हम बोल रहे हैं विविध भारती FM श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज पर। और अब श्रोताओं प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम नॉन स्टॉप म्यूजिक।

0: भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
3: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
2: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
3: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
2: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

100.9 मेगाहर्ट्ज पर यह है विविध भारती FM श्री विजयपुरम। दोपहर के 3:30 हुए हैं। अब पेश है

और अब अगला गीत अलका याग्निक और अभिजीत की आवाजों में सुनिए, आप मुझे अच्छे लगने लगे इस फिल्म से। इब्राहिम अश्क के बोल हैं, राजेश रोशन का संगीत है।

मिश्रित स्वरों में अभी आप अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों फिल्म का ये गीत सुन रहे थे और अब अगला गाना बधाई हो बधाई फिल्म से आवाज़ें के अलका याग्निक और साथियों की। जावेद अख्तर के बोल हैं, अनु मलिक का संगीत है।

और अब कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं खाके फिल्म का ये गाना, अर्णव चक्रवर्ती और श्रेया घोषाल की आवाजें। समीर किबोल राम संपत का संगीत है और ये है हमारे इस प्रोग्राम का आखिरी नगमा।

खाकी फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सैनिकों के लिए अब यहीं समाप्त होता है। हंड्रेड पॉइंट नाइन मेगा हर्ट्स पर यह है विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम। दोस्तों, हमारे स्थानीय सभा के साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। शाम के 4 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में हम जुड़ेंगे विविध भारती मुंबई के साथ। नमस्कार।

0: लिखा ये नाटक रहीम की ढानी। इसका निर्देशन किया महेंद्र मोदी ने और
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4 बजे हैं। हमारी आज की इस दूसरी सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आइए सभा की शुरुआत करते हैं निकोबारी कार्यक्रम से।
2: सिन्ला मिनी रॉक रहमांग इंगरे तका लमक तेलंगी मीडियम वेव 438.6 मीटर हेक 684 किलोहर्ट्स रामांग एलंगी आकाशवाणी श्री विजयपुरम अन्नी निकोबारी प्रोग्राम तहांग।

एक दूसरे के पर्याय जैसे प्रयोग किया जाता है। दैट मीन्स दे आर इंटरचेंजेबली यूज्ड। ध्यान रहे कि इनमें से किस शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किस संदर्भ में व अर्थ में किया जा रहा है, उसे समझना आवश्यक है। यहाँ एकांत का मतलब अकेला पड़ जाना या बिन सार्थकता से अकेले जीना मत समझ लेना। अकेलापन की अपेक्षा एकांत काफी अच्छा होता है। सुसंगति, सत्संग, सार्थक संगति है, एकांत से बढ़कर होती है। सबसे पहले एकांत और अकेलेपन में अंतर समझते हैं। टाइम पास, बोरिंग, फुर्सत, अशांति जैसे शब्द आएंगे और शांति, सुकून जैसे शब्द। टीवी, गेम, स्पोर्ट्स, अखबार, मैगजीन पढ़ना, सोना, मनोरंजन, फन, एंटरटेनमेंट चाहते होना तथा समय का नाश अथवा दुरुपयोग कुछ सार्थक करने की अभिलाषा, जैसे कि आत्म परिष्कार, मंत्र लेखन, धार्मिक, आध्यात्मिक, साहित्य पठन, पौधारोपण इत्यादि। कई सकारात्मक चाहे होना तथा ध्यान साधन व अन्य सार्थकता में सामान का सदुपयोग। अतीत की स्मृतियां व भविष्य की अनिश्चितता के ख्याल, इसलिए तन से अकेले होकर भी मन में इधर उधर की बातें भरी, मन को ईश्वर से मिलन की ओर लगाया जाता है। मन में कोई व्यर्थ काम नहीं है, खाली दिमाग शैतान का घर है। व्यर्थ के गतिरोधी से दूरी। दृष्टिकोण अथवा रूखे में विभिन्न के कारण कई बार ऐसा देखने में आता है कि सकारात्मक दब जाती है अथवा रचनात्मकता का परिष्कार संभव नहीं हो पाता है तथा परस्पर प्रतिकार एवं घोषित या अघोषित द्वंद्व में मानसिक ऊर्जा खपती है, जबकि एकांत में यह ऊर्जा संरक्षित रहती है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। ध्यान भटकने वाले कारकों से दूरी। मोबाइल व संगी साथियों से दूरी होना अपने आप में एक अच्छा अवसर का सृजन हो सकता है। एकांत में साधना, उपासना की ओर चिंता को प्रवृत्ति करना उपेक्षाकृत कम कठिन रह जाता है, क्योंकि कोई सामान्य संवाद करने वाला पास नहीं होता, कोई विरोध करना अथवा ठोकने वाला नहीं होता, थोड़ी थोड़ी देर में कोई ध्यान खींचने वाला नहीं होता। इसके अतिरिक्त परिचितों की अनुपस्थिति से इस बात की संभावना भी बढ़ जाती है कि उससे चर्चा के दौरान आने वाले नश्वर विषयों में हमारा जो ध्यान उलझता रहता है वो अब बच जाएगा। मानसिक दृढ़ता की दृष्टि से भी एकांत बड़ा अनमोल है। धर्म व सत्य के मार्ग में प्रायः सर्वप्रथम अपने ही अवरोध बनते हैं, अच्छे लक्ष्यों की ओर बढ़ने से रोकते हैं, सार्थक दिशा में चलने से पांव पीछे खींचने को विवश करते हैं तथा पवित्र परम उद्देश्य से दूर रखने के यथासंभव प्रयास करते हैं एवं अपने अपने तर्कों से हमारा मन उनके पक्ष में ले लेने को आतुर रहते हैं। इस प्रकार शक्ति को बांटने से रोकना एवं इसे लगातार बढ़ाने में एकांत सहायक है। शाश्वत लक्ष्य निर्धारित करने, सतपथ पर अग्रसर होने में सहायता हो जाती है यदि एकांत हो तो। इस प्रकार कोई ऐसी बाहरी कारक एक्टिव नहीं रह जाता है जो हमें रोके या दबा रखे। परिस्थिति जनित थपेड़ों से भी काफी सीमा तक बचाव हो जाता है। आपने देखा पढ़ा भी होगा कि जितना भी सच्चे साधु संत रहे हैं वो नितांत एकांत प्रेमी रहे हैं, प्रसिद्धि व नगरों से दूर रहा करते थे। यहाँ तक कि कई बार तो अपने निजी अथवा अन्य जटिल कार्यों के लिए अपने शिष्यों तक की सेवाएं प्राप्त करने से मना कर दिया करते थे। उनका आभा मंडल विशाल होता था। आभा मंडल का विशालता भी एकांत के समानुपात में हुआ करती थी। भीड़ में रहने वाले व्यक्ति की मानसिक व आध्यात्मिक ऊर्जाएं क्षीण होती रहती है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। लगातार बढ़ते कंपटीशन के दौर में

0: समय के साथ चलना मुश्किल तो है, लेकिन बेहद ज़रूरी भी, क्योंकि काफ़ी हद तक हमारा सफलता और असफलता इसी पर टिकी होती है। टाइम को सही तरह से मैनेज न करने वाले के साथ ऐसा दिक्कतें आती है। तो निर्धारित समय में कैसा क्वालिटी वर्क किया जाए और अपने लिए कैसा समय बचाए। किसी भी काम की शुरुआत प्रॉपर प्लानिंग के साथ करें। ऑफिस हो या घर पर, ज़रूरी कामों के लिस्ट बनाएं। काम को 3-4 शिफ्ट्स में करें। जैसे जैसे काम पूरा होता जाए, लिस्ट से उसे क्रॉस करते जाए, जिससे पता रहे कि कितना काम हो चुका है और कितना बाकी है। दोस्तों, अपने लिए क्वालिटी समय बचाएं। इसमें आप मेडिटेशन कर सकते हैं, खुद से समय बिता सकते हैं। सत्संग एकांत से भी श्रेष्ठ। एकांत तभी फलदायी होगा यदि व्यक्ति का आत्मज्ञान पर्याप्त हो। सभी को सच्चे मार्गदर्शक, सच्चे सहायक की आवश्यकता, आजीवन वे सदैव बनी रहती है। सत्संग का मतलब पंडाल लगाकर अंधविश्वास फैलाने वाले लोगों के पास जाना न समझे। लाइक माइंडेड पीपल के साथ बिताना, या जो आपको एंकरेज करे, ऐसे लोगों के साथ रहना। चाहे जितने भी लोग हो दोस्तों, अपने लिए कुछ समय निकाले और अपने बारे में जाने। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज लम्हे प्रोग्राम। आई विल गेट बैक टू यू इन अ नेक्स्ट सेगमेंट। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।
1: अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 9वीं कड़ी सुन रहे थे।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 4:40 हुए हैं। आप सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष और कल के कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम। अब से थोड़ी ही देर में यानी 4:45 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। शाम 5 बजे होगा तमिल में विश्व जनसंख्या दिवस पर चर्चा और अन्य कार्यक्रम। 5:30 पर बंगला में होगा युगल गीत और विश्व जनसंख्या दिवस पर चर्चा। आप सुन पाएंगे किसानवाणी कार्यक्रम में श्रीमती स्मृति मिश्रा की वार्ता विश्व जनसंख्या दिवस। संध्या 6:30 पर सुनेगा बुजुर्ग नागरिकों के लिए कार्यक्रम में डॉक्टर चंदा श्रीवास्तव के साथ ली गई भेंट वार्ता बीती यादें मेरे जीवन की सुनहरी यादें। अटक गई लेखक सुदेश प्रकाश शुक्ला की लिखी इस झलकी का आनंद लीजिएगा 6:45 पर। मौसम की जानकारी जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं आप सुन पाएंगे 7:15 पर। 7:20 पर सुनेगा कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

युवाणी के तहत आप आनंद ले पाएंगे। 7:30 पर विश्व जनसंख्या दिवस पर चर्चा और कार्यक्रम ऐसा भी होता है। रात्रि 8 बजे कार्यक्रम चित्रपट संगीत और 8:30 पर सुना जा सकता है रोजगार समाचार के बाद गौरव गान। इन कार्यक्रमों के अलावा रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे न्यूज एट 9, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम संस्कृति भारती और रात्रि 10 बजे होगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम के तहत डॉक्टर आर माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अब एक नज़र कल यानी रविवार के कार्यक्रमों पर। कल प्रातः 5:25 पर हमारी प्रातःकालीन सभा की शुरुआत होगी। 5:30 पर अनमोल विचार के बाद आप सुन पाएंगे भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। अग्री टिप्स में 5:55 पर जानकारी का विषय रहेगा ग्लेरीसीडिया से कंपोस्ट। 6:10 पर जलियानों का यात्रा कार्यक्रम से हम आपको अवगत कराएंगे। चूड़ी शीर्षक पर केंद्रित होगा कल का हमारा इंद्रधनुष कार्यक्रम, जिसे हम प्रसारित करेंगे 6:15 पर। 6:30 पर रामचरित मानस गान और 6:40 पर होगा कार्यक्रम वतन के गीत। हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम का विवरण आप सुनेंगे 6:50 पर। 7:15 पर देशभक्ति फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम देश रागिनी आप सुन पाएंगे, जबकि इसी समय FM 100.9 MHz पर हम प्रसारित करेंगे विविध भारती मुंबई की भेंट के तहत प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। 7:30 पर प्राइमरी चैनल और FM 100.9 MHz पर होगा गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम। सुगम संगीत के तहत 8:30 पर कलाकार होंगे CH आत्मा। बच्चों के लिए बाल जगत कार्यक्रम हम प्रसारित करेंगे 9:00, जिसके तहत विश्व युवा दिवस पर जानकारी और के कामराज की जयंती पर चर्चा के अलावा होगी लघु कथा आशा की दुनिया। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के तहत कल सुनवाया जाएगा वसीफुद्दीन डागर का गायन। 10:00 प्राइमरी चैनल और FM 100.9 MHz पर आनंद लीजिएगा लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश का। दिन के 11:00 प्राइमरी चैनल के साथ साथ FM 100.9 MHz पर हम प्रसारित करेंगे स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम जनता जंक्शन। 11:30 पर अनूप जलोटा की गायी चंद गजलें आप सुन पाएंगे। तेलुगु कार्यक्रम का समय रहेगा 12:00, जिसमें सुना जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस पर चर्चा और हिट्स ऑफ ओल्ड मेलोडीज। मलयालम कार्यक्रम में 12:30 पर सुनेगा फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम श्रुति मधुरम। 1:10 पर सुगम संगीत के तहत फनकारा होंगी प्रणति देवी और 1:30 पर प्राइमरी चैनल और FM 100.9 MHz पर महिलाओं के लिए होगा घर संसार कार्यक्रम, जिसमें विश्व युवा कौशल दिवस और जगन्नाथ रथ यात्रा पर चर्चा के अलावा आप सुन पाएंगे एडवोकेट राकेश पाल गोविंद के साथ की गई भेंटवार्ता महिलाओं के अधिकार। 2:30 पर मौसम की जानकारी के बाद प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होगी, जबकि FM 100.9 MHz पर हमारी स्थानीय सभा जारी रहेगी, जिसमें पहले आप सुनेंगे कार्यक्रम गीत लहरी, 3:00 एल्बम टाइम और 3:30 पर यूं ही गाते रहो। हमारी आपसे पुनः मुलाकात होगी प्राइमरी चैनल पर 4:00 निकोबारी कार्यक्रम के साथ, जिसमें होंगी सूचनाएँ और सेंट ल्यूक कपाना गांव के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत भक्ति गीत। 4:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे, 4:40 पर कार्यक्रम विवरण और 4:45 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम बहारों की शाम। तमिल कार्यक्रम प्रसारित की जाएगी 5:00, जिसके तहत सुना जा सकता है पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम नंजम मरप्पतिल्लई। 5:30 पर होगा बंगला कार्यक्रम। संध्या 6:00 सुना जा सकता है महिलाओं के लिए व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित कार्यक्रम संगीत संगिनी। धरती के गीत कार्यक्रम के तहत छोटा नागपुरी लोकगीत का आनंद लीजिएगा 6:30 पर और 6:45 पर सुनेगा देशगान। मौसम की जानकारी जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं दी जाएगी 7:15 पर। दिल ने फिर याद किया इस कार्यक्रम का आप आनंद ले पाएंगे 7:20 पर। युवाणी के तहत 7:30 पर होगा लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो म्यूजिक लवर्स। चित्रपट संगीत कार्यक्रम का समय रहेगा रात्रि 8:00। 8:30 पर होंगे रोजगार समाचार और गौरव गान। इन कार्यक्रमों के अलावा रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, 9:00 न्यूज एट 9, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर अंग्रेजी रूपकों का अखिल भारतीय

ये कार्यक्रम और रात्रि 10 बजे होगा रविवार सरी अखिल भारतीय संगीत सभा में कुमार मधुर स्वर, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, जबकि इसी समय रात्रि 10 बजे FM 100.9 MHz पर हम प्रसारित करेंगे विविध भारती मुंबई से प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष और कल के कार्यक्रमों का विवरण। ये आकाशवाणी श्री विजयपुरम है। समय हुआ है 4:45। सुनते हैं कार्यक्रम बहारों की शाम। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इरशाद कामिल के बोलों से। फिल्म है सोचा ना था। गायक कलाकार हैं संदेश संदलिया और साधना सरगम।

आप सुनने जा रहे हैं फिल्म वादा का गीत। समीर के लिखे इन बोलों को आवाजें दी हैं कुमार सानू, अलका याग्निक और उदित नारायण ने।

कुमार सानू और सुनिधि चौहान के गाए फिल्म शब्द के इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। आइए अब आनंद लेते हैं तमिल कार्यक्रम का।

अभी आपने आनंद लिया तमिल कार्यक्रम का। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। समय हुआ है शाम के 5:30 और अब आइए सुनते हैं बंगला कार्यक्रम।

0: अभी आपने सुना बंगला कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के ठीक 6 बजे हैं। आइए सुनते हैं किसान वाणी कार्यक्रम।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।

नमस्कार। किसान वाणी के आज के इस अंक में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन। किसान साथियों, हमेशा की तरह हम आज के इस अंक की शुरुआत आज के खूबसूरत विचार से कर रहे हैं। हमारा आज का विचार है, बदला लेने की नहीं बदलाव लाने की सोच रखिए। समझदार व्यक्ति वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, समझदार व्यक्ति वो है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले। साथियों, बेहद खूबसूरत विचार है ये विचार, हमें बहुत

अच्छा संदेश देता है कि हमें हमेशा अपनी जिंदगी में सोच समझकर ही आगे बढ़ना चाहिए और किसी से बदला लेने की नहीं बल्कि अपने अंदर बदलाव लाने के विचार से चलना चाहिए। साथियों, इसी खूबसूरत विचार को लिए हम आगे बढ़ते हैं और आपसे पूछ लेते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, ज्वाइन क्यू किसकी किस्म है ये आपको बताना है। साथियों, तीन विकल्प, पपीता, अनानास या फिर अमरूद। किसान भाइयों, प्रश्न एक बार फिर सुने, ज्वाइन क्यू किसकी किस्म है ये आपको बताना है। तीन विकल्प, पपीता, अनानास या फिर अमरूद। किसान भाइयों, प्रश्न के उत्तर सोचते रहें और कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहें।

0: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
1: साथियों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज 11 जुलाई है और आज के दिन को हम विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1987 में वैश्विक जनसंख्या 5 अरब के आंकड़े तक पहुंच गई थी। बढ़ती हुई आबादी की इस गंभीर स्थिति को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 1979 में इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई। साथियों, जनसंख्या नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। तेजी से बढ़ती आबादी के कारण प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ने वाले दबाव को कम करना है। विश्व जनसंख्या दिवस पर आज हम आपको एक विशेष वार्ता सुनाने जा रहे हैं। वार्ताकार हैं स्मृति मिश्रा। आइए सुनते हैं उनसे उनकी ये वार्ता।
2: आज का युग विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा और आर्थिक विकास का युग माना जाता है। मानव ने अपनी बुद्धि और परिश्रम के बल पर असंभव प्रतीत होने वाले अनेक कार्यों को संभव बना दिया है। उसने अंतरिक्ष तक अपनी पहुंच बनाई, समुद्र की गहराइयों को मापा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे अद्भुत तकनीकों का विकास किया और जीवन को पहले की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक बना दिया। किंतु इन सभी उपलब्धियों के बीच एक ऐसा विषय है जो आज भी संपूर्ण विश्व के सामने गंभीर चिंता का कारण बना हुआ है। यह विषय है लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या। जनसंख्या किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति भी हो सकती है और सबसे बड़ी चुनौती भी। यदि जनसंख्या शिक्षित, स्वस्थ, कुशल और जागरूक हो तो वही देश के विकास का सबसे बड़ा आधार बनती है। किंतु यदि जनसंख्या अनियंत्रित गति से बढ़े और उसके अनुरूप संसाधनों का विकास न हो सके तो यही जनसंख्या गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, पर्यावरण प्रदूषण, जल संकट और सामाजिक असमानता जैसी अनेक समस्याओं को जन्म देती है। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। यह दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं है बल्कि यह हमें सोचने के लिए प्रेरित करता है कि आने वाली पीढ़ियों को हम कैसा विश्व सौंपना चाहते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस का महत्व केवल जनसंख्या की संख्या तक सीमित नहीं है। इसका वास्तविक उद्देश्य मानव जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। जब हम जनसंख्या की बात करते हैं तो केवल यह नहीं देखते कि किसी देश में कितने लोग रहते हैं बल्कि यह भी देखते हैं कि उन लोगों को पर्याप्त भोजन, स्वच्छ पेयजल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, सम्मानजनक रोजगार, सुरक्षित आवास और स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध है या नहीं। यदि इन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती तो केवल जनसंख्या का बढ़ना विकास का संकेत नहीं माना जा सकता। इसलिए विश्व जनसंख्या दिवस हमें यह संदेश देता है कि विकास का वास्तविक अर्थ केवल जनसंख्या बढ़ाना नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को सम्मानपूर्ण और सुरक्षित बनाना है। मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल में पृथ्वी पर जनसंख्या बहुत कम थी। लोग छोटे छोटे समूहों में रहते थे, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग सीमित मात्रा में करते थे और उनका जीवन प्रकृति के अधिक निकट था। समय के साथ कृषि का विकास हुआ, स्थायी बस्तियां बसने लगीं, व्यापार बढ़ा और समाज संगठित होने लगा। धीरे धीरे चिकित्सा विज्ञान में प्रगति हुई, नई दवाओं की खोज हुई, टीकाकरण प्रारंभ हुआ और संक्रामक रोगों पर नियंत्रण पाया जाने लगा। परिणाम स्वरूप मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आई और

औसत आयु बढ़ने लगी। यह मानव विकास की एक बड़ी उपलब्धि थी, किंतु इसके साथ ही जनसंख्या 8 अरब से अधिक हो चुकी है। यह संख्या केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि पृथ्वी के सीमित संसाधनों पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इतिहास पर दृष्टि डाले तो ज्ञात होता है कि कई हजार वर्षों तक विश्व की जनसंख्या बहुत धीमी गति से बढ़ी, लेकिन औद्योगिक क्रांति और चिकित्सा विज्ञान में क्रांतिकारी प्रगति के बाद जनसंख्या वृद्धि ने अभूतपूर्व गति पकड़ ली। पहले जहां लाखों लोगों की मृत्यु महामारी, अकाल और युद्धों के कारण हो जाती थी, वहीं आधुनिक चिकित्सा ने इन खतरों को काफ़ी हद तक कम कर दिया। शिशु मृत्यु दर में कमी आई, मातृ स्वास्थ्य में सुधार हुआ और लोगों की जीवन प्रत्याशा पहले से कहीं अधिक हो गई। यह मानवता के लिए अत्यंत सकारात्मक उपलब्धि थी, परंतु इसके साथ साथ यह आवश्यक था कि संसाधनों का विकास भी इसी गति से होता। दुर्भाग्यवश अनेक देशों में ऐसा नहीं हो पाया और परिणाम स्वरूप जनसंख्या तथा उपलब्ध संसाधनों के बीच असंतुलन बढ़ने लगा। विश्व जनसंख्या दिवस की शुरुआत इसी चिंता के कारण हुई। वर्ष 1987 में जब विश्व की जनसंख्या 5 अरब के आंकड़े तक पहुंची, तब संयुक्त राष्ट्र ने अनुभव किया कि यदि इस प्रकार जनसंख्या बढ़ती रही तो भविष्य में भोजन, पानी, ऊर्जा, रोजगार और पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं अत्यंत गंभीर रूप धारण कर सकती हैं। इसी सोच के साथ वर्ष 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की शुरुआत की गई। तब से प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है, ताकि विश्व के प्रत्येक नागरिक को यह समझाया जा सके कि जनसंख्या केवल सरकारों का विषय नहीं है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी भी है। यह दिवस हमें यह भी याद दिलाता है कि परिवार नियोजन, महिला शिक्षा, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, लैंगिक समानता और जन जागरूकता जैसे विषय जनसंख्या संतुलन के सीधे जुड़े हुए हैं। जब हम भारत की बात करते हैं तो यह विषय और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में अग्रणी है। यहाँ करोड़ों लोग विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों, धर्मों और परंपराओं के साथ रहते हैं। यह विविधता भारत की सबसे बड़ी विशेषता है, किंतु इतनी विशाल जनसंख्या के कारण विकास की चुनौतियां भी अत्यंत जटिल हो जाती हैं। भारत के पास विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी है। यदि यह युवा शक्ति शिक्षित, प्रशिक्षित और रोजगार से जुड़ी हो तो भारत विश्व की अग्रणी आर्थिक शक्ति बन सकता है। दूसरी ओर यदि यही युवा वर्ग शिक्षा, कौशल और रोजगार से वंचित रह जाए तो बेरोजगारी, सामाजिक असंतोष और आर्थिक विषमता जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसलिए भारत के लिए जनसंख्या केवल संख्या का विषय नहीं, बल्कि मानव संसाधन के प्रभावी विकास का विषय है। यह समझना भी आवश्यक है कि अधिक जनसंख्या अपने आप में हमेशा समस्या नहीं होती। वास्तव में किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी उनके लोग ही होते हैं। इतिहास गवाह है कि जिन देशों ने अपने नागरिकों की शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास पर निवेश किया, वे सीमित प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद विकसित राष्ट्र बन गए। दूसरी ओर जिन देशों में शिक्षा और स्वास्थ्य की उपेक्षा हुई, वहाँ प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता होने के बाद भी विकास की गति अपेक्षाकृत धीमी रही। इसलिए किसी भी राष्ट्र की वास्तविक समृद्धि उसकी जनसंख्या की गुणवत्ता पर निर्भर करती है, केवल उसकी संख्या पर नहीं। यदि प्रत्येक नागरिक शिक्षित, स्वस्थ, जागरूक और उत्पादक हो तो वही जनसंख्या राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। आज विश्व के सामने बड़ी चुनौती यह है कि बढ़ती हुई जनसंख्या और सीमित प्राकृतिक संसाधनों के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जाए। पृथ्वी पर भूमि सीमित है, जल स्रोत सीमित हैं, वन सीमित है और ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत भी सीमित हैं। दूसरी ओर प्रत्येक वर्ष करोड़ों नए लोगों की आवश्यकताएं इन संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव डालती हैं। परिणाम स्वरूप अनेक देशों में जल संकट बढ़ रहा है, खेती योग्य भूमि घट रही है, जंगलों का क्षेत्रफल कम हो रहा है, जैव विविधता प्रभावित हो रही है और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक समस्याएं गंभीर रूप ले रही हैं। यह स्थिति हमें स्पष्ट संकेत देती है कि केवल आर्थिक विकास पर्याप्त नहीं है, बल्कि ऐसा विकास आवश्यक है जो प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखते हुए आने वाली पीढ़ियों के अधिकारों की भी रक्षा कर सके। इसी संदर्भ में विश्व जनसंख्या दिवस हमें आत्ममंथन का अवसर प्रदान करता है। यह हमें बताता है कि यदि समाज शिक्षित होगा, यदि महिलाएं सशक्त होंगी, यदि प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी, यदि युवाओं को रोजगार और कौशल मिलेगा तथा यदि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाएगा तो बढ़ती जनसंख्या भी विकास का आधार बन सकती है।

सकती है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम संख्या के साथ साथ गुणवत्ता पर भी समान रूप से ध्यान दें। जब प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों को समझेगा और प्रत्येक परिवार भविष्य की योजना बनाकर निर्णय लेगा, तभी एक संतुलित, समृद्ध और सतत विकासशील समाज का निर्माण संभव होगा। विश्व जनसंख्या के निरंतर बढ़ने के पीछे अनेक कारण हैं और इन कारणों को समझे बिना इस समस्या का समाधान संभव नहीं। सामान्यतः लोग यह मान लेते हैं कि अधिक बच्चों का जन्म ही जनसंख्या वृद्धि का एकमात्र कारण है, जबकि वास्तविकता इससे कहीं अधिक व्यापक है। पिछले कुछ दशकों में चिकित्सा विज्ञान ने जिस तीव्र गति से प्रगति की है, उसने मानव जीवन को पहले की तुलना में कहीं अधिक सुरक्षित और लंबा बना दिया है। अनेक घातक बीमारियों के टीके विकसित हुए, आधुनिक उपचार पद्धतियां सामने आई, शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आई और मातृ स्वास्थ्य में सुधार हुआ। इन सभी उपलब्धियों ने मृत्यु दर को कम किया, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या लगातार बढ़ती चली गई। यह मानव सभ्यता की उपलब्धि अवश्य है, किंतु इसके साथ साथ संसाधनों के समुचित विकास और जनसंख्या संतुलन पर पर्याप्त ध्यान न दिए जाने के कारण अनेक नई चुनौतियां सामने आई। बढ़ती जनसंख्या का सबसे बड़ा प्रभाव रोजगार के क्षेत्र में दिखाई देता है। प्रत्येक वर्ष लाखों युवा शिक्षा पूरी करके रोजगार की तलाश में निकलते हैं, किंतु यदि रोजगार के अवसर उसी गति से न बढ़े तो बेरोजगारी स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। बेरोजगारी केवल आर्थिक समस्या नहीं होती, बल्कि इसका प्रभाव व्यक्ति के आत्मविश्वास, परिवार की आर्थिक स्थिति और समाज की स्थिरता पर भी पड़ता है। लंबे समय तक बेरोजगार रहने वाला युवा निराशा, तनाव और असुरक्षा का अनुभव करता है। कई बार यही परिस्थितियां सामाजिक अपराधों, नशे की प्रवृत्ति और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को भी जन्म देती है। इसलिए जनसंख्या और रोजगार के बीच संतुलन स्थापित करना किसी भी राष्ट्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव शिक्षा व्यवस्था पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जब विद्यार्थियों की संख्या तेजी से बढ़ती है और विद्यालयों, शिक्षकों तथा संसाधनों की संख्या उसी अनुपात में नहीं बढ़ती, तब शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। यदि बढ़ती जनसंख्या के कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध न हो सके, तो भविष्य की पीढ़ियां अपनी पूर्ण क्षमता का विकास नहीं कर पाएंगी। इसलिए जनसंख्या संतुलन और शिक्षा व्यवस्था का विकास एक दूसरे के पूरक हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या का प्रभाव केवल आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पर्यावरण पर भी गहरा प्रभाव डालती है। पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं, जबकि मानव की आवश्यकताएं निरंतर बढ़ रही हैं। अधिक लोगों के लिए अधिक घरों की आवश्यकता होती है, अधिक उद्योग स्थापित किए जाते हैं, अधिक सड़कें बनाई जाती हैं और अधिक ऊर्जा की खपत होती है। इन सभी गतिविधियों के कारण जंगलों की कटाई बढ़ती है, जैव विविधता प्रभावित होती है और कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि होती है। यदि वर्तमान पीढ़ी संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग नहीं करेगा, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु और सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध करना अत्यंत कठिन हो जाएगा। जल संकट भी आज विश्व की सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक बन चुका है। पृथ्वी पर उपलब्ध मीठे जल की मात्रा सीमित है, जबकि जनसंख्या बढ़ने के साथ उसकी मांग लगातार बढ़ रही है। कृषि, उद्योग और घरेलू उपयोग के लिए पानी की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक हो गई है। अनेक नदियां प्रदूषित हो रही हैं, भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है और कई क्षेत्रों में गर्मियों के दौरान पेयजल का गंभीर संकट उत्पन्न हो जाता है। यह स्थिति हमें चेतावनी देती है कि यदि जनसंख्या वृद्धि और जल संरक्षण दोनों पर समान रूप से ध्यान नहीं दिया गया, तो भविष्य में जल संघर्ष विश्व की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक बन सकता है। इन सभी परिस्थितियों के बीच यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि जनसंख्या वृद्धि को केवल आंकड़ों के रूप में नहीं देखा जा सकता। इसके पीछे मानव जीवन, सामाजिक संरचना, आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और भविष्य की पीढ़ियों का प्रश्न जुड़ा हुआ है। जब तक प्रत्येक नागरिक को इस विषय को अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी के रूप में नहीं देखेगा, तब तक केवल सरकारी योजनाओं के माध्यम से स्थायी समाधान प्राप्त करना कठिन होगा। इसलिए विश्व जनसंख्या दिवस हमें केवल समस्या नहीं दिखाता, बल्कि यह भी सिखाता है कि जागरूकता, शिक्षा, वैज्ञानिक सोच और सामाजिक सहभागिता के माध्यम से हम एक ऐसा भविष्य का निर्माण कर सकते हैं जहां जनसंख्या और विकास एक दूसरे के पूरक बने, विरोधी नहीं। इन सभी चुनौतियों के बावजूद भविष्य के प्रति निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब भी मानव समाज के सामने कोई बड़ी समस्या आई है, तब उसने ज्ञान, विज्ञान, दूरदर्शिता और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से उसका समाधान भी खोजा है। जनसंख्या वृद्धि भी ऐसी ही एक चुनौती है जिसका समाधान

0: केवल कानूनों या सरकारी योजनाओं से नहीं, बल्कि समाज की जागरूकता, शिक्षा और जिम्मेदार सोच से संभव है। वास्तव में जनसंख्या नियंत्रण का अर्थ किसी की स्वतंत्रता को सीमित करना नहीं है, बल्कि प्रत्येक बच्चे को बेहतर जीवन, बेहतर शिक्षा और बेहतर अवसर प्रदान करना है। जब परिवार अपनी आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्णय लेते हैं, तब केवल उनका ही नहीं, बल्कि पूरे समाज का भविष्य सुरक्षित होता है। विश्व जनसंख्या दिवस केवल एक तिथि नहीं, बल्कि आत्मचिंतन, जागरूकता और सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधन सीमित हैं, किंतु हमारी जिम्मेदारियां असीमित हैं। हमें ऐसा समाज बनाना है जहां विकास और प्रकृति एक दूसरे के पूरक हों, जहां विज्ञान और मानवीय संवेदनाएं साथ साथ आगे बढ़ें, जहां प्रत्येक परिवार अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने का संकल्प ले और जहां प्रत्येक नागरिक राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाए। आइए विश्व जनसंख्या दिवस के इस अवसर पर हम सभी यह संकल्प लें कि हम जनसंख्या संतुलन, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के सिद्धांतों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। हम स्वयं जागरूक बनेंगे, दूसरों को भी जागरूक करेंगे और अपने छोटे-छोटे प्रयासों से एक ऐसे भारत तथा ऐसे विश्व के निर्माण में योगदान देंगे जहां प्रत्येक व्यक्ति सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। यही इस दिवस का उद्देश्य है, यही मानवता का मार्ग है और यही एक उज्जवल भविष्य की सबसे मजबूत आधारशिला भी है। धन्यवाद।
1: किसान भाइयों, अभी आपने विश्व जनसंख्या दिवस पर ये वार्ता सुनी। वार्ताकार थी स्मृति मिश्रा। किसान भाइयों, आइए कार्यक्रम का रुख करते हैं संगीत की ओर और सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत।

साथियों, अब आइए जानकारी ले लेते हैं नीम के फायदे इस विषय पर। फसल को कीट और रोगों से बचाकर रखना किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। इसके लिए किसान कई तरह के रासायनिक तरीके भी अपनाते हैं। इन रसायनों के उपयोग से खेत की जमीन, भूमिगत जल, मानव स्वास्थ्य, फसल की गुणवत्ता और पर्यावरण को भी हानि पहुंचती है। ऐसे में किसान रसायनों को छोड़कर नीम एवं ट्राइकोडर्मा का भी उपयोग कर सकते हैं। आइए किसान भाइयों, अब आपको बता दें कि नीम का प्रयोग कैसे करें। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि किसानों को जैविक विधि से खेती करनी चाहिए। इस विधि में अगर नीम के पत्ते, नीम की खली और नीम के तेल का प्रयोग करेंगे तो किसान अपनी फसल को कीटों के प्रकोप से बचा सकेंगे। इस तरह फसल से काफी शुद्ध अन्न की उपज प्राप्त होगी, साथ ही यह स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक है। अगर फसलों पर कीटों का प्रकोप हो गया है तो सबसे पहले नीम के पत्ते को ठंड में सुखाकर रात भर पानी में डुबाकर रखें। इसके बाद उस पानी को पौधों पर छिड़क दें। इस तरह फसल पर कीट का प्रभाव नहीं होगा। बता दें कि बैंगन के पौधों को तना छेदक कीट बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में बैंगन के पौधों पर नीम के तेल का स्प्रे कर देना चाहिए, इससे कीटों का प्रकोप कम हो जाता है। किसान नीम से कीटनाशक तैयार करते हैं तो उन्हें काफी लाभ मिलेगा। बता दें कि अगर किसान एक हेक्टर खेत में रासायनिक कीटनाशक का छिड़काव करते हैं तो उनका कम से कम 1,000 रुपये खर्च होता है। इसके साथ ही रासायनिक कीटनाशकों से फसल का स्वास्थ्य भी खराब होता है। इसके अलावा खेत की मिट्टी को भी हानि पहुंचती है। लेकिन फसल को कीट और रोगों से बचाने के लिए नीम बहुत अच्छा उपाय है। गाँव में नीम आसानी से मिल जाता है। अगर किसान नीम से कीटनाशक तैयार करते हैं तो उन पर आर्थिक भार भी नहीं पड़ता। चलिए अब आपको बता दें कि नीम की पत्तियों से कीटनाशक कैसे बनाएं। नीम का कीटनाशक बनाने के लिए आपको इन चीजों की जरूरत होगी, जो इस प्रकार से है। नीम की पत्ती, खली और इसके तेल की जरूरत होगी। नीम से कीटनाशक बनाने के लिए सबसे पहले नीम की पत्तियों को एकत्रित कर उन्हें छाया में सुखाएं। पत्तियों के पूर्ण रूप से सूख जाने पर उन्हें पर्याप्त पानी में रात भर डुबाकर रखें। इसके बाद नीम की पत्ती वाले पानी का छिड़काव पौधों पर करें। इस छिड़काव के बाद फसल पर कीट का प्रभाव नहीं होगा। चलिए अब आपको बता दें कि नीम की खली कैसे बनाएं। नीम की खली से भी कीटनाशक तैयार किया जा सकता है। इसके लिए हमें जिस सामग्री की जरूरत होगी वो इस प्रकार से हैं: 3 किलोग्राम कुटी हुई निबोली या 5 किलोग्राम निबोली की खली। सबसे पहले 3 किलोग्राम कुटी हुई निबोली को करीब 15 से 16 लीटर

0: पानी में 3 दिनों तक फूलने दें। इसके बाद चौथे दिन धतूरे का रस, हरी मिर्च 250 ग्राम को कूटकर इससे करीब 3 लीटर अक्र निकाल लें। अगर 1 लीटर कीटनाशक है तो आपको करीब 20 लीटर पानी मिलाना है। पानी मिलाने के बाद तैयार मिश्रण को आप अपनी फसलों पर छिड़काव कर सकते हैं। इसके छिड़काव के बाद 1-2 दिन में ही इसका असर नजर आ जाएगा। साथियों, अभी आपने नीम के फायदे के बारे में जाना। आप कार्यक्रम में वक्त हो गया है आज पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर बताने का। हमने आपसे पूछा था ज्वाइन क्यू किसकी किस्म है। 3 विकल्प भी हमने आपको दिए थे, पपीता, अनानास या फिर अमरूद। साथियों, उस प्रश्न का सही उत्तर है ज्वाइन क्यू अनानास की किस्म है। उम्मीद करते हैं किसान भाइयों ने अपने उत्तर की जाँच कर ली होगी।
1: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: साथियों, इसके साथ ही हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो चला है। सोमवार को कृषि जगत के तहत हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।
1: अभी आप सुन रहे थे किसान वाणी कार्यक्रम।

0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 6:30 हुए हैं। बुजुर्ग नागरिकों के लिए श्रोताओं सुनते हैं इस कार्यक्रम के तहत डॉक्टर चंदा श्रीवास्तव के साथ ली गई भेंट वार्ता। बीती यादें मेरे जीवन की सुनहरी यादें।
1: बीती यादें
2: बुजुर्ग नागरिकों के लिए कार्यक्रम बीती यादें सुनने वाले सभी श्रोताओं को सोनिया का नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से ज्वाइंट डायरेक्टर के पद से रिटायर हुई डॉक्टर चंदा श्रीवास्तव को। चंदा श्रीवास्तव जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार मैम, धन्यवाद।
2: सबसे पहले अपने बारे में कुछ हमें बताइए, आपका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ की रहने वाली हैं आप?
3: मैम, मेरा जन्म तो ननकौरी द्वीप में हुआ। एक्चुअली मेरे पिताजी वेस्ट बंगाल से आए थे वायरलेस ऑपरेटर के सर्विस में नियुक्त होकर 1951 में, एंड उनकी पोस्टिंग वहाँ थी, तो उस दौरान मेरी जन्म मतलब ननकौरी द्वीप में हुई। एंड उसके बाद हमारी जो स्कूली शिक्षा वगैरह यहाँ पर पुडलर आने के बाद में शुरू हुई, तो शुरुआती तौर पर तो प्राइमरी स्कूल की शिक्षा में हमारे दिलानीपुर स्कूल से शुरू हुई। उसके बाद 5th स्टैंडर्ड तक की थी, तो 6th के लिए हमें स्कूल बदलना पड़ा, तो बिडन स्कूल में जाना पड़ा। एक्चुअली मॉडल स्कूल का जो शुरुआती दौर है ना, वो एबिडेंस स्कूल से ही शुरू हुआ। दैट मैं सेकंड बैच की हूँ, 12th स्टैंडर्ड मॉडल स्कूल से ही मैं पास आउट हुई। इसके बाद मैं पढ़ने चली गई BSc AG, मैंने केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से किया है, त्रिशूर नामक जगह से, एंड 1980

0: सिक्स में हमारी कंप्लीट हुई, और इसके बाद मैं मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर में हैदराबाद से आंध्र प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से की, एंड पीएचडी मैं आगरा से की हूँ, बीजपुरी नामक हमारे जो कॉलेज का नाम है। और ये जो एमएससी और पीएचडी ना, मैं एज इन सर्विस कैंडिडेट बनकर ही मतलब अपने स्टडीज़ पूरा किया है। ये रही मेरी शिक्षा की दास्तान।
1: जी जी बहुत ही अच्छा लगा ये जानकर। और स्कूल के दिनों की कोई खास याद जो आज भी आपको अच्छी लगती है?
0: वैसे तो कैसे बताऊँ कि इतनी सारी यादगार रहती है, क्योंकि हमारे स्कूल में टीचर्स जो थे ना, उनसे हम लोग काफ़ी घुले मिले रहते थे, और अभी का जो माहौल और पहले का माहौल में काफ़ी अंतर है। तो उनके प्यार से ना, एक एक चीज मोमेंट, जिस तरह से हम लोग वो जैसे रखते हैं ना कुमार, वो घड़े में बहुत अच्छी तरह से टटोल के सहेज करता है, तो वो एक रहती थी स्कूल जाना ही है। इसके साथ साथ ना मैं कहना चाहूँगी कि जब मेरा टर्निंग पॉइंट आया क्लास 8 में, जब मैं सुगना मैडम एक नाम की एक टीचर और सरोजनी मैडम से मिली, तो उन्होंने कहा कि पढ़ाई लिखाई और कल्चरल एक्टिविटीज तो ठीक है, लेकिन इसके साथ ना आपको ट्रैक एंड फील्ड होती है ना कि रेस वगैरह जंप ऑल दैट थिंग, उस स्पोर्ट्स में भी आपको इक्वल तवज्जो देना है और पार्टिसिपेट करना है। मैं सोच रही थी इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है, कौन ले जाएगा, ये सब सोचकर ही मैं थोड़ा पीछे हट रही थी। लेकिन जिस तरह से दोनों मैडम ने मुझे कहा कि एटलीस्ट हमारे हाउस के खातिर आपको तो पार्टिसिपेट करनी है, तो मैं उनको ना नहीं कर पाई, मैंने देखते कोशिश करते हैं। लेकिन जिस दिन हमारा रेस था ना, मैं ज़िंदगी में पहली बार स्कूल लाइफ में पार्टिसिपेट, मुझे हीट्स क्या होती है, कैसे रेस में भागना है, कुछ नहीं पता था। तो जिस प्रकार मैं रेस के लिए उतरी और भागना शुरू करी, मुझे तो वो सरोजनी मैडम जिस तरह से ना अपना पेविलियन छोड़कर, उनको सिर्फ मैं दिख रही थी और कोई नहीं दिख रहा था, मेरे नाम पुकार पुकार के जिस तरह से भागते हुए मुझसे लिपटने के लिए आई ना, वो देख के ना मुझे मतलब जोश भी आ गया, और मुझे पता नहीं चला कि मैडम का इज्जत तो रखना ही है ना, लेकिन कसम से मुझे पता नहीं था कि मैं अनजाने में फर्स्ट आ गई। और थोड़े से सेकंड्स के कारण ना, जो हमारी जो स्कूल की जो बेस्ट स्पोर्ट्स गर्ल थी वो पीछे रह गई, लेकिन ये ना मुझे एक लेसन सिखा गई। उसके बाद मैं कॉलेज में ये इसको कंटिन्यू की, सर्विस लाइफ में भी कंटिन्यू की। अभी आप ताजुब होता होगा ना, रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले जब मायाबंदर में पोस्टिंग थी, उतना ज़्यादा एंटरटेनमेंट नहीं था, तब मैंने अपने स्टाफ को कहा कि सुभाष मेला है, सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, सारे डिपार्टमेंट करते हैं, हारो कोई बात नहीं, लेकिन आप पार्टिसिपेट करो। तो उसमें क्या हो गया, सब हमारे स्टाफ भी प्लीज खेल से ना जुड़े रहे, सो दैट वॉज द स्ट्रांग मोटिवेशन फ्रॉम माई टीचर्स, जिसके लिए मैं सच में तहे दिल से आभार हूँ।
1: आपकी कैरियर की शुरुआत कैसे हुई?
0: 1986 में जैसे ही हमने पढ़ाई कंप्लीट की केरला एग्रीकल्चर से, प्रोफेशनल कोर्स के कारण ना मैं भी चाहती थी कि सर्विस में जल्दी से ज्वाइन करूँ, ताकि जो सीख कर आई ना मतलब उसके साथ तो होना चाहिए, लेकिन डिपार्टमेंट से लकीली जोड़ पाई बहुत जल्द, और जून में ही मुझे नौकरी मिल चुकी थी। और मेरी फर्स्ट पोस्टिंग ना फ्रूट प्रिजर्वेशन यूनिट में, फल संरक्षण एंड डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट हैडो में जो स्थित है, वहाँ पर मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई। उसके बाद से मैं सारे जगह में, मतलब कैमल बे बोलिए या रंगत मायाबंदर, सारे जगह इंक्लूडिंग हट बे और साउथ अंडमान, सभी जगह मैं सेवा काल में रह पाई, अपना सर्विस दे पाई।
1: और अपने कार्यकाल की कोई यादगार घटना जो हमारे श्रोताओं से आप साझा करना चाहेंगी?
0: यस मैम, सबसे पहले मैं कैमल बे से शुरू करती हूँ, क्योंकि सुनामी के समय जब मेरी पोस्टिंग वहाँ पर हुई थी, तो वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के समय था। आपको पता है कि सुनामी हमारे ज़िंदगी में और सभी काफ़ी लोगों की ज़िंदगी में पहली बार आई थी, क्योंकि उसका नाम भी हम लोग सुने नहीं थे, और इतना दुखदायक हादसा, और हमारे कृषि में किसान लोगों के में काफ़ी नुकसान का सामना हुआ था, उनका ही नहीं परंतु हमें भी इफ़ेक्ट हुआ, प्रोडक्शन जब चली गई, तो ये ना पूरे टीम के साथ में हमें वो उनको मुआवजा दिलाने के लिए, सही मुआवजा दिलाने के लिए तो सर्वे में जाना ही पड़ेगा, तो उसका मुआवजा आकलन के लिए और उसका टीम के साथ में सहयोग से, मतलब काफ़ी कठिन समय था हम सब के लिए, लेकिन पूरे टीम के सहयोग के कारण ना हम जो एक सीमा होती है लिमिट के अंदर ही हम लोग ये पूरा कर पाई हो मैम। उसके बाद एक पोस्टिंग हमारी मायाबंदर की जो याद है, तो मायाबंदर में भी दीप बहुत प्यारा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जब मेरी पोस्टिंग हुई थी तो हमारे स्टाफ बहुत लिमिटेड थे, दूर दराज के किसान थे, तो वहाँ पर सर्विस देने के लिए स्टाफ चाहिए था, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, यातायात के साधन, ये सब अगर नहीं हो तो हम कैसे काम कर पाएंगे, तो ये बहुत ही मतलब चैलेंज वाली बात थी। एंड और एक मैं कहना चाहूँगी कि जब मैं लिटिल अंडमान में थी, तब भी मतलब मुझे दो तीन जगह किसान के साथ और स्टाफ के साथ, मतलब कोरोना के समय, मतलब ना भुलाने वाली

0: जो बात है, कोरोना के समय ऐसा था कि एक तो स्टाफ मिलना नहीं चाहिए ना, क्योंकि कोरोना फैलने का डर रहता है, तो रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट थी। और अगर हम स्टाफ को ड्यूटी में नहीं लगने थे, वेरी सिलेक्टेड को ड्यूटी में इसलिए डालना पड़ता था क्योंकि फार्म में ना जितने भी पौधे रहे हैं, नर्सरी में हैं, बाकी फल फूल वाले पौधे, उसको अगर नहीं सींचेंगे तो एक साथ हमारी फार्म बैठ जाएगी। और उनके ड्यूटी लगाने के लिए फिर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से उनसे पूछना पड़ता था। थी नहीं, हमारे पास व्हीकल ही नहीं थी कि हम उतना दूर स्टाफ को पहुँचा सके, तो कैसे जाएंगे कोरोना में। तो ये सारे प्रॉब्लम होने के साथ साथ उनका मतलब एक मिला जुला एक दूसरे डिपार्टमेंट से भी तय करके, और किसान को टाइमली इनपुट देना था, और उनका मार्केटिंग का प्रॉब्लम था, तो वो सबको भी मॉनिटरिंग और ओवर फोन एंड ऑल कैसे भी हम लोग करके टैकल किए। एक और एक मेरे स्टाफ, वो थोड़ा फिजिकली चैलेंज थे और वो फार्म के स्टाफ थे, उनका रिटायरमेंट था, और कोरोना के समय पैसेंजर शिप नहीं चलती थी और ना ही डाक वगैरह लेते थे पोस्ट ऑफिस से, तो उनका कैसे सेटल कर सकते हैं। लेकिन उस दौरान हमारे जो पे एंड अकाउंट पोर्टलर और जो सब पे एंड अकाउंट जो हडबे ने बहुत अच्छा सहयोग देकर हमें रास्ता दिखाया, और हमने शिपिंग सर्विसेज का जो बोट जो आती थी पानी लेने, वहाँ पर किसी बंदे को ऐसे ही रिक्वेस्ट किया कि ये लिफाफा आप कैसे भी पहुँचा दो। मतलब ओनली ऑन दोस्ती एंड नेटवर्किंग के कारण उस बंदे को ना लास्ट वर्किंग डे में रिटायरमेंट बेनिफिट हम लोग दे पाए, और हमारी सेक्रेटरी एग्रीकल्चर भी काफ़ी खुश हुई। सो दैट इज़ माई अचीवमेंट, मुझे बहुत खुशी है।
1: और कार्यक्रम है वरिष्ठ नागरिकों के लिए, तो जानना चाहेंगे कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए आपका क्या संदेश है कि वे अपने जीवन को सक्रिय और सकारात्मक कैसे बनाएं?
0: देखिए, मैं एक पहले एक क्लियरली बोलना चाहती हूँ कि रिटायर्ड लोग को ना ये नहीं समझना चाहिए कि वो जॉब से रिटायर हो गए। तो ये तो एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है रिटायरमेंट, ठीक है। और रिटायर्ड होने का मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी से रिटायर होना है। सही मायने में मैं कहूँ तो असली ज़िंदगी का जो मज़ा है या असली ज़िंदगी रिटायरमेंट के बाद ही शुरू होती है। और मैं सीनियर सिटीजन से कहूँगी, इस जीवन का आनंद तो भली बात ही ले, क्योंकि दोस्तों के साथ समय व्यतीत कर सकते हैं, घूमने जाए, आराम करें और अपनी पसंद का संगीत सुने, और क्लब ऑनलाइन ना ज्वाइन कर लीजिए, अभी कोरोना काल ने सिखा दिया, तो दैट इज़ द एडवांटेज आई फील, जिससे ना आप अपनी सेहत का भी ख्याल रख सकते हो, और हॉबीज़ को जो पुरानी जो जो रह गई कोने में हम कर नहीं पाए, उसको निभाने का एकदम सही वक्त है, वो सब आप आराम से कर सकते हो।
1: कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी मन में दबी इच्छाएं हैं उसे खुलकर जो है रिटायरमेंट के बाद जिए।
0: खुलकर जीने का मौका अभी है। जैसे मेरी हॉबी कुकिंग में है, तो मैं क्या करती हूँ, कुकिंग वगैरह करती हूँ, तो ब्रेकफास्ट बनाना, लंच एंड ऑल, तो उसमें थोड़ा टाइम निकल जाता है, और अपने को भी अच्छा लगता है, और घर में भी सब खुश रहते हैं कि घर में जो पका पकाया खाना मिलता है ना, उसका तो स्वाद प्लस एक सेटिस्फेक्शन रहता है। और शाम को ना मैं क्या करती हूँ, इलेक्ट्रिक गिटार मेरे पास है, मेरे हस्बैंड ने रिटायरमेंट के साथ ही प्रेजेंट कर दिया, तो इलेक्ट्रिक गिटार के साथ साथ कभी कभी हारमोनियम, मतलब अपना शौक पूरा तो मैं कर ही लेती हूँ। और 15 से 20 दिन के अंतराल में एक और काम करती हूँ, अपने रिटायर्ड ग्रुप फैमिली फ्रेंड्स है वो सबके साथ ना हम लोग आउटिंग चले जाते हैं, और एक दिन जम के आउटिंग करते हैं, खूब एंजॉय करते हैं, और सब रिचार्ज होकर वापस अपना अपना उसमें सेट हो जाते हैं।
1: जी,
0: तो
1: यही एक खुशहाल जीवन का मंत्र है आपका।
0: हाँ, खुशहाल जिंदगी तो बिताना है, जिंदगी बहुत बोलते हैं ना मुश्किल से ही मिलती है, जब मिली है तो उसको एंजॉय करना चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि सभी लोग ना मतलब खुशहाल जिंदगी के लिए कभी अपना पास्ट को देखकर याद ना करें, दुखी नहीं होना चाहिए उनको, वर्तमान में जीना चाहिए, फ्यूचर का सोच कर भी अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। दोस्तों को तो अपने सके, दोस्त ऐसे होते हैं सुझाव भी देते हैं और हमको लेके चलते हैं, तो हमारा जिंदगी बहुत सलीके से बहुत अच्छे इस तरह से कट जाती है।
1: और आज की जो तेज रफ्तार जिंदगी में जो है युवा पीढ़ी को आप कौन से जीवन मूल्यों को अपनाने की सलाह देंगी?
0: युवा पीढ़ी के लिए ना मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो वो अपना स्वास्थ्य और सुखाल जिंदगी का एक प्रण लेना चाहिए। आपके मन में अगर कोई लक्ष्य है, वो लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए आप कोशिश कीजिए, उसी तरह का पढ़ाई भी कीजिए, एंड उसके साथ साथ लगे हाथ आपको अगर कुछ करना है वो कीजिए, लेकिन एक लक्ष्य जो है आपको पहले से साधन निर्धारित करना होगा।
1: जी, जानना चाहेंगे आजकल के भाग दौड़ भरी जिंदगी में आप अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखती हैं?
0: आजकल की भागदौड़ वाली ज़िंदगी आपने एकदम सही फरमाया है, तो उसमें हम लोग फास्ट फूड की ओर भागकर अपना सेहत तो बिगाड़ लिए हैं, और जब ड्यूटी में थे तो उस वक्त हमारे समय ही नहीं मिलता।

0: था और खान पान का भी ख्याल नहीं रखते थे। लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट ना, सबसे पहले मैंने अपने सेहत फोकस किया और सुबह 5 से 7 बजे योगा या प्राणायाम करती हूँ और ऑनलाइन जो हेल्थ क्लब से मैं जुड़ गई हूँ और उसके क्लास में हमारा समय सुबह का टाइम व्यतीत हो जाता है। और क्लब के माध्यम से मैं आज एक वेलनेस कोच बन गई हूँ और 7:30 से 8:30 का जो टाइम है ज़रूरतमंद लोगों को हेल्थ टिप्स शेयर करती हूँ एंड एडवाइस करती हूँ। और बाकी समय कुकिंग या पेट्स और टिडबिट्स जो घर के जो सजावट या ऐसे उसमें निकाल देती हूँ एंड हॉबीज़ को तवज्जो देती हूँ एंड दोस्तों के साथ निभाती हूँ। और ये जो सेहत क्लब से जो जुड़ी हूँ उससे मेरी सेहत इतनी अच्छी हो गई। पहले मैं डायबिटिक एकदम इंसुलिन की उसमें आ गई थी, फैटी लिवर ग्रेड 3 था, हाई बीपी थी मुझे और हाइपोथायराइड होने के कारण मोटापे की शिकार थी, अभी 90 kg के आसपास थी। तो वहाँ से मैं अभी 31 kg लॉस की हूँ बहुत कम समय में और उससे मेरी सेहत बहुत जल्द मुझे मेडिसिन फ्री लाइफ में हो गई है और अभी एनर्जेटिक फील करती हूँ और मुझे लगता ही नहीं मैं रिटायर्ड हूँ।
1: रेडियो सुनने का शौक रखती हैं?
0: हाँ ज़रूर ज़रूर, रेडियो तो हमारी लाइफ लाइन है और स्पेशली एग्रीकल्चर, नॉट ओनली एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर वेटनरी जितने भी साइंस किसान से जुड़े हैं, जिन लोग संगीत से, कोई ऐसा क्षेत्र शायद ही है जो रेडियो से जुड़ा नहीं है। आकाशवाणी के कारण ही ना हम किसान के दूर दराज एरिया में सिर्फ रेडियो पहुँच पाई है। कुछ अनाउंसमेंट होता है कि अचानक चेतावनी जब आती है तो हम रेडियो के सहारे जीते हैं। कोई नहीं पहुंच सकता जहां पर, वहां पर हमारे रेडियो का जो मैसेज है ना वो पहुंचता है और संगीत पहुंचता है उसमें। वो खोलते सर ट्यून जो आती थी
1: जी
0: ना,
1: जी
0: वो
1: सिग्नेचर ट्यून,
0: सिग्नेचर ट्यून, वो सो स्पेसिफिक, और उससे हम लोग टाइम भी नोट करते थे, वो ऑन कर देते थे एक नशा जैसे कि रेडियो ऑन करना है। उसके साथ साथ हम सब सुनते थे और उसका चेतावनी, समाचार तरंगनी, उसका पहले म्यूजिक है ना, उसका समाचार तरंगनी में आज कौन क्या बोल रहा है, मतलब उसमें लगे स्कूल जाने तक। उसके बाद फिर शाम से हमारे विविध भारती, क्या क्या प्रोग्राम आप लोग अच्छी तरह से चौकट टाइम पर टाइम होते गया, मतलब न्यूज़ को सुनते थे, मतलब दिल से। हम बता नहीं सकते कि वो न्यूज़ को कैसे बोला जाता था, इट वॉज़ वेरी थ्रिलिंग। एंड अंडमान निकोबार के लिए तो मैं बोलती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेलैंड भी जाने से कभी मन होता है कि इसको ट्यून करने से सुनने का मन होता है मैम,
1: जी अब तो
0: सच
1: मोबाइल
0: में।
1: ऐप में भी आ गया है
0: हाँ
1: रेडियो।
0: मोबाइल ऐप में भी आ गया है तो
1: जी
0: न्यूज़ भी आ गया, न्यूज़ आ जाने से ना और अच्छा हो गया।
1: जी
0: हाँ
1: तो चलते चलते अब हमारे समाज से और युवाओं से आप क्या कहना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि वो थोड़ा सा जागरूक बन जाए, तो मैं चाहती हूँ कि वैसे ही मतलब मिनी इंडिया और अंडमान का एक नाम जो है ना, प्यार मोहब्बत वाला जो नाम है, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा और वो ना, और थोड़ा जागरूक होना। उभरता हुआ अंडमान तो सब गुणों से भरपूर है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आई एम
1: जी
0: वेरी प्राउड कि मुझे, मेरा जन्म यहीं पर हुआ और यहीं से मैं अलविदा कहूँगी तो ये मुझे अच्छा लगेगा।
1: तो डॉक्टर चंदा श्रीवास्तव जी, आपने अपने बहुमूल्य अनुभव और विचार हमारे साथ साझा किए, अपना कीमती समय हमें दिया, स्टूडियो में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
2: बीती यादें,
3: अभी आप सुन रहे थे बुजुर्ग नागरिकों के लिए कार्यक्रम के तहत डॉक्टर चंदा श्रीवास्तव के साथ ली गई भेंटवार्ता। बीती यादें, मेरे जीवन की सुनहरी यादें, भेंट कर रही थी सोनिया कुमारी और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी मीना प्रकाश। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 6:45 हुए हैं, आइए सुनते हैं सुरेश प्रकाश शुक्ला की लिखी झलकी, अटक गई।

0: 清白，还来了清白，牙疼没有病来，还来把你干。
1: 哎，बेगम जरा देखो तो बाहर कौन आया है। जरा तेज कदमों से जाओ, ठमक ठमक कर चल रही हो। अरे देखो वरना कंबख्त पीट पीट कर दरवाजा ही तोड़ देगा।
2: ओहो, जाती हूँ, तुम बस लेटे लेटे हुकुम चलाते रहो। अरे अरे बस करो भाई, आ रही हूँ। कौन है?
3: मैं हूँ भाभी जान, आदाब अर्ज करता हूँ।
2: अरे रघुवीर भाई, मैं समझी थी कि पड़ोसन आ गई चाय की पत्ती।

0: अच्छा,
1: लेकिन भाभी जान मैं सिर्फ चाय की पत्ती नहीं, मैं तो बाकायदा चाय और नाश्ता लेने आया हूँ।
2: अच्छा अच्छा, बैठेंगे भी कि खड़े खड़े?
1: हाँ जहाँ जहाँ जरूर बैठेंगे। लेकिन रशीद भाई को कहाँ छिपा दिया है, क्या अभी तक सो रहे हैं क्या?
2: नहीं नहीं आप बैठिए, मैं उन्हें अंदर से भेजती हूँ।
1: जी अच्छा, मैं बैठता हूँ।
2: ओहो, अभी तक लेटे हुए हैं? अरे देखिए ना, रघुवीर भाई आए हैं।
3: है? क्या कहा, पीर भाई आए हैं? मैंने तो उन्हें नहीं बुलाया, फिर पीर फकीरों का यहाँ क्या काम है? कह दो कि हम, मैं घर पर नहीं हूँ।
2: ओहो, तुम तो ना बात सुनते हो और ना समझते हो, बस अपनी ही धुनने लगते हो।
3: ये क्या बड़बड़ा रही हो बेगम, जब देखो तब बड़बड़
2: बड़बड़ा नहीं रही हूँ, कह रही हूँ कि रघुवीर भाई बैठे हुए हैं, तुमसे मिलने आए हैं।
3: है? तो चीख काहे को रही हो, है मैं कोई बहरा हूँ? अरे रघुवीर भाई आए हैं तो रघुवीर भाई कोई गैर थोड़े ही है, अभी जाके उनकी खबर लेता हूँ। अरे रघुवीर मियाँ।
1: हाँ वाह रशीद भाई।
3: अच्छा भाई, कब से बैठे हो यहाँ?
1: बस अभी आया।
3: ये हमारी बेगम भी खूब है, कुछ का कुछ बताती हैं।
1: बस बस रहने दो रशीद भाई, मैं सब सुन रहा था। क्या अब ऊंचा सुनने लगे हो?
3: है? क्या फरमाया, ऊंचा?
1: कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं रशीद भाई, आइए बैठिए, बैठिए मेरे पास।
3: है, क्या बैठूं? अच्छा अच्छा
1: जी हाँ।
3: बेगम, अरे बेगम जरा कुछ चाय शाय लाइए रघुवीर भाई के लिए।
2: ये लीजिए भाईजान, चाय पीजिए।
1: अच्छा,
2: और बताइए कब आए ऊपर से?
1: क्या ऊपर से? ओह भाभी जान, अभी तक मजाक करना नहीं भूली आप।
2: अरे मैं मजाक नहीं कर रही हूँ भाईजान, मेरा मतलब है टिहरी से कब आए हैं आप? क्या भाभी जान और बच्चों को भी साथ लाए हैं?
1: नहीं भाभी, छोटे भाई ने चिट्ठी लिखी थी कि अम्मा को पीलिया हो गया है, सो अकेले ही आया कल रात। सोचता हूँ माँ को साथ लेता जाऊं।
3: क्यों जनाब, ये तुम लोग आपस में कौन से लड्डू फोड़ रहे हो? रघुवीर यार, कुछ मुझसे भी बातें करोगे या कि अपनी भाभी से ही गुटरगू करते रहोगे?
1: देखा देखा भाभी जान, रशीद भाई कैसे जले भुने जा रहे हैं।
2: अरे भाई जान, मैं तो इनसे तंग आ चुकी हूँ, खुद तो बहरे होते जा रहे हैं और दूसरों को भी बहरा समझते हैं। देखा आपने कितना चीख कर बोल रहे हैं।
1: क्यों रशीद भाई, तुम अपने कानों का इलाज क्यों नहीं करवाते?
3: खाज, एक खाज बाज तो नहीं, बस कांवर बड़ी जोर का फैला है अपने कस्बे में और बहुत से लोग बीमार पड़े हैं।
1: ये लीजिए, ये खाज पर ले उड़े। अरे रशीद भाई, पीलिया तो सचमुच सारे इलाके में फैला हुआ है, मेरी अम्मा भी इस बीमारी से पीड़ित है।
2: अरे क्या कहूँ भाई जान, जब से अपने कस्बे में ये फैक्ट्री खुली है ना, तब से इलाके के लोगों की तो नाक में दम हो गई है। अरे मेरा तो बेड़ा ही गर्क हो गया है।
1: मैं समझा नहीं भाभी जान।
2: जब से तुम्हारे भाई साहब ने फैक्ट्री में काम करना शुरू किया है, तभी से ऊंचा सुनने लगे हैं, समझे आप? रोज 8-10 घंटे मशीनों की गड़गड़ाहट सुनते सुनते इनके कान सुन्न हो गए हैं।
1: आप बिल्कुल ठीक फरमाती हैं। कल मेरी माँ भी फैक्ट्री को कोस रही थी, कह रही थी इस कस्बे के लिए पानी का एक ही जरिया है, ये छोटी सी नदी, लेकिन फैक्ट्री का गंदा पानी, कचरा, कूड़ा और भी न जाने क्या क्या, इसी में बहा बहा कर सारा पानी मैला कर दिया, तभी तो पीलिया रोग फैल रहा है, शोर से कान फटे जा रहे हैं सो अलग।
2: अब हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं भाई साहब, अपने नसीब को कोसते हैं, आखिर इतनी बड़ी फैक्ट्री बंद तो होगी नहीं, चाहे कोई बहरा हो जाए या मर जाए। अरे भाईजान, वो देखिए वो कौन आ रहा है।
1: कौन? रामकरण।
4: अच्छा अच्छा, तो आप जनाब यहाँ भाभी जान की बातों का लुत्फ उठा रहे हैं और मैं तुम्हारे घर से होकर आ रहा हूँ।
1: ओ हो हो, करण यार तुम्हें ये क्या होता जा रहा है? ये खांसी है कि तुम्हें ही धोखे जा रही, कुछ दवा वा ली कि नहीं?
4: बड़ी दवा कराई, बड़ी दवा कराई, डॉक्टरों से लेकर वैद्य तक किसी को नहीं छोड़ा, लेकिन सभी ने हार मान ली।
1: बस बस बस, शांत।
4: कहते हैं कहीं ऊंचे पहाड़ पर स्वच्छ हवा में रहकर कुछ दिन इलाज कराऊं।
1: लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ भी कस्बे में अच्छे अच्छे कई डॉक्टर हैं।
4: तुम खुश नसीब हो यार, जो टेहरी में काम पा

0: कम से कम स्वस्थ तो दिखते हो, साफ हवा में सांस तो लेते हो, और यहाँ अब पहले वाली बात कहाँ, कब किसकी सांस रुक जाए कोई नहीं जानता।
1: अरे मैं तो कहती हूँ सब इसी फैक्ट्री के कारण है। अरे देखो तो सब तरफ किस कदर काला काला धुआं फैला है। ये सब हमारी आंतों में नहीं चिपकेगा तो जाएगा कहाँ?
2: करण भाई जरा संभल के लो, थोड़ा पानी पी।
3: तुम्हारी खांसी के मारे तो सांस ही अटकी जा रही है। संभाल संभाल।
0: इसे तुम पानी कहते हो? देखो देखो कितना गंदा है, लेकिन हम सभी इसे पीने पर मजबूर हैं। लेकिन पर तुम क्यों हलाकान होते हो?
3: हैरत है, इतनी परेशानी के बाद भी लोगों की ओर से कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे कब तक चलेगा? कम से कम इलाज की अच्छी व्यवस्था तो होती। करण भाई क्यों ना हम तीनों, मेरा मतलब है कि रशीद भाई, तुम और मैं, चलकर इस फैक्ट्री मालिक से ही बात करें।
0: चलो चलो ये भी करके देख लो। लेकिन उम्मीद कम ही है कि वो मालिक हम लोगों की सुनेगा भी। हमें तनख्वाह तो कभी समय पर देता नहीं, बस पत्थर पिसवाता रहता है। उसका बस चले तो हमें भी पिसवा दे।
3: भी, मिलने में क्या हर्ज है, हमें देर नहीं करनी चाहिए। चल आओ रशीद भाई, चलो मिलते हैं तुम्हारे मालिक से।
4: खालिक तो शहर गया है।
0: अरे खालिक नहीं, रघुबीर भाई फैक्ट्री मालिक से हमारे लिए बात करने चल रहे हैं।
4: अच्छा अच्छा, लेकिन मैं जाकर क्या करूंगा, मेरे तो कान ही जवाब दे रहे हैं भाई।
3: अरे तभी तो आपका साथ में रहना जरूरी है। फैक्ट्री मालिक को दिखाना चाहता हूं कि क्या हाल हुआ है फैक्ट्री के रहते। चलो मेरे साथ आओ सब लोग, आओ आओ भाभी जान, आप भी आइए
5: आइए आइए आइए, चलते चलिए चलिए।

0: आप आगे चलिए।
1: हाँ ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। आओ आओ सब लोग आओ।
0: पाए लगी मालिक। हुजूर सलाम। सलाम हुजूर।
2: तुम दोनों तो हमारी फैक्ट्री में काम करते हो। और
1: मैं रघुवीर हूँ। इसी कस्बे में पैदा हुआ था, लेकिन सौभाग्य से अब चेहरी में पोस्टेड हूँ।
2: आई सी। कैसे आए?
3: दारा, इसे यहां से निकालो, हटाओ।
0: मालिक हम आपसे
4: पैर जाता है कि तुम्हें बीमारी का ढोंग करता है ससुरा। लगता है तेरी कुंडली भी मुझे ही लिखनी पड़ेगी। और तुम लोग भी खसक ले हो यहां से। चलो भागो भागो।
1: ठहरो करण। सेठ जी, यही सब तो दिखाने आया हूं आपको। आप इनसे मुंह नहीं मोड़ सकते। आप सेठ हैं, कोई कमी नहीं है आपके पास, लेकिन करण जैसे सैकड़ों गरीब आज तरह तरह की बीमारियों को झेल नहीं पा रहे हैं। कुछ पता है आपको?
2: तुम्हारा मतलब क्या है?
1: यही सेठ जी कि सारी परेशानियां आपकी फैक्ट्री के कारण पनपी हैं। ये बस्ती में फैक्ट्री क्यों लगाई आपने?
2: फैक्ट्री क्यों लगाई है? हमने फैक्ट्री क्यों लगाई? अरे इसलिए कि इस इलाके के हजारों बेरोजगारों को रोजगार मिल सके, तुम लोगों के बाल बच्चों का पेट भर सके। अरे ये फैक्ट्री न होती तो भूखों मरते तुम लोग। तुम लोग चाहते क्या हो? ये फैक्ट्री बंद कर दूं, बंद कर दूं ये फैक्ट्री?

0: सेठ जी, फैक्ट्री बंद होने की बात तो हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इसकी बदौलत इलाके के हजारों मजदूरों का चूल्हा जलता है। वो बात अलग है कि जो मजदूरी आप उन्हें देते हैं उससे उन्हें पेट भर रोटी नसीब नहीं होती। फिर भी जहां इतना उपकार किया है आपने, वहीं फैक्ट्री की गंदगी से फैलने वाले प्रदूषण को रोकने की कृपा कर दें। बस यही कहने आया था मैं आपसे, क्योंकि ये गंदगी हर पल उनकी सांसों में जहर बनकर घुल रही है। जरा सोचिए सेठ जी, फैक्ट्री में मेहनत करने वाले मेहनत कशों के हाथ अगर कमजोर पड़ गए तो सोना उगलने वाली आपकी फैक्ट्री का क्या होगा?
1: यू शट अप! मुझे कब किस पर कितनी कृपा करनी है ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूं। जो करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करके इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाता है वो उसकी भलाई बुराई भी अच्छी तरह जानता है, समझे?
0: यही तो अफसोस है सेठ जी कि आप कुछ नहीं समझते। आपकी लापरवाही की वजह से ये हजारों बेकसूर अनचाही मौत मरने को मजबूर हो रहे हैं। और ये मजदूर ही क्यों, चारों तरफ के खेत खलिहान नदी तालाब पेड़ पौधे सब सबकी हत्या कर रहे हैं आप। ये जुर्म है। अगर अब भी आपने हमारी बात न मानी तो आपके हाथों में हथकड़ी और फैक्ट्री में ताला होगा और घर बैठे मजदूरों को मजदूरी भी देनी पड़ेगी।
1: तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तुम दारा
2: मालिक, वैसे तो हम आपकी देहरी के कुकुर हैं, लेकिन ई बखत आपका हुक्म ना मानेंगे। हाँ
1: दारा,
2: बाबू जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमरो घरवाली भी खास खास के मरने जोग हो गई है। मालिक, मनाई मनाई का दुश्मन भले हुई जाए, मुला कुकुर कुकुर का दुश्मन कभी ना हो। यहाँ
1: तेरी ये मजाल, बहादुर मेरी राइफल दो। बस, मैं अभी
0: बस सेठ जी, बहुत हो चुका। मेरे रहते आपका एक जंगल राज नहीं चलेगा। ये लीजिए मेरा कार्ड।
1: कार्ड?
0: एक हफ्ते का समय देता हूँ, सब ठीक हो जाना चाहिए।
1: रघुवीर प्रसाद, प्रशासनिक अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अरे अरे सर आप, अरे बहादुर, दारा देखो साहब आए हैं। अरे करण, कुर्सी लाओ, कुर्सी लाओ। सर बैठिए, कॉफी पीजिए सर।
0: नो थैंक्स।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 7 बजे हैं। अब सुनिए कार्यक्रम संबंधी कुछ सूचनाएं। आज संध्या 7:30 पर युवाणी के तहत आप सुनेंगे विश्व जनसंख्या दिवस पर चर्चा और कार्यक्रम ऐसा भी होता है।

बच्चों के लिए बाल जगत कार्यक्रम हम प्रसारित करेंगे सवेरे 9 बजे, जिसके तहत विश्व युवा दिवस पर जानकारी और के कामराज की जयंती पर चर्चा के अलावा लघु कथा आप सुनेंगे आशा की दुनिया।

दिन के 11 बजे प्राइमरी चैनल के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर हम प्रसारित करेंगे स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम जनता जंक्शन।

दोपहर 1:30 पर प्राइमरी चैनल और एफएम 100.9 MHz पर महिलाओं के लिए होगा कार्यक्रम घर संसार, जिसमें विश्व युवा कौशल दिवस और जगन्नाथ रथ यात्रा पर चर्चा के अलावा आप सुन पाएंगे एडवोकेट राकेश पाल गोविंद के साथ ली गई भेंट वार्ता महिलाओं के अधिकार।

0: मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं दी जाएंगी संध्या 7:15 पर। युवाणी के तहत संध्या 7:30 पर होगा लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो म्यूजिक लवर्स। ये थी कार्यक्रम संबंधी कुछ सूचनाएं। श्रोताओं, 7:05 होने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: स्वच्छ गांव, स्वस्थ जीवन, आइए मिलकर निभाएं अपनी जिम्मेदारी। गीला, सूखा, सैनिटरी और घरेलू खतरनाक कचरे को 4 भागों में अलग करें। कचरा न जलाएं, न इधर उधर फेंकें। अधिक जानकारी या शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 1800-345-2739 पर संपर्क करें। ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टिल्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी का जल अवतरण किया। कहा, भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। विश्व जनसंख्या दिवस पर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। ननकौड़ी के कमोटा बाजार में स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संचालन का शुभारंभ किया गया और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत दक्षिण अंडमान को मॉडल जिला बनाने की दिशा में राज्य स्तरीय उद्घाटन कार्यशाला आयोजित की गई।

सांध्य समाचारों के साथ मैं टीजे श्री। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टिल्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17A का यह युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को मजबूत करके एक सुदृढ़, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। श्री सिंह ने कहा कि INS महेंद्र

सामग्री में 75% से अधिक स्वदेशी घटकों का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि यह युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है। इससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। विश्व जनसंख्या दिवस पर उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय माँ और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व है। उन्होंने कहा कि अभियान का नारा जब बच्चों में हो सही अंतराल, परिवार बने स्वस्थ और खुशहाल। गुणवत्तापूर्ण परिवार नियोजन सेवाओं तथा जागरूक प्रजनन संबंधी निर्णयों के महत्व को दर्शाता है। अंडमान एवं निकोबार पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक और सफलता हासिल करते हुए हैडो स्थित शहीद भगत सिंह कॉलोनी के पार्किंग क्षेत्र के पास से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 1 किलोग्राम से अधिक गांजा बरामद किया है। सीआईजी के एंटी नार्कोटिक्स पुलिस स्टेशन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर 10 जुलाई की मध्य रात्रि को विशेष अभियान चलाया गया। पुलिस टीम ने निगरानी के दौरान शहीद भगत सिंह कॉलोनी हैडो निवासी 41 वर्षीय हरीफ हुसैन शेख को रोककर उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उसके पास से गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने मादक पदार्थ जब्त कर आरोपी को NDPS अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई निरीक्षक के विनोद के नेतृत्व में तथा उप पुलिस अधीक्षक सुनील पंचाल के पर्यवेक्षण में की गई। अंडमान निकोबार पुलिस ने कहा है कि मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि उन्हें नशीले पदार्थों की तस्करी या मादक पदार्थों के दुरुपयोग से जुड़ी कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज ननकौड़े के कमोटा बाजार में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संचालन का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन ननकौड़ी के सहायक आयुक्त डॉ. क्षितिज ज्ञानराज शाह ने किया। यह परियोजना स्वच्छ भारत मिशन और समेकित जनजातीय विकास परियोजना के तहत निकोबार के उपायुक्त अमित काले के मार्गदर्शन में शुरू की गई है। इसके तहत स्थानीय जनजातीय समुदाय से चयनित सफाईकर्मी घर घर जाकर पृथक किए गए कचरे का संग्रहण करेंगे। उद्घाटन के दौरान सफाईकर्मियों को वर्दी एवं सुरक्षा उपकरण वितरित किए गए तथा उन्हें इही इंचोन स्वच्छ सेना नाम दिया गया। कार्यक्रम में कचरा पृथक्करण एवं स्वच्छता संबंधी जागरूकता पुस्तिकाओं का विमोचन भी किया गया। अधिकारियों ने लोगों से जैविक और अजैविक कचरे को अलग अलग रखने तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का पालन करने की अपील की। कार्यक्रम के बाद कमोटा बाजार में मेगा स्वच्छता अभियान और वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत दक्षिण अंडमान को मॉडल जिला बनाने की दिशा में कल राज्य स्तरीय उद्घाटन कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्घाटन स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त सह सचिव डॉ. सचिन शिंदे ने किया। अपने संबोधन में डॉ. शिंदे ने कहा कि ABDM द्वीपों में सुरक्षित, एकीकृत और नागरिक केंद्रित डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने सरकारी और निजी स्वास्थ्य संस्थानों से मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन में सक्रिय भागीदारी की अपील की। कार्यक्रम के दौरान आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन न्यूज़लेटर 2025-26 का विमोचन भी किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक डॉ. पंकज कुमार अरोड़ा ने वर्चुअल संबोधन में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं ABDM आधारित अस्पताल प्रबंधन प्रणाली और डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव योजना पर प्रकाश डाला। स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉ. HM सिद्धराजू ने बताया कि दक्षिण अंडमान को ABDM के तहत मॉडल जिला चुना गया है, जिससे डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, दक्षता और निरंतरता में सुधार होगा। कार्यशाला में आभा, डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड, अस्पताल प्रबंधन प्रणाली

0: तथा अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं पर तकनीकी सत्र भी आयोजित किए गए। डॉक्टर एसआर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 2 वर्षीय डिप्लोमा एंड एलिमेंट्री एजुकेशन पाठ्यक्रम की प्रवेश प्रक्रिया का संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है। प्रावधिक मेरिट सूची 24 जुलाई को प्रकाशित की जाएगी। इस पर दावे एवं आपत्तियां 25 से 28 जुलाई तक स्वीकार की जाएंगी। इसके बाद अंतिम मेरिट सूची 4 अगस्त को जारी की जाएगी। संस्थान ने बताया है कि प्रावधिक एवं अंतिम मेरिट सूची कॉमन कॉलेज एडमिशन पोर्टल, संस्थान की वेबसाइट तथा नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध रहेगी। अभ्यर्थी अपने दावे या आपत्तियां निर्धारित अवधि के भीतर आवश्यक दस्तावेजों सहित संस्थान में व्यक्तिगत रूप से या ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित नवीनतम जानकारी के लिए नियमित रूप से कॉमन कॉलेज एडमिशन पोर्टल तथा संस्थान के नोटिस बोर्ड का अवलोकन करने की सलाह दी गई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के गठक महाविद्यालय अंडमान लॉ कॉलेज में संचालित 5 वर्षीय एकीकृत BA LLB पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पहली काउंसलिंग 17 जुलाई को आयोजित की जाएगी। काउंसलिंग सुबह 10 बजे से प्रारंभ होगी, जबकि सभी पात्र अभ्यर्थियों को सुबह 9:30 बजे तक कॉलेज के सभागार में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। कॉलेज प्रशासन ने बताया है कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पात्र अभ्यर्थियों की अंतिम मेरिट सूची पहले ही कॉमन ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल फॉर कॉलेजेस तथा कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित कर दी गई है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान डॉलीगंज ITI बकुलतरा तथा ITI औरंग में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत संचालित विभिन्न ट्रेडों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों से निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन करने का आग्रह किया गया है। आवेदन प्रशासन के कॉमन कॉलेज एडमिशन पोर्टल के जरिए स्वीकार किए जाएंगे। प्रशासन ने सभी पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी का जलावतरण किया। कहा, भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। विश्व जनसंख्या दिवस पर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। ननकौड़ी के कमोटा बाजार में स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संचालन का शुभारंभ किया गया। और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत दक्षिण अंडमान को मॉडल जिला बनाने की दिशा में राज्य स्तरीय उद्घाटन कार्यशाला का आयोजित किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। समय संध्या के 7:15। अब एक नज़र आज के मौसम के मिजाज पर। कोलकाता स्थित मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जन सेवाओं और मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। कल सवेरे तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया गया है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश भागों में वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। ये था आज का मौसम का मिजाज। अब सुनिए जहाजरानी सेवा निदेशालय से मिली जानकारी के अनुसार जलियानों का यात्रा कार्यक्रम।

भी 12 टांग। परसों 13 जुलाई को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से माया बंदर होते हुए डिगलीपुर के लिए रवाना होगा और 14 जुलाई को सवेरे 7 बजे डिगलीपुर से रवाना होकर माया बंदर होते हुए श्री विजयपुरम की वापसी यात्रा करेगा। इन्हीं स्थानों के लिए एमवी रंगत 15 जुलाई को, एमवी रानीचंगा 17 जुलाई को सवेरे 7 बजे और एमवी भारत सीमा 18 जुलाई को रात्रि 8 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा। एमवी कालीघाट कल 12 जुलाई को सवेरे 8 बजे श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान के लिए प्रस्थान करेगा और कल ही रात्रि 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी भारत सीमा 15 जुलाई को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान होते हुए कार निकोबार की यात्रा करेगा और अगले दिन 16 जुलाई को शाम 4 बजे कार निकोबार से चलकर लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम पहुंचेगा। इन स्थानों के लिए एमवी कालीघाट की यात्रा होगी श्री विजयपुरम से 18 जुलाई को सवेरे 7

जी जलियान नालंदा 14 जुलाई को सवेरे 9 बजे श्री विजयपुरम से ननकौरी होते हुए कैमल बे की यात्रा करेगा और 16 जुलाई को सवेरे 8 बजे कैमल बे से चलकर ननकौरी होते हुए श्री विजयपुरम की वापसी करेगा।

एमवी स्टेट आइलैंड कल सवेरे 6 बजे श्रीविजयपुरम से स्वराजद्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा करेगा और कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से रवाना होकर इन्हीं रास्तों से होते हुए श्रीविजयपुरम लौटेगा। एमवी रंगत कल सवेरे 6:15 पर श्रीविजयपुरम से शहीद द्वीप के लिए प्रस्थान करेगा और कल ही सवेरे 8:30 पर शहीद द्वीप से श्रीविजयपुरम वापस लौटेगा। स्वराजद्वीप की यात्रा पर एमवी बाराटांग कल सवेरे 6:15 पर श्रीविजयपुरम से चलेगा और कल ही सवेरे 8:45 पर स्वराजद्वीप से श्रीविजयपुरम की वापसी करेगा। कल दिन के 11 बजे एमवी नॉर्थ पैसेज श्रीविजयपुरम से शहीद द्वीप के लिए रवाना होगा और कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराजद्वीप के लिए छूटेगा। स्वराजद्वीप से श्रीविजयपुरम के लिए जलयान की वापसी यात्रा होगी कल ही दोपहर बाद 2:30 पर। एमबी हडबी कल दिन के 11:30 पर श्रीविजयपुरम से स्वराजद्वीप की यात्रा करेगा और कल ही दोपहर बाद 2 बजे ये जलयान स्वराजद्वीप से शहीद द्वीप के लिए चलेगा। शहीद द्वीप से श्रीविजयपुरम के लिए इस जलयान की रवानगी होगी कल ही दोपहर बाद 3:30 पर। कल दोपहर बाद 2:30 पर एमवी कमोटा श्रीविजयपुरम से शहीद द्वीप की यात्रा करेगा और कल शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्रीविजयपुरम लौटेगा। स्वराजद्वीप के लिए एमवी रानी चंगा की रवानगी होगी कल शाम 5 बजे। जलयान श्रीविजयपुरम से चलेगा और अगले दिन 13 जुलाई को सवेरे 5:30 पर स्वराजद्वीप से चलकर शहीद द्वीप होते हुए श्रीविजयपुरम की वापसी करेगा। ये था जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। जन सूचनाएं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 हेतु नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP देश का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों 31 जुलाई 2026 तक की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को दिया जाता है। नामांकन एवं अनुशंसा केवल ऑनलाइन माध्यम से ही राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in पर भेजी जा सकती है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। गैर कानूनी कृत्यों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग सदैव तत्पर रहता है। ऐसी किसी भी गतिविधियों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग आम जनता से सहयोग की अपील की है। आम जनता द्वारा असामाजिक तत्वों द्वारा किए जा रहे गैर कानूनी कार्यों की गुप्त सूचना इन टेलीफोन नंबरों पर दी जा सकती है 112-03192-232100, 03192-233077 और 03192-232400। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। इसके साथ ही जन सूचनाएं समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का श्रीविजयपुरम केंद्र है। संध्या के 7:20 हुए हैं। सुनते हैं कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

प्रतियोगिता तथा संगीत आधारित कार्यक्रम शामिल हो सकते हैं। कार्यक्रम हिंदी में होगा और प्रत्येक एपिसोड की अवधि 14 या 28 मिनट तक होनी चाहिए। इच्छुक आवेदकों से अनुरोध है कि प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग नीति 2024 तथा उसके नवीनतम संशोधनों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। इस नीति में पात्रता, कार्यक्रम संबंधी दिशा निर्देश, अनुबंध की शर्तें, राजस्व साझेदारी, आकाशवाणी प्रसारण संहिता तथा वाणिज्यिक विज्ञापन संहिता के से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। पात्र आवेदक निर्धारित प्रपत्र में सभी आवश्यक विवरण एवं सहायक दस्तावेजों सहित अपना प्रस्ताव ईमेल hoo@prasarbharti.gov.in पर भेज सकते हैं। विस्तृत दिशा निर्देश एवं आवेदन प्रक्रिया के लिए प्रसार भारती तथा आकाशवाणी की आधिकारिक वेबसाइट prasarbharti.gov.in/nipp, akashvani.gov.in/files/nipp.pdf देखें। प्रस्ताव भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। यह सुनहरा अवसर ना चुके अपने रचनात्मक कार्यक्रमों को भारत के सार्वजनिक सेवा प्रसारण तक पहुंचाने के लिए आज ही अपना प्रस्ताव भेजें।

श्रोताओं, हम आपको बता दें, प्रसार भारती आकाशवाणी श्री विजयपुरम के लिए उच्च गुणवत्ता वाले रेडियो कार्यक्रमों के चयन हेतु कार्यक्रम प्रस्ताव आमंत्रण सूचना NIPP के अंतर्गत कार्यक्रम प्रस्ताव आमंत्रित करता है। प्रस्ताव इन तीन श्रेणियों में आमंत्रित किए गए हैं: राजस्व साझेदारी रेवेन्यू शेयरिंग मोड, प्रायोजित कार्यक्रम स्पॉन्सर प्रोग्राम मोड तथा निःशुल्क ग्रेटिस मोड। कार्यक्रमों में रेडियो नाटक, वृत्तचित्र, कहानी वाचन, ऑडियो श्रृंखला, नवाचारी ऑडियो प्रारूप, पॉडकास्ट, प्रश्नोत्तरी प्रति

0: आवाज़ें थी सुरेश वाडकर और आशा भोसले की, और फिल्म का नाम था दिल ने इकरार किया।
1: दिल को जरा मचलने
0: दो। इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 7:30 हुए हैं। सुनते हैं युवाणी कार्यक्रम।

नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, प्रकृति कभी शब्दों में नहीं बोलती, फिर भी वह हर पल हमें जीवन का सबसे गहरा ज्ञान देती है। एक छोटा सा बीज वर्षों तक मिट्टी में संघर्ष करता है, तब कहीं जाकर एक विशाल वृक्ष बनता है। यही

संदेश हमारे जीवन पर भी लागू होता है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तितली बनने से पहले एक इल्ली को कठिन परिवर्तन से गुजरना पड़ता है, इसलिए जीवन में आने वाली चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए। प्रकृति का हर रंग, हर ऋतु और हर परिवर्तन हमें यह विश्वास दिलाता है कि समय हमेशा बदलता है। इसलिए जीवन में धैर्य रखे, आशा बनाए रखे और प्रकृति की तरह हर परिस्थिति में खिलना सीखिए। जी दोस्तों, इसी विचार के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज का हमारा युववाणी कार्यक्रम। दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष आज के दिन यानी 11 जुलाई को मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य बढ़ती जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवार नियोजन तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। बढ़ती जनसंख्या का प्रभाव प्राकृतिक संसाधनों, रोजगार, आवास, जल, भोजन और स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ता है। इसलिए संतुलित जनसंख्या और जिम्मेदार नागरिकता समय की आवश्यकता है। इस दिन विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम, रैलियां, संगठनों और अभियान आयोजित किए जाते हैं ताकि लोग छोटे परिवार के महत्व और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रेरित हो। दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस हमें यह संदेश देता है कि जागरूकता, शिक्षा और सामूहिक प्रयासों से ही सत्य एवं समृद्ध भविष्य का निर्माण संभव है।

0: दोस्तों आज शनिवार है और आज के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम ऐसा भी होता है।
1: ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है।
0: दोस्तों दुनिया के वर्षावन पृथ्वी के कुल भूभाग का बहुत छोटा हिस्सा है, लेकिन इनमें दुनिया के आधे से अधिक वनस्पतियां और जीव जंतु पाए जाते हैं। ये जंगल वातावरण से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करके ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। यही कारण है कि इन्हें धरती के फेफड़े कहा जाता है। वर्षावन जलवायु को संतुलित रखने, वर्षा चक्र को बनाए रखने और लाखों जीवों को जीवन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि ये जंगल नष्ट होते हैं तो पूरी पृथ्वी का पर्यावरण गंभीर संकट में पड़ सकता है।

दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मधुमक्खियां केवल शहद ही नहीं बनाती, बल्कि वे दुनिया की लगभग एक तिहाई खाद्य फसलों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यदि मधुमक्खियां ना हो तो कई फल, सब्जियां और फूल उग नहीं पाएंगे। एक छोटी सी मधुमक्खी अपने जीवन काल में बहुत कम शहद बनाती है, लेकिन लाखों मधुमक्खियों का सामूहिक प्रयास हमें भरपूर भोजन और सुंदर प्रकृति प्रदान करता है। यह हमें सिखाता है कि छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़े परिणाम ला सकते हैं।

दोस्तों, बांस दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाले पौधों में से एक है। इसकी कुछ प्रजातियां एक ही दिन में लगभग 90 सेंटीमीटर तक बढ़ सकती है। इतना ही नहीं, बांस बहुत मजबूत, लचीला और पर्यावरण के लिए लाभकारी होता है। इससे घर, फर्नीचर, कागज, कपड़े और कई उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती है। बांस वातावरण में बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी अवशोषित करता है, इसलिए इसे भविष्य का ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है और यह टिकाऊ विकास का उत्कृष्ट उदाहरण है।

दोस्तों, जो पानी आज हम पी रहे हैं, संभव है कि करोड़ों वर्ष पहले वही पानी किसी नदी, समुद्र या हिमनद का हिस्सा रहा हो। सूर्य की गर्मी से पानी वाष्प बनकर ऊपर उठता है, बादल बनता है और फिर वर्षा के रूप में धरती पर लौट आता है। इस सत प्रक्रिया को जल चक्र कहते हैं। यही चक्र नदियों, झीलों, भूजल और खेती को जीवित रखता है। यदि हम जल स्रोतों को प्रदूषित करेंगे या पानी की बर्बादी करेंगे तो यह प्राकृतिक संतुलन प्रभावित होगा। इसलिए हर बूंद का संरक्षण हमारे भविष्य की सुरक्षा है।

दोस्तों, इसी प्यारे गीत के साथ समाप्त होता है आज का हमारा युववाणी कार्यक्रम। दोस्तों, वादा करते हैं जल्द होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी इस दोस्त अनुप्रिया को। नमस्कार, शुभ रात्रि।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। आइए सुनते हैं चित्रपट कार्यक्रम संगीत।

अगला गीत लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी। अगला गीत सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

श्रोताओं, हम आपको बता दें, प्रसार भारती आकाशवाणी श्री विजयपुरम के लिए उच्च गुणवत्ता वाले रेडियो कार्यक्रमों के

0: चयन हेतु कार्यक्रम प्रस्ताव आमंत्रण सूचना NIPP के अंतर्गत कार्यक्रम प्रस्ताव आमंत्रित करता है। प्रस्ताव इन तीन श्रेणियों में आमंत्रित किए गए हैं: राजस्व साझेदारी रेवेन्यू शेयरिंग मोड, प्रायोजित कार्यक्रम स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम मोड तथा निःशुल्क ग्रैटिस मोड। कार्यक्रमों में रेडियो नाटक, वृत्तचित्र, कहानी वाचन, ऑडियो श्रृंखला, नवाचारी ऑडियो प्रारूप, पॉडकास्ट, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता तथा संगीत आधारित कार्यक्रम शामिल हो सकते हैं। कार्यक्रम हिंदी में होगा और प्रत्येक एपिसोड की अवधि 14 या 28 मिनट तक होनी चाहिए। इच्छुक आवेदकों से अनुरोध है कि प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग नीति 2024 तथा उसके नवीनतम संशोधनों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। इस नीति में पात्रता, कार्यक्रम संबंधी दिशा निर्देश, अनुबंध की शर्तें, राजस्व साझेदारी, आकाशवाणी प्रसारण संहिता तथा वाणिज्यिक विज्ञापन संहिता से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। पात्र आवेदक निर्धारित प्रपत्र में सभी आवश्यक विवरण एवं सहायक दस्तावेजों सहित अपना प्रस्ताव ईमेल hooairportblair@prasarbharti.gov.in पर भेज सकते हैं। विस्तृत दिशा निर्देश एवं आवेदन प्रक्रिया के लिए प्रसार भारती तथा आकाशवाणी की आधिकारिक वेबसाइट prasarbharti.gov.in/NIPP, akashvani.gov.in/files/NIPP.PDF देखें। प्रस्ताव भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। यह सुनहरा अवसर न चूकें, अपने रचनात्मक कार्यक्रमों को भारत के सार्वजनिक सेवा प्रसारक तक पहुंचाने के लिए आज ही अपना प्रस्ताव भेजें। और अब कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: Still stuck on old car? Switch to smarter fuel with more savings with Victoris SCNG. It's smarter because it gives an impressive 27.02 km per kg mileage and has underbody CNG tank, so you don't compromise on boot space. More savings because you get offers up to 50,000 on exchange of your old car. So hurry and book now. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. TNC apply.
2: They say some cars blend in, but what if yours always stand out? But what if yours always stood out? The Maruti Suzuki Fronx. Experience the thrill of the 1.0-liter turbo engine built for those who crave performance. Join over 4 lakh proud Fronx owners, starting at just Rs. 6.85 lakh. So, why follow when you can lead? Visit your nearest Nexa showroom today. Nexa.
0: अंतराल के बाद चित्रपट कार्यक्रम संगीत में सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश और साथियों की आवाज़ों में फिल्म 420 का गाना। शैलेंद्र की बोलों को संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

0: प्रेम धवन के गीत और रवि के संगीत में आप सुनिए एक फूल दो माली फिल्म का गीत। आवाजें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की।
1: पर

अब सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में कैफी आज़मी का लिखा गीत। संगीत दिया है हेमंत कुमार ने और फिल्म का नाम है अनुपमा।

इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। सुनते हैं रोजगार समाचार। अंडमान लोक निर्माण विभाग APWD में कार्यपालक अभियंता सिविल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल के 7 पदों को प्रतिनियुक्ति ISTC के आधार पर प्रारंभिक 2 वर्ष की अवधि के लिए भरने हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। वेतन लेवल 11 ग्रुप ए राजपत्रित और मंत्रालय नियुक्ति अनुबंध के आधार पर होगी। अभ्यर्थियों को इनमें से कोई एक शर्त को पूरी करनी होगी। मूल विभाग कैडर में सामान एनालॉग्स पद पर नियमित रूप से कार्यरत अधिकारी या पे मैट्रिक्स के लेवल 9 में नियमित नियुक्ति के बाद कम से कम 5 वर्ष की सेवा या पे मैट्रिक्स के लेवल 7 में नियमित नियुक्ति के बाद कम से कम 7 वर्ष की सेवा होनी चाहिए। अभ्यर्थियों को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स की पार्ट ए पार्ट बी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। अभ्यर्थियों को सिविल इंजीनियरिंग क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष या व्यावसायिक अनुभव होना चाहिए। प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि पर आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रारंभिक प्रतिनियुक्ति की अवधि 2 वर्ष होगी। अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में बायोडेटा 2 प्रतियों में विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट पिछले 5 वर्षों की APAR/ACR प्रतियां भी लगानी होंगी। अभ्यर्थी अपने आवेदन उप सचिव PWD अंडमान एवं निकोबार सचिवालय कक्ष संख्या 139 श्री विजयपुरम में 18 जुलाई तक जमा कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए अंडमान एवं निकोबार प्रशासन सचिवालय विभाग से संपर्क किया जा सकता है। रोजगार समाचार समाप्त हुआ और अब आइए

अभी आप कुछ गौरवगान सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब समाचारों और अन्य कार्यक्रमों के लिए हम आपको लिए चल रहे हैं दिल्ली केंद्र की ओर। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान। फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। और तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऐतिहासिक 2 दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह

0: भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूँ हम सफल होंगे।
0: मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
2: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसके अध्यक्ष होंगे। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फुक्वोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश से और 2 केरलम से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटकों, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। 17 यात्रियों और चालक दल के 4 सदस्यों सहित 21 लोगों को बचा लिया गया और अस्पतालों में भर्ती कराया गया। 2 जीवित बचे लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें गहन चिकित्सा देखभाल दी जा रही है। एक रिपोर्ट।
3: 32 भारतीय पर्यटकों और 4 चालक दल के सदस्यों को ले जा रही यह नाव होन में रूत नोगोई द्वीप से लगभग 400 मीटर दूर पलट गई, जिसके बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। कुछ घंटे पहले हुई इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं प्रभावित परिवारों को जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए हो ची मिन्ह सिटी स्थित भारतीय दूतावास में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। यहां 8436907930849155237141 और 8433452414 नंबरों से संपर्क किया जा सकता है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई इस दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने राष्ट्र निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका का उल्लेख किया और कहा कि वे आधुनिक शिक्षा के साथ साथ जन समुदाय में देश की संस्कृति और ज्ञान के प्रसार का सशक्त माध्यम हैं। एक रिपोर्ट।
4: केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय में 32,000 से अधिक पुस्तकों का संग्रह है। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय में शोधकर्ताओं के लिए समर्पित सुविधाएं, एक आधुनिक बहुउद्देशीय सभागार, समकालीन पाठन क्षेत्र, बाल क्षेत्र, एक शोध केंद्र और 1 करोड़ ऑनलाइन पुस्तकों तक पहुंच प्रदान करने वाला एक ई पुस्तकालय मौजूद है। पुस्तकालय में हर स्थान पर मुफ्त वाईफाई उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि कई मॉनिटर भी लगाए गए हैं, जिससे आगंतुक अध्ययन के दौरान नोट्स ले सकते हैं, सामग्री डाउनलोड कर सकते हैं तथा अपने विचारों को और विकसित कर सकते हैं। पुस्तकालय अत्याधुनिक

0: RFID आधारित पुस्तक प्रबंधन प्रणाली से सुसज्जित है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ने देश भर में 2 लाख से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। नई दिल्ली में आज विशेष कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये उपलब्धि भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए मजबूत आधार है। श्री पासवान ने योजना के तहत मिलने वाली सीड कैपिटल की सहायता का भी उल्लेख किया। इसके माध्यम से 4,18,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की मदद की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय है मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व जनसंख्या दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सर्वोत्तम पद्धतियों पर मासिक वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्वास्थ्य सेवा नवाचारों को साझा करना और उनका विस्तार करना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 भी अपनाई गई।
2: ट्रांसपोर्ट सेक्टर में विशेष रूप से हमारी रोड सेक्टर, रेलवे, जलमार्ग और एविएशन, एक क्षेत्र में कार्बन न्यूट्रल हम कैसे बने, अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल का भी उपयोग कैसे करें और प्रदूषण से तो मुक्ति मिलेगी भी और उसके साथ साथ जो नई नई टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, रिसर्च है, अलग अलग ब्रिक्स देशों में एक दूसरे में कैसे कोऑपरेशन करें, कोऑर्डिनेशन निर्माण करें, इसके बारे में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है और उसमें आगे की नीति भी तय हुई है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इन इलाकों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा शामिल हैं। इस बीच विभाग ने कल असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम और बिहार में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिनों में बारिश वाले इलाकों के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश में कल लू की स्थिति हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के फिर से सक्रिय होने के बाद महाराष्ट्र में खरीफ फसल की बुआई में तेजी आई है। कृषि आयुक्त कार्यालय के अनुसार 6.51 हेक्टेयर पर बुआई पूरी हो चुकी है। इस बुवाई में 7 जुलाई तक गन्ने को छोड़कर राज्य के 14.44 करोड़ हेक्टेयर औसत क्षेत्र के 45% हिस्से को सम्मिलित किया गया है। गन्ने की खेती सहित 6.58 करोड़ हेक्टेयर में बुवाई और रोपाई का काम पूरा हो चुका है। ये कुल क्षेत्र का 42% है। तूफान बावी के चीन के पूर्वी तट की ओर बढ़ने के कारण चीन में एहतियातन 6 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ये तूफान जापान के साकिशिमा द्वीपों और उत्तरी ताइवान से गुजरने के बाद अब चीन के लिए खतरा बना हुआ है। मेघालय अनानास महोत्सव 2026 का चौथा संस्करण नई दिल्ली के दिल्ली हाट में

0: शुरू हो गया है। इसमें बाजार संपर्क को बढ़ावा देने के लिए राज्य के अनानास उत्पादकों को प्रदर्शित किया जा रहा है। और अब खेल खबरें। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। फ्रांस और स्पेन पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रीतिका प्रदीप और चिकिता तनिपार्थी की टुकड़ी ने आज तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में रजत पदक अपने नाम किया। टीम को महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा के फाइनल में कोलंबिया से हार का सामना करना पड़ा। वहीं प्रीतिका प्रदीप ने व्यक्तिगत महिला कंपाउंड में कांस्य पदक जीता। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में चेकिया की कैरोलिना मुखोवा और लिंडा नोस्कोवा आमने सामने हैं। वहीं पुरुष डबल्स के फाइनल में ब्रिटेन के हेनरी पैटन और फिनलैंड के हैरी हेलियावारा ने क्रोएशिया के मटे पाविक और अल साल्वाडोर के मार्सेलो अरेवालो की जोड़ी को 7-6, 7-6 से हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया है। भारत ने इंग्लैंड के साथ 5 T20 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला साउथहैम्पटन में जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 16 ओवर में एक विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर रखी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मैच लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेला जा रहा है। दूसरे दिन आज भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताज़ा समाचार मिलने तक बिना विकेट गवाए 42 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की पहली पारी 170 रन पर सिमट गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi departs for home after concluding landmark New Zealand visit. Says bilateral trade agreement between two countries will accelerate India's journey towards a developed nation. 15 Indians killed in a boat mishap in Vietnam. President, Vice President and Prime Minister express condolence. West Bengal government forms 9-member committee headed by a retired judge to examine draft bill of uniform civil code. Legendary singer S. Janki, known as Nightingale of South India, passes away. IMD forecasts heavy rainfall across northern and eastern parts of the country for next 4 to 5 days. In FIFA World Cup, Norway to take on England, while defending champions Argentina to clash with Switzerland in quarterfinals. And Indian women's compound team clinches silver medal at Archery World Cup Stage 4 in Madrid. Prime Minister Narendra Modi has concluded his historic 2-day visit to New Zealand and departed for India. The visit, the first by an Indian Prime Minister to New Zealand in over 4 decades, gave a major boost to bilateral ties. During the visit, Prime Minister Modi held talks with his New Zealand counterpart Christopher Luxon. The two leaders witnessed the exchange of 5 memoranda of understanding in areas including defence, tourism, sports, disaster management and dairy and animal husbandry. A major highlight of the visit was the community event at Auckland's Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Addressing the gathering, Mr. Modi stated that the future of India and New Zealand is intertwined and the bilateral trade agreement will accelerate India's journey towards a developed nation.
2: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी हैं, वैल्यूज भी

नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। वर्षा भारत के लिए केवल एक ऋतु नहीं बल्कि नवजीवन का उत्सव है। बादलों का आगमन, धरती की सोंधी गंध, खेतों की हरियाली और लोकगीतों की स्वर लहरियां, ये सब मिलकर हमारी सांस्कृतिक स्मृति का हिस्सा बनते हैं। भारतीय मनीषा ने जल को सदैव जीवन का मूल माना है। ऋग्वेद का ये मंत्र कहता है, आपो हिष्ठा मयो भुवा, यानी जल ही सुख, समृद्धि और कल्याण का स्रोत है। यही कारण है कि भारत ने जल का केवल उपयोग नहीं किया, उसका सम्मान भी किया। कहीं बावड़ियां बनी, कहीं तालाब, कहीं कुंड, तो कहीं मंदिरों के सरोवर। वर्षा की हर बूंद को संजोना हमारी जीवन पद्धति का एक हिस्सा ही था। आज परिस्थितियां थोड़ी बदल रही हैं, या कहना चाहिए बदल चुकी हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा का स्वरूप भी बदला। कहीं अतिवृष्टि, कहीं अल्पवृष्टि और कई क्षेत्रों में लगातार गिरता भूजल स्तर, ये संकेत हमें सचेत करते हैं कि जल संरक्षण अब विकल्प नहीं, आवश्यकता है। इसी सोच को जन भागीदारी का स्वरूप देने के उद्देश्य से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर कैच द रेन अभियान प्रारंभ किया गया। इसका संदेश है, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, यानी जहां भी वर्षा हो, जब भी वर्षा हो, उसकी प्रत्येक बूंद को सहेजिए। प्रधानमंत्री ने मन की बात के अनेक संस्करणों में भी जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आग्रह किया है। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में तालाबों के पुनर्जीवन, वर्षा जल संचयन और सामुदायिक प्रयासों के प्रेरक उदाहरणों का उल्लेख करते हुए कहा है कि जल संरक्षण तभी सफल होगा जब ये शासन का नहीं, समाज का संकल्प बने। ये अभियान वस्तुतः आधुनिक भारत को उसकी ही प्राचीन जल संस्कृति से जोड़ने का

एक अद्भुत प्रयास है। बारिश की हर बूंद प्रकृति का उपहार है। उसे सहेजना केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति के उस मूल भाव का सम्मान भी है, जो हमें सिखाता है कि प्रकृति से जितना लें, उतना उसे लौटाएं भी। प्रकृति के प्रति श्रद्धा भारतीय संस्कृति को उसकी अनोखी अनूठी पहचान देती है। यही सांस्कृतिक चेतना हमारे पर्वों में भी दिखाई देती है, हमारे उत्सवों में भी दिखाई देती है, जहां आस्था और लोक जीवन एकाकार हो जाते हैं। इसी क्रम में पुरी की विश्व विख्यात श्री जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक समावेशिता, लोक आस्था और शिल्प परंपरा का एक अद्भुत उत्सव है। और इसी पर केंद्रित है हमारी अगली प्रस्तुति नित्य नीलाचल।

0: जैसा शरीर वैसा देह, अर्थात शरीर के लिए जो आवश्यक है देह पूजन भी उसी विधि के अनुसार होना चाहिए। इस भावपूर्ण विचारधारा का प्रतीक है उड़ीसा के पुरी में अनुष्ठित हो रही यह नव दिनात्मक यात्रा। भक्त और भगवान के बीच सारे व्यवधान को तोड़कर प्रभु बलभद्र, देवी सुभद्रा और प्रभु श्री जगन्नाथ रथारूढ़ होकर रत्नवेदी को छोड़कर पुरी बड़दांड में यात्रा करते हैं। श्री गुंडीचा मंदिर में 7 दिन रहकर बाहुड़ा यात्रा में भाई बहन श्री मंदिर को वापस आते हैं। यह यात्रा भाव की यात्रा है, समन्वय की यात्रा है। कठोपनिषद में कहा गया है, आत्मानम रथिनम विधि शरीरम रथमेवतु। रथ यात्रा की महानता के बारे में गवेषक अशोक पांडे कहते हैं,
1: भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को बड़े आकार में अनुष्ठित होती है। प्रत्येक वर्ष सरस्वती पूजा यानी वसंत पंचमी से काष्ट संग्रह का कार्य शुरू होता है। रथ निर्माण में लगभग 205 प्रकार की सेवाएं कार्य करते हैं।
0: साल में एक बार अनुष्ठित इस रथ यात्रा की प्रस्तुति बहुत पहले से होती है। श्रीनगर के सम्मुख स्थित रथ खला में पवित्र अक्षय तृतीया से ही रथ का कार्य आरंभ हो जाता है। इसमें विश्वकर्मा महाराणा, रूपकार, चित्रकार, भोई सेवक, करतिया सेवक, ताम्र विशोई, ओझा महाराणा और अन्य सेवक हिस्सा लेते हैं। रथ निर्माण के परंपरा के ऊपर प्रकाश डालते हुए पुरी के मुख्य विश्वकर्मा सेवक विजय कुमार महापात्रा जी का कहना है,
2: मैं नंदीघोष रथ का मुख्य महाराणा सेवक हूँ। 1971 से हम एक कार्य कर रहा हूँ। भगवान जी जो रथ का काम होता है ना, ये हर साल बैसाख महीने अक्षय तृतीया तिथि से शुरू होता है और आषाढ़ श्री गुंडीचा के पहला दिन नेत्रोत्सव के दिन समाप्त हो जाता है। तीनों रथ में सबसे प्रथम का लकड़ी है फांसी। फांसी का लकड़ी इस्तेमाल किया जाता है। फांसी, इसके बाद ढोरा और एक लकड़ी है, इसका नाम है असन। फांसी, ढोरा, असन की लकड़ी में ये तीनों रथ निर्माण किया जाता है और मही सिमली का लकड़ी में ये निर्माण किया जाता है। हमारा विश्वकर्मा के साथ सहयोग करने के लिए अर्थात लकड़ी को उठाने के लिए भोई सेवक है। इसके बाद लोहे का काम करने के लिए कमार सेवक है और चित्र का काम करने के लिए चित्रकार सेवक है, रूपकार सेवक है, लकड़ी में रूप देता है। महाराणा, भोई, कमार, रूपकार, चित्रकार सेवक के द्वारा यह रथ का कार्य संपन्न होता है। अक्षय तृतीया तिथि से जब भगवान जगन्नाथ जी का रथ का कार्य शुरू दिया जाता है, इसके बाद रथ का काम शुरू होता है। इसके बाद ये जो नृसिंह चतुर्दशी तिथि आता है और एक काम जोड़ दिया जाता है, इसका नाम है गुज्जर। जगन्नाथ जी का चंदन यात्रा होता है ना अक्षय तृतीया तिथि से, जो भौर तिथि आएगा चंदन यात्रा के आखिरी दिन, आखिरी दिन में दोनों पहियों में एक अक्ष संयोग किया जाता है प्रभु के आज्ञा मार आने से बाद। हर कार्य यहाँ पर प्रभु के आज्ञा से होता है। अक्षय तृतीया तिथि से प्रभु आज्ञा देता है, मेरा रथ को शुभारंभ करो। इसके बाद रथ का कार्य शुभ किया जाता है। भौरी तिथि में प्रभु आज्ञा

0: देंगे, मैं रथ को खड़ा करो। इसके बाद दोनों पहिया में एक हक संजोग किया जाता है। नेत्रोत्सव तिथि से प्रभु आज्ञा देंगे, मेरा रथ को मेरे दरवाजे पर लाओ। आज्ञा माल आने से बाद खींच के ले जाएंगे प्रभु दरवाजे के पर। जगन्नाथ जी का रथ सबसे बड़ा है और बलभद्र जी का रथ जरा छोटा है। सुभद्रा माई का रथ सबसे छोटा है। जगन्नाथ जी का रथ में 16 पहिया लगता है, बलभद्र जी का रथ में 14 पहिया लगता है और सुभद्रा माई का रथ में 12 पहिया लगता है। इस तीनों रथ ऐसे बना जाता है और कोई जगह में इसी तरह रथ नहीं बना जाता है।
1: श्री क्षेत्र धाम में भक्त के साथ भगवान के अपूर्व मिलन के दो मुख्य यात्राएं होती हैं। पहला स्नान यात्रा, दूसरा गुंडीचा यात्रा। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मंदिर के स्वर्ण कुएं से 108 घड़े जल से श्री बलभद्र, देवी सुभद्रा, श्री जगन्नाथ और श्री सुदर्शन को स्नान कराया जाता है। इस दिन प्रभु श्री जगन्नाथ गजानन वेश धारण करते हैं। आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा से तीनों ठाकुर अणसर घर में रहते हैं। इस समय अणसर घर की पट्टी में तीनों ठाकुरों की एक चित्रपट की पूजा की जाती है। इसे पट्टदिया कहते हैं। दैतापति सेवक हलधर दास महापात्र के अनुसार,
2: मैं हूँ हलधर दास महापात्र, बलभद्र जी का 12 ग्रही दैतापति हूँ। प्रभु स्नान का बाद में अंदर जाते हैं, हमारा सेवा शुरू होता है। श्रृंगार करते हैं, वेश करते हैं। रात को समय भगवान अनसर पिंडी को चल जाते हैं। ये सेवा हमारा अमावस्या तक सेवा होता है। ये सेवा 15 दिन में चलते हैं। यहाँ अनसर का घर में शुक्ल वस्त्र परिधान होगा और शुक्ल फूल लगी होगा। एकादश का दिन महाप्रभु जी की रंगीन परिधान होगा। आयुर्वेदिक तो पथी पांचन होता है, आम, केला, पनस, सपुरी, सपटा, ये 5 प्रकार फल भोग होता है। पथी होता है मूंग और नारियल का कोरा, जल, लवंग, जायफल दे के, चंदन दे के इसको पानी खिलाते हैं और पान भी खिलाते हैं। जितना शब्द होता है कीर्तन का, भजन का, जो बाजा सब गाना होता है मंदिर का अंदर में कुछ चलेगा। सुस्त होने के बाद में रथ यात्रा होगा, द्वितीया तिथि में रथ का ऊपर जाएगा।
1: अणसर खत्म होने के बाद प्रभु आरोग्य लाभ करते हैं। साधारण मनुष्य के जीवन में जो घटित होता है वही श्री मंदिर में भी होता है। अणसर के बाद नेत्रोत्सव, उसके बाद रथ यात्रा। ताल ध्वज, देव दलन और नंदी घोष तीनों रथ सुशोभित होकर सिंह द्वार के सम्मुख प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं। धाड़ी पहंडी में कब आएंगी चतुर्धा मूर्ति?
3: रथ खला से तीनों ही रथ सज धज करके तैयार करके लाए जाते हैं और श्री मंदिर के महाद्वार के ठीक सामने उत्तर दिशा की तरफ मोड़ करके खड़ा कर दिया जाता है। ऐसे में भगवान जगन्नाथ अपने रत्न वेदी का त्याग करके बाहर निकलते हैं और पहंडी विजय करते निष्कलानंद सरस्वती महाराज अपने परिकरों के साथ तीनों ही रथों का वे अवलोकन करते हैं और रथों पर जाकर के अपना आत्मनिवेदन चतुर्धा देव विग्रहों को देते हैं। उनके वापस आने के बाद सीधे श्री नाहर से पुरी के गजपति महाराज भगवान जगन्नाथ के प्रथम सेवक तीनों ही रथों पर वे सोने के मुठ वाले झाड़ू से छेरा पोरा करते हैं और इस तरह से भगवान जगन्नाथ जब जाते हैं अपने गुंडीचा घर में जाकर वहां 7 दिन तक विश्राम करते हैं, उसको गुंडीचा महोत्सव कहते हैं।

रथ यात्रा की समाप्ति बाहुड़ा यात्रा में होती है। यात्रा तो समाप्त हो जाती है, पर प्रभु की अनंत लीला श्री मंदिर के रत्न सिंहासन में चलती रहती है। श्री मंदिर के शिखर पर पतित पावन की ध्वजा लहराती रहती है। उसी ध्वजा में सारे विश्वास का समन्वय होता है। ऐसा लगता है जैसे सबकी सांसें तरंगित हो रही है महोदधि में। और कभी इस दृश्य को शब्दबद्ध करते हुए भाव विभोर होके गाने लगते हैं।

0: हैं। देखो ये नित्य नीलाचल सभी तीर्थों का संगम स्थल, देखो ये नित्य नीलाचल सभी तीर्थों का संगम स्थल।
1: ये था लघु रूपक नित्य नीलाचल। मूल उड़िया आलेख तरुण कांति राउत का था, जिसका हिंदी अनुवाद किया डॉक्टर रश्मि रेखा जिना ने। वाचन और प्रस्तुति थी प्रज्ञा पारमिता साहू की। आकाशवाणी कटक से। भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक सुंदर पक्ष ये भी है कि यहाँ ऋतुएं केवल मौसम नहीं बदलती, बल्कि अपने साथ स्वाद, रंग और उत्सव भी लेकर आती हैं। इसी स्वाद और विरासत की एक अनूठी झलक मिलती है दिल्ली में हर साल आयोजित आम महोत्सव में। यहाँ देश के अलग अलग राज्यों से लाई गई सैकड़ों किस्मों के आम न केवल प्रदर्शित किए जाते हैं, बल्कि भारतीय बागवानी, कृषि अनुसंधान और फल संस्कृति की समृद्ध परंपरा का भी परिचय कराते हैं। पत्रिका में हमारी अगली प्रस्तुति है इसी आयोजन पर। ये आम कुछ खास है।
2: मैं डॉक्टर ए के सिंह, एक्स प्रिंसिपल साइंटिस्ट, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और मैंगो के विषय में आपको ये बताना चाहूंगा कि आम महोत्सव जो हमारा करने का जो उद्देश्य होता है, वो होता है कि हम पूरे कंट्री से सभी जगहों पे एक दूसरे को एक मिठास के रूप में ये परिचित करा सके। और चूंकि एक आम ऐसा फसल है जो कि ट्रॉपिकल से लेके सब ट्रॉपिकल रीजन, माने उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, हर जगह उगाया जाता है। केवल अंतर ये होता है कि हर जगह की जलवायु में प्रजाति विशेष का विशेष महत्व होता है, और उस सूक्ष्म जलवायु में जो क्षेत्र विशेष का होता है उसमें आम का स्वाद अलग ही होता है। तो हमारा उद्देश्य होता है कि हर क्षेत्र के आम यहाँ पे आए और वो अपनी मिठास पूरी जनता के बीच में ले जाए, और जनता सभी प्रजातियों के बारे में जान सके कि उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक कौन सी प्रजातियां उगाई जाती हैं। इस बार देखिए वैसे तो आए थे 20 पार्टिसिपेंट्स ऐसे आए थे जो ग्रोवर्स थे, और 6 पार्टिसिपेंट्स ऐसे आए थे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थे। और वो हमने कवर किया था उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, तो 5-6 स्टेट ही हमने पूरा कम्प्लीट कवर किया।
3: निपेन्द्र विक्रम सिंह प्रधान वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से। हमारे पास हमारे संस्थान से विगत 15 वर्षों में लगभग 10 संकर किस्में विकसित की गई हैं आम की। पूसा सूर्या है, पूसा अरुणिमा, पूसा सूर्या एक सिलेक्शन है, बाकी सारी संकर किस्में हैं। अरुणिमा है, आपका प्रतिभा है, श्रेष्ठ है, पीताम्बर है, लालिमा है, अभी रिसेंटली हमने दीपशिखा भी रिलीज की है। मोस्टली अम्रपाली और संचेषण के संकरण से बना है, पर कुछ किस्में जिसमें दशहरी और लाल सिंदूरी भी सम्मिलित। जैसा आप सभी देखते हैं ऐसे आम महोत्सव यहाँ चल रहा है, और आम के नाम पे देखिए दिल्ली की जगह में कितने लोग, कितनी भीड़ यहाँ उमड़ी। आम केवल एक फल नहीं है, आम एक इमोशनल कनेक्शन है लोगों का। जैसे आप यूपी की बात कर लें तो वहाँ दशहरी है, आप वेस्ट बंगाल की बात कर लें वहाँ मालदा बहुत फेमस है, बिहार में जरदालू है, किशनभोग है, आप साउथ में चले जाए, आंध्रा में चले जाए तो वहाँ बैगना पल्ली है, महाराष्ट्र में चले जाए तो अल्फांसो है, गुजरात में केसर है। तो ऐसे ही विभिन्न किस्में हैं जो मिठास अपने स्वाद से लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है।
4: मेरा नाम भरतराज सिंह यादव है, मैं एमपी कठियाड़ा से आया हूँ। ये साइज में सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा आम है, और ये हमारे कठियाड़ा में होता है, हमारे गांव में। और भी बहुत सारी वैरायटीज है, लेकिन हमारे सीजन अभी खत्म हो चुका है तो हम लोग इतनी लेके आए।
5: मेरा नाम रामकिशोर मौर्या है, मैं मलिहाबाद लखनऊ से हूँ। हमारे यहाँ अनेक प्रकार की प्रजातियों के आम पाए जाते हैं, जिनको लोग जानते नहीं, इसलिए दिखाने के लिए कि लोग जाने पहचाने। हम अकेले 250 वैरायटी यहाँ आम की वैरायटी प्रस्तुत किए, जिसमें खट्टे मीठे हैं, और कुछ चूस कर खाने वाले हैं, कुछ काट के खाने वाले हैं, कुछ अचार की वैरायटियाँ विशेष कर, जो कि सभी प्रजातियों का अपना एक अनूठा स्वाद है, ताकि इन लोगों को मार्केट में जहाँ भी दिखे उनका स्वाद ले और खाए, तभी उसके बाद हमारे किसान की आमदनी बढ़ेगी। जो हमारी पुरानी, हमारे पैतृक वैरायटियाँ है वो जीवित रहने, अन्यथा विलुप्त हो जाएंगी।
6: मैं कदीम चंदन नर्सरी मलिहाबाद लखनऊ से आया हुआ हूँ। मेरा नाम शेख शादाब अली है। मेरा पुरखों से काम चला आ रहा है नर्सरी का, जो अलग अलग वैरायटी को डेवलपमेंट करते हैं, तैयार करते हैं, पौधे नए नए निकालते हैं। हमारे पास तमाम सी वैरायटी हैं, सुरखा बर्मा है, गुलाब खास है।

0: दशहरी है, रामखेला है, चन्नत पसंद है, साजिद पसंद है, बनारसी है, रस कपूर है, तमाम सी वैरायटी, इतनी वैरायटी है कि यहाँ पे आपको हम गिनाते हुए थक जाएंगे। अदर की तमाम सी ऐसी वैरायटी है जो आप एक दूसरे को मिलाती है, उसकी मिठास इतनी मिठास होती है जो दिल को खुश कर देती है और दिलों में मोहब्बत पैदा कर देती है। जो भी आम खाते हैं और दिल से हमको दुआएं देके जाती
1: है। ये आम कुछ खास है। दिल्ली के वार्षिक आम महोत्सव के बहाने भारत की फल समृद्धि, कृषि परंपरा और विविधता की रोचक यात्रा अभी आपने सुनी। सहयोग श्रीनाथ दीक्षित का था। भारत की सांस्कृतिक धरोहर केवल परंपराओं से नहीं, उन कलाकारों से भी समृद्ध होती है जो अपनी साधना से लोक और शास्त्र के बीच एक सेतु बन जाते हैं और देह के परे जाकर समय पर अपने हस्ताक्षर अंकित कर देते हैं। दुख की बात यह है कि बीते कुछ समय में ऐसी ही दो विशिष्ट विभूतियों ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। सबसे पहले बात लोक गाथा की विश्व यात्री पद्म विभूषण तीजन बाई की। छत्तीसगढ़ की लोक गाथा पंडवानी को गांव की चौपाल से अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाने वाली तीजन बाई ने अपने सशक्त गायन, प्रभावशाली अभिनय और अद्भुत कथन शैली से लोक कला को नई पहचान दिलाई। उन्होंने परंपरागत सीमाओं को तोड़ते हुए पंडवानी की कपालिक शैली को अपनाया और अपनी अनूठी प्रस्तुति के माध्यम से भारतीय लोक नाट्य को विश्वव्यापी सम्मान दिलाया। उनके स्वरों में लोक जीवन की मिट्टी, महाभारत की कथा और भारतीय लोक संस्कृति की आत्मा एक साथ सुनाई देती है। सुनते हैं तीजन बाई से आकाशवाणी रायपुर के लिए रिकॉर्ड किया गया उनका एक पुराना साक्षात्कार।

पाटा नटारी ये थे हमारे ध्रुव उहे के जन्म में मोर कुछ दिन हमन अटारी में रहें फिर हमला छोटपन में पकड़ के गनियारी में ले इस वहाँ हमार लालन पालन हुई हमार माँ के नाम सुखबती और पिताजी के नाम छनुक लाल रही से छह भाई बहनी रहे हैं दो भाई चार बहनी गरीब होने के नाता ऐसे गुजारा बहुत दिन ले चलत रही से अब जब मैं बड़े लड़की हूँ तो संज्ञान हो गए तो लोग लेके ला छोड़ के चल देवे भाई बहनी मन के पूरा देखभाल ला मैं करा हमन छयो भाई बहनी में कोनो पढ़े लिखे नहीं है हमार दाई है बांस गीत गावे और हमार बाबू बांस बजावे माँ के साथ गुनगुनाए के जो आदत पड़ीस तो ऐसे पड़ीस कि वो एकदम लट लग गए लट लगे तो मैं करमा ददरिया सुआ पड़की बांस गीत गा लेत रही हूँ माँ गावे है और

आया जनकारे राम राम अहो लाला सोला चेली के झूमी जाए हो। बाटी भौरा भी अब्बड़ खेलत रहे हूँ, कबड्डी खेलत रहे हूँ, सुर खेलत रहे हूँ, खो खो खेलत रहे हूँ। तो रास्ता में मोर नाना के घर पड़त रही से, छोटे नाना के धनियारी गांव में, तो छोटे से नौकर झोपड़ा रही से, ते में भीतर में बैठ के पंडवानी के गायन गात रही से। बिजलाल पारधी मोर नाना जी के नाम, और वो ऐसे टेर लगाईस द्रौपदी बन के श्री कृष्ण जिला, तो वो आवाज सुने के बाद तो मोर रोम रोम एकदम खड़ा हो गई। अरे बाप रे, हाथ कतेक सुंदर एक आवाज, और कतेक बढ़िया भगवान ल पुकारत है। अब ये लोग मन हा बिजलाल नाम रही से, पर भगवान के नाम जपे ना तो ओला जपरी कहा भी। 11-13 के लगभग में रही हूँ मैं, तो ये बच्चा कतेक सुंदर एक दिल में लगाव है। तो सुने पर आते की के वो छोटे से चटाई निकाली, सो कथे में बैठ बेटा, इमें बैठ। आ कतका कन सुने ऐसे की कही, तो एक हफ्ता के जतका कहानी सुनाए रही से नहीं, तेला 5-10 मिनट में खत्म कर दियो। तो नाना के आंखी में आंसू आ गए। उसी समय वो बोली कि बेटा, मोर घर में हीरा है हे प्रभु, और मैं नहीं परखे सकी हूँ इसे की। आज भी गुंजा थे टेर के आधार पे ही मैं टेर लगा था जब पंडवानी गाता हूँ। तो

गदगद कर दी थी। ऐसे लग जाते कि हम धरती में नहीं कि स्वर्ग में हनका ऐसे लागते, मोर मन लागते भाई। जब अच्छा कथा में हम डूब के उन मन ला सुनाथन और उन मन कोई कोई जगह रोए धोए की बात है, वो मन रोना शुरू कर देते, हम उसका सम्मान पाके अपन आप ला हम पूरा उकरे ऊपर अर्पण कर देते हैं। ते हमला कई कौन सी मिट्टी बना के हमला भेजी, घर से हमला सब लोग ले सम्मान और प्यार मिला थे, ये में अब बड़ा आनंद आते, आज भी वही है, आगे बढ़ मालिक के हाथ।

0: मैं तो एक तो नारी हूँ है ना, और नारी के पात्र कहे माँ मोला कोई कष्ट नहीं पड़े और आनंद आते ज्यादा, पर जब भीम के रोल करता हूँ तब दो गुना आनंद आते। मैं अपन आप लग, मैं भीम समझे लग जाता हूँ कि मैं ही भीम हूँ, कि वो की जोशीला गदा पकड़ के रिंग था, तेकर कारण वही है कि मैं सचमुच में वो समय मैं भीम की रोल नहीं करके मैं खुद भीम हूँ, ऐसे अनुभव लागते। चाहते हो तो मैं पंडवानी ला आजकल के आधुनिक युग में आधुनिक रूप से काम कर सकत रहे हूँ, ओला इतनी बहका सकत रहे हूँ, वो मैं अच्छा अच्छा रोचक डाल सकत रहे हूँ, पर वो रोचक डाले में वो चीज नहीं दिखती, वो तो बर्बाद हो जाती ना, फिर नाम कहाँ होती। तो ये चीज बचाए के खाती हमला सब जने जुल मिल के अपन संस्कृति ला अच्छा सजा के रखे माँ, हम अल्ला फायदा है, हमारे आने वाले पीढ़ी में अल्ला फायदा है, सिखाए में जो आनंद आते मैं अब कुछ मुला अच्छा नहीं लगे। कतको लेकर रोते रोवत रोवत गाते आ तो बोले भूर यारो बोल चुचकारो ये गाडर ही ते गाडर भी बेटा बहुत सुंदर गाले था, बोले बढ़ावा भी दो, तो ये में बड़ा आनंद आते मने गुरु बन के काम करो। तो आपके समय में मुला बहुत है अच्छा लागते, लेकिन मल्ला सिखा के दे दो।
1: तपी करत मैं धुरुला भेटे हूँ और नरसिंह ला भेटे हूँ खंभा माँ, भूर बिनत सौरी ला भेटे हूँ क्यों टल भेटे हूँ गंगा माँ।
2: और अब स्मरण करते हैं भारतीय रंगमंच की एक महान विभूति विजया मेहता का। विजया मेहता आधुनिक भारतीय रंगमंच की उन अग्रणी निर्देशकों में थी जिन्होंने मराठी रंगभूमि को नई सौंदर्य दृष्टि, प्रयोगशीलता और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। उन्होंने शास्त्रीय और आधुनिक रंग भाषा के बीच एक सशक्त सेतु बनाया। अभिनय, निर्देशन, रंग प्रशिक्षण और नाट्य चिंतन, हर क्षेत्र में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा। उनके व्यक्तित्व और योगदान पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं सुप्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक अमोल पालेकर।
3: विजया जी एक ऐसी अभिनेत्री थी जिसे दिग्गज कहना भी कम होगा। एक छोटी सी बात मैं कह दूं कि विजया जी के बाद जितनी भी अभिनेत्रियां मराठी स्टेज पे आई और बड़ी अच्छी अभिनेत्री, उन सब पे और जिन्होंने विजया जी के साथ काम किया था उन सब पे विजया जी के अभिनय की छाप इतनी जबरदस्त थी कि ये कौन से स्कूल से आई है ये बताने की जरूरत नहीं रहती थी। मतलब उनके करियर के शुरुआत से आखिर तक उन्होंने एक ऐसी छाप छोड़ दी मराठी रंगमंच पर कि जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकता। रंगायन जैसी संस्था का उन्होंने निर्माण किया और अलग अलग प्रायोगिक नाटक उन्होंने पेश करना शुरू किया। उन्होंने एक अपना प्रेक्षक वर्ग बनाया जो बढ़ते गया। और विजया जी के बारे में एक बात कहना बहुत जरूरी है और समझना, विजया जी ने उनकी शुरुआत प्रायोगिक रंगमंच से की लेकिन वहां से वो मेन स्ट्रीम रंगमंच पर चली गई और मेन स्ट्रीम रंगमंच पर उन्होंने अभिनय भी किया और निर्देशन बहुत ज्यादा किया। सवाल उठाना, अलग किस्म के नाटक पेश करना, नए नए नाटककार पेश करना, ये सारा योगदान विजया जी ने बड़े काबिलियत के साथ किया।

भारतीय लोक कला और रंगमंच की ये दोनों विलक्षण साधिकाएं अपने अपने क्षेत्र में सृजन, समर्पण और सांस्कृतिक प्रतिबद्धता की ऐसी विरासत छोड़ गई हैं जो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। भारतीय संस्कृति की शक्ति उसकी निरंतरता में है। प्रकृति के संरक्षण से लेकर लोक आस्था तक, कृषि परंपरा से लेकर सृजनशील कलाकारों की विरासत तक, हर धारा एक ही सांस्कृतिक प्रवाह का विस्तार है। इसी विश्वास के साथ आज की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती यहीं संपन्न होती है। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है। नमस्कार, संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन।
1: दिस इज आकाशवाणी। गुड इवनिंग लिसनर्स, वेलकम टू द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। टुनाइट वी प्रेजेंट अ वीणा रिसाइटल इन कर्नाटक स्टाइल बाय डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी।
0: डॉक्टर रामवरपु शरत बाबू और श्रीमती विजयलक्ष्मी की बेटी डॉक्टर आर माधुरी देवी ने वीणा वादन की शिक्षा अपनी माताजी वीणा गुरु श्रीमती रामवरपु विजयलक्ष्मी के पास प्राप्त की। आपने संगीत की बारीकियां सुप्रसिद्ध वीणा विद्वान डॉक्टर ई मणि शंकर शास्त्री से सीखी। मनोधर्म का पालन करते हुए वीणा पर लयबद्ध तरीके से रस और भाव का प्रदर्शन डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी की विशिष्टता रही है। वीणा वादन में आकाशवाणी द्वारा ए ग्रेड प्राप्त डॉक्टर आर माधुरी देवी ने कई भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया है। आपको विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है।
1: बॉर्न टू डॉक्टर रामवरपु शरद बाबू एंड लेट श्रीमती रामवरपु विजय लक्ष्मी, डॉक्टर माधुरी देवी इज एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी। शी बिगैन हर ट्रेनिंग इन वीणा एट एन अर्ली एज अंडर द गाइडेंस ऑफ हर मदर, a well-known Veena guru, and even gave her first presentation at the age of 8. She later honed her skills under the tutelage of the renowned Veena artist, late Dr. E. Mani Shankar Shastri. Dr. Madhuri Devi has earned her PhD degree for her thesis on the rasa elements in Telugu musical compositions of the prominent composers since Annamacharya up to 19th century. As an artist, she has performed extensively in respected platforms all over the globe and is the recipient of a number of awards, titles and felicitations. Her music has been appreciated for expounding the rasa and bhava aspects of melody, manodharma and her command over laya. She also has a number of compositions to her credit.
0: आज के कार्यक्रम में डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी की संगत कर रहे हैं मृदंगम पर श्री महादासु येडकोंडलु और घटम पर श्री मावडूरु सूर्यप्रसाद।
1: In tonight's concert, Dr. Ramavarapu Madhuri Devi is accompanied by Sri Mahadasu Yedukondalu on the mridangam and Sri Mavadooru Suryaprasad on the ghatam.
0: Dr. R. Madhuri Devi, आज के कार्यक्रम का आरंभ नाट्य राग में मुत्तैया भाग

संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन सुन रहे हैं। आपकी संगत कर रहे हैं मृदंगम पर श्री महादासु येडुकोंडलु और घटम पर श्री मावडूरु सूर्य प्रसाद। कार्यक्रम को जारी रखते हुए डॉक्टर आर माधुरी देवी की अगली प्रस्तुति है कापी राग में

0: मृदंगम पर श्री महादासु येडुकोंडलु और घटम पर श्री मावडूरु सूर्य प्रसाद। कार्यक्रम को जारी रखते हुए डॉक्टर आर माधुरी देवी की अगली प्रस्तुति है कापी राग में वनमालीय जी आर स्वामी की रचना जानकी रमणा, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: You have been listening to a Veena recital in Carnatic style by Dr. Rama Varapu Madhuri Devi in tonight's national program of music. She is accompanied by Sri Mahadasu Erukondalu on the mridangam and Sri Mavaduru Surya Prasad on the ghatam. Continuing her presentation, Dr. Madhuri Devi will now present Janaki Ramana, a composition of Vanamaliya J.R. Swami in Kapi Ragam Aditalam.

0: यह था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर प्रस्तुत किया श्री महादासु येडुकोंडलु ने और घटम पर श्री मावडूरु सूर्यप्रसाद ने। डॉक्टर रामवर्पु माधुरी देवी आज के कार्यक्रम का समापन बेहाग राग में डॉक्टर मंगलमपल्ली बालमुरली कृष्णाकृत तिल्लाना से कर रही हैं, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: That was Thaniyavartanam on the Mridangam by Sri Mahadasu Erukondalu and on the Ghatam by Sri Mavuduru Suryaprasad. Dr. Ramavarapu Madhuri Devi concludes her performance this evening with a Tillana of Dr. Mangalampalli Balamurali Krishna. It is in Behagragam Aditalam.

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी तक आप डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन सुन रहे थे। आपकी संगत कर रहे थे मृदंगम पर श्री महादासु येडुकोंडलु और घटम पर श्री मावडूरु सूर्यप्रसाद। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के विशाखापट्टनम केंद्र में ध्वन्यांकित किया गया।
1: With this we come to the end of tonight's national program of music, wherein we brought you a Veena recital in Carnatic style by Dr. Ramavarapu Madhuri Devi. She was accompanied by Sri Mahadasu Erukondalu on the mridangam and Sri Mavuduru Suryaprasad on the ghatam. This program was recorded earlier at the studios of Akashvani Vishakhapatnam.
0: Ye Akashvani.

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। और अब चलते चलते एक नज़र आज के मौसम पर। कोलकाता स्थित मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जन सेवाओं और मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। कल सवेरे तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया गया है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश भागों में वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। श्रोताओं, इस समय रात्रि के 11:01 और 12 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की इस दूसरी सभा अब यहीं समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 MHz पर विविध भारती FM पर कल सुबह 6 बजे हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज रविवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 22वीं तिथि।

मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज रविवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 22वीं तिथि तदनुसार 12 जुलाई सन 2026। श्रोताओं, इस समय सवेरे के 5:28 और 32 सेकंड हुए हैं। अपनी आज की पहली सभा में आप सभी श्रोताओं का हम हार्दिक अभिवादन करते हैं।

0: श्रोताओं, सभा की शुरुआत करते हैं अनमोल विचार के साथ।
1: मनुष्य का व्यक्तित्व उसकी संगति से बनता है और बिगड़ता है। अच्छी संगति हमें विचार, श्रेष्ठ संस्कार और सही दिशा देती है, जबकि कुसंगति धीरे धीरे हमारे चरित्र, आदतों और भविष्य को प्रभावित कर देती है। इसलिए मित्र चुनते समय हमेशा विवेक से काम लें, क्योंकि सही संगति हमें सफलता और सम्मान की ओर ले जाती है। अच्छी संगति अपनाइए, अच्छे विचारों को ग्रहण करें और अपने आचरण से दूसरों के लिए प्रेरणा बने।
0: अनमोल विचार के पश्चात अब आरंभ होता है हमारा भक्ति रस का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। सबसे पहले सुनिए मातृ वंदना।